पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत

0: 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ जयशंकर प्रसाद रचित देशगान से समवेत स्वर में।

0: वंदना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है पुरुषोत्तम दास जलोटा की और भक्ति रचना है सूरदास की।
1: प्रस्तुत है भक्त शिरोमणि सूरदास जी का ये प्रसिद्ध पद और आपका तो नाम है।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री अजय अवस्थी का है।
1: मन उत्तेजित होता है, दुखी होता है, तो प्रमुख रूप से दो कारणों से। एक तो अहम को ठेस पहुंचने पर और दूसरा अपने मन का ना होने पर। किसी का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, कोई हमारे मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अहम को ठेस लगती है और तब हम उसके प्रति दुर्भावना से भर जाते हैं। विचार करें कि क्या ऐसी दशा में दुखी और उत्तेजित होकर बदला लेने की जुगत में रहना चाहिए या मन को उससे विमुख करना चाहिए। यदि हम मन को विमुख नहीं करेंगे तो बार बार उन अप्रिय बातों के बारे में सोचेंगे जिससे नफरत बढ़ती ही जाएगी, और नफरत की आग में जलते रहने के कारण किसी दिन आमने सामने होने पर अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए हमें मन को उस ओर से विमुख करना चाहिए, क्योंकि विमुख होने से, उससे ध्यान हटाने से मन ना तो उसके प्रति अच्छा सोचता है ना बुरा। तो कोशिश करें कि उसके प्रति उदासीन हो जाएं, उससे किनारा कर लें और उसके अनपेक्षित व्यवहार पर विचार करें कि इसके पीछे कारण क्या रहे हैं। जब हम कारण को साफ साफ देख लेंगे तो फिर किसी के अनपेक्षित व्यवहार की हमें पीड़ा नहीं होगी, बल्कि कारण के निवारण का रास्ता ढूंढने का विचार आएगा, और ऐसा करने से खुद के सुधार के साथ साथ उस व्यक्ति में भी बदलाव आएगा, क्योंकि उसके रूखे और अप्रिय व्यवहार के बाद भी आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उससे सहानुभूति रखकर उसकी सहायता की। आखिर पत्तियों और शाखों पर दिखने वाले रोग का निदान पेड़ की जड़ में ही तो किया जाता है। रोग का कारण शाखाओं में नहीं है, उसमें तो लक्षण है, और लक्षण दिखाई देने लगे तो उस लक्षण का कारण तलाशना चाहिए। सही मायनों में रोग के कारण का निदान होना चाहिए, लक्षण का नहीं। लक्षण तो रोग का संकेत है। किसी का व्यवहार आपके प्रति अप्रत्याशित है तो वो मात्र लक्षण है, कारण तो कुछ और है। एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई। एक परिचित से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, जब भी मिलते हैं बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। एक बार मुझे उनसे एक छोटा सा काम पड़ गया, और जब दो तीन बार मैंने उनसे उस काम के बारे में निवेदन किया तो वे झुंझला गए और मुझे सख्त लहजे में मना कर दिया।

0: मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि बरसों से बना आत्मीय संबंध उनके उस दिन के व्यवहार के कारण अब खत्म हो गया। उनके रूखे व्यवहार के कारण मैं उनसे नफरत करने लगा और किसी मौके पर मजा चखाने की सोचने लगा। पर मेरा एक मन कहता है कि ऐसा करने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए, और मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त से मेरी भेंट हुई तो मैंने उन्हें उनके उस दिन के व्यवहार की बात बतलाई। उन्होंने मेरी पीड़ा से उन सज्जन को अवगत कराया तो उन्हें यह जानकर बहुत पछतावा हुआ। वे तुरंत मेरे घर आए और उस दिन के व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और बताया कि उनके मन में मेरे प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। दरअसल उन दिनों उनके साथ कुछ बुरा गुजर रहा था और वे बहुत परेशानी में थे। मानसिक तनाव के कारण उनका व्यवहार बहुत खराब हो गया था और बहुतों से उनका झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा मेरे साथ भी हो जाता यदि उनके उस व्यवहार पर उत्तेजित हो मैं तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता। मैं उन्हें उसी वक्त झाड़कर अपना अहम संतुष्ट कर सकता था, पर उससे उनकी परेशानी का कारण जाने बिना मैं हमेशा के लिए उनके प्रति दुर्भावना रख लेता और संबंध खत्म कर लेता। इसलिए जब भी ऐसा हो तो एक ही पहलू पर विचार ना करें, थोड़ा सहनशील हो, लक्षणों पर प्रतिक्रिया ना दें, कारण पर जाएं। उस लक्षण के पैदा होने के कारण पर गौर करेंगे तो उसके प्रति क्रोध नहीं बल्कि सहानुभूति होगी और उसकी मानसिक पीड़ा का उपचार आप कर पाएंगे। उसके झुलसते मन को अपनी सहानुभूति की शीतलता दें, बदले की भावना न रखें। यदि ऐसा करना मुमकिन न हो तो उसके प्रति उदासीन होकर उससे दूरी बनाकर ध्यान कहीं और लगाकर अपने मन को झुलसने से बचाएं।
1: श्री अजय अवस्थी का लिखा चिंतन अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस गान का।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर शोभना राव और रविंद्र साठे के थे। संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में आज जानकारी का विषय है, सौर ऊर्जा अपनाएं, अतिरिक्त आमदनी पाएं। जानकारी देते हुए श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला।
1: किसान भाइयों, राम राम। मैं शैलेंद्र शुक्ला आप लोगों के लिए पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में किसानों के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। एक योजना है जिसका नाम आपने सुना होगा, कुसुम। कुसुम योजना है, इसका फुल फॉर्म तो किसानों से ही संबंधित है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत तीन कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, बी और सी। तो जो कुसुम ए है उसके अंतर्गत ये रखा गया है कि जो हमारे ग्रिड हैं, जो एग्रीकल्चर फीडर जिसको कहा जाता है, जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर पंप्स को बिजली मिलती है, उनमें यदि कहीं पर हम पावर प्लांट लगा करके, सोलर पावर प्लांट लगा करके बिजली सीधे उस फीडर में डाल दें, तो उसके माध्यम से उस क्षेत्र में चलने वाले जितने पंप हैं वो सोलर बिजली से चलते हुए रहेंगे। जो समस्या आप लोग देखते हैं दिन के समय में, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या रहती है, आपका पंप उठ नहीं पाता है, जो सुदूर क्षेत्र है, मैंने बहुत सारी जगह देखा, गरियाबंद है, अभनपुर के भी थोड़ा अंदर यदि आप चले जाए, बागबहरा है, इधर तेंदुकोना है, झलप है, इन क्षेत्रों में मैंने देखा कि कई बार दिन में वोल्टेज की समस्या रहती है। तो उसके लिए एक समाधान ये निकाला गया है कि कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट लगा करके एग्रीकल्चर फीडर में उसकी बिजली को डाल दिया जाए, और ये शुद्ध किसानों के लिए योजना है। ये इस योजना के माध्यम से जो आप प्लांट लगाते हैं उसमें केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट सब्सिडी आप लोगों को देती है, और इस योजना के लिए आप अपने डिस्कॉम के या बिजली कंपनी का जो ऑफिस है वहां आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ सब स्टेशन को आइडेंटिफाई किया है, चयनित किया है, जहां जिसके आसपास के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आप अपने खेतों में पावर प्लांट लगा करके, सोलर पावर प्लांट लगा के बिजली ग्रिड में दे सकते हैं। फिर एक कुसुम बी योजना है। कुसुम बी के अंतर्गत क्रेडा सोलर पंप लगाने का काम पिछले लगभग 8 साल से कर रहा है। यदि आप डीजल इंजन यूज करते हैं, डीजल पंप यूज करते हैं, या आप इलेक्ट्रिक पंप भी यूज करते हैं, तो इनकी जगह पर आप सोलर पंप लगा सकते हैं, जिसका कोई बिल नहीं आता, जिसके लिए आपकी निर्भरता किसी ट्रांसफार्मर पे या बिजली की लाइन पे नहीं रहती कि बिजली है या नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अपने खेत में एक सोलर पंप

0: जाता है जो पंप आपको लगातार पानी देता रहता है। बहुत से किसानों को शायद ये भी लगेगा कि जिस दिनों में धूप नहीं होगी तो पंप कैसे चलेगा, या बहुत ज्यादा ठंड होगी या बरसात होगी तो कैसे होगा। तो वहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको लेमेन लैंग्वेज में या साधारण शब्दों में हम सोलर पंप कहते हैं, लेकिन ये फोटोवोल्टाइक पंप है। ये फोटोवोल्टाइक का मतलब होता है फोटोन कम्स वोल्ट आउट, यदि उजाला है तो ये आपको पानी देगा। हाँ, धूप के ज्यादा या कम होने से पानी ज्यादा या कम देगा, लेकिन पंप बंद नहीं होता कभी भी, आपको पूरे 12 महीने इस पंप के माध्यम से पानी मिलता है। बरसात के दिनों में तो पानी इरिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए सोलर पंप की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बाकी समय में आपका सोलर पंप आपको निश्चित रूप से सुबह से लेकर शाम तक पानी देता है। आपने देखा लाखों पंप छत्तीसगढ़ राज्य में लगे हैं, हिंदुस्तान के हाईएस्ट पंप वाले राज्यों में आते हैं, और इतने पंपों के माध्यम से हम खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से 75% से लेकर 95% तक अनुदान का प्रावधान है। कुसुम सी कंपोनेंट के अंतर्गत उन्होंने ग्रिड में देने के बजाय ये कहा है कि भाई आपको एक निश्चित चयन करके दे दिया जाए, सीधे आपको अपने फीडर में डालना है। मतलब जो सब स्टेशन लगा हुआ है उस सब स्टेशन में 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का आप पावर प्लांट लगा करके, सोलर पावर प्लांट लगा के ग्रिड में डाल देंगे, और जितनी बिजली पैदा करके आप डालते हैं उतने का पैसा वो मीटरिंग करते हैं। और आपको अभी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में आज के रेट में 3.50 रुपये के आसपास, किसी को 3.46 रुपये, किसी को 3.48 रुपये, किसी को 3.52 रुपये, ऐसे प्रति यूनिट की दर से 25 सालों के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट करके दिया गया है। मतलब एक किसान यदि 1 मेगावाट का प्लांट लगाता है तो उसको 52 लाख रुपये साल 1 मेगावाट का बिजली का पैसा उसको मिलेगा।
1: 52 लाख रुपए
0: 1 मेगावाट का, और 1 मेगावाट पावर प्लांट 2 एकड़ खेत में लग जाता है।
1: वाह जी।
0: तो आप यदि अच्छे किसान हैं, स्मार्ट किसान हैं, समृद्ध किसान हैं, तो आप प्लांट भी लगाइए और उसके नीचे आप एलिवेटेड बनाइए, उसके नीचे छांव में होने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे लोग हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, भिंडी की फसल हो सकती है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो छाया में हो सकती हैं। तो जब आप पानी से उन पैनल्स को धोते हैं, और ऐसा नहीं कि पैनल सट के लगते हैं, पैनल थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगते हैं, थोड़ी बहुत धूप तो आती है उसमें फसलों में, लेकिन वो छाया में होने वाली जो फसलें हैं वो तो बहुत अच्छी हो जाती हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसके नीचे में आप फसलें लगाइए, जब आप पैनल धोते हैं पानी से तो वही पानी जो नीचे गिरता है उससे उनको पानी मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। और इसको एग्रो फोटोवोल्टाइक भी बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, किसानी भी कर सकते हैं, बिजली पैदा करके उससे कमाई भी कर सकते, आय का स्रोत जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।
2: सौर ऊर्जा अपनाएं, अतिरिक्त आमदनी पाएं। कृषि चर्चा में इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे आज दिन में 3:55 पर, स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर, और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा विवेक गरमहे का ठुमरी गायन। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में आज सुनिएगा संस्कृति रात 9:25 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर होगा अब से कुछ ही देर बाद, यानी सुबह 7:05 पर, और 7:30 पर आप सुनेंगे रायपुर में 19 जून को यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड्स की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आज सुनिएगा पीसीओडी के कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी शुभ्रा ठाकुर। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में आज सुबह 9 बजे सुनिएगा, इसके अंतर्गत आज आप सुन

0: करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी विकल्प रंजन शुक्ला की। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 9:40 और रात 8:15 पर सुनिएगा विदुषी शांतिबाई चेलक और साथियों से पंडवानी गायक, और लोक संगीत में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे खोमचंद साहू और साथी। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 11:40 पर आप सुनेंगे पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया ठुमरी में राग मिश्र देश। आकाशवाणी संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज दोपहर 12:00 गाथा झरोखे से में सुनिएगा भाग 4 नागेश्वर कैना की लोक गाथा। इस कार्यक्रम के लेखक होंगे डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुति होगी मोहन सी रामानी की। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोठ का विषय रहेगा योग भगाए रोग, और फरमाइश की फोन इन कार्यक्रम होगा जोहार बहिनी। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:10 पर अपन गोठ का विषय होगा विश्व शरणार्थी दिवस, और होंगे क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात केंद्रित होगी महिला सशक्तिकरण का आधार मशरूम उत्पादन इस विषय पर, और किसानवाणी में आज की सलाह में आज के किसान क्रम में खेती किसानी और पशुपालन विषय पर सलाह देंगे श्री राम साहू। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 दो दिन में 10:30 दोपहर 1:05 2:00 2:30 और शाम 7:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000,000,000,000,000,000 विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80.88 लाख कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+ नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रत्यपादीत् यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता, सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर

0: जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं, गर्मी की तपती दोपहरों के बाद जब आसमान में काले बादल घिरते हैं और धरती पर गिरती है बारिश की पहली बूंद, तो मानो प्रकृति मुस्कुरा उठती है। पहली बारिश सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि ये खूबसूरत सा एहसास है। बारिश की पहली फुहार के साथ मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी खुशबू हर किसी के मन को छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने लंबे इंतजार के बाद राहत की सांस ली हो। बचपन में पहली बारिश का अपना ही आनंद होता था। कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, दोस्तों के साथ भीगना और बारिश के मजे लेना, ये यादें आज भी चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं। पहली बारिश किसानों के लिए भी उम्मीदों का संदेश लेकर आती है। खेतों की मिट्टी नई फसल के लिए तैयार होने लगती है और किसान अच्छे मौसम की कामना करते हैं। ये बारिश केवल पानी नहीं, बल्कि नई आशाओं और सपनों की बूंदें भी साथ लेकर आती है और हमें संदेश भी देती है कि हर कठिन और तपते दौर के बाद राहत और खुशियों का मौसम जरूर आता है। तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करें और सकारात्मक बने रहें और दिल खोलकर स्वागत करें आती हुई बारिश और छाती हुई घटाओं का।

0: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़े, प्रकृति से नाता जोड़े। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
1: छत्तीसगढ़
0: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत, सुरक्षित भविष्य।
2: श्रोताओं, आज 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। ये दिन उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और उम्मीद को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपनी सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में अपने देश या क्षेत्र से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने घर, परिवार, संस्कृति और पहचान से दूर नई जगह पर जीवन शुरू करना उनके लिए भी आसान नहीं होता, फिर भी वे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। विश्व शरणार्थी दिवस हमें मानवता, करुणा और सह अस्तित्व का संदेश देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें सहयोग और सम्मान दें। इस वर्ष का संदेश भी यही है कि शरणार्थियों को केवल सहायता नहीं बल्कि अवसर, शिक्षा, रोजगार और सम्मान भी मिलना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। आइए इस अवसर पर हम सभी मानवता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लें। छोटी सी संवेदनशीलता और सहयोग किसी के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगा सकती है और वापस घर बुला सकती है।

स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर के हर अंग का सुचारू रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। बात करें हृदय और फेफड़ों की, तो इन्हें स्वस्थ रखने में योग और प्राणायाम अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कुछ मिनटों का नियमित योगाभ्यास हमारे दिल और फेफड़ों को मजबूत बना सकता है। सबसे पहले बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। जब हम गहरी और सही तरीके से सांस लेते हैं तो शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और हृदय को भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाने और रक्त संचार को बेहतर करने में सहायक माना जाता है। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ बने रह सकते हैं। साथ ही यदि बात करें योग और गहरी नींद के संबंध की, तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान जीवन शैली में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या के कारण बहुत से लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते। नींद पूरी न होने से थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में योग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय साबित होता है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं, बल्कि ये मन को शांत और संतुलित करने की कला भी है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी और आरामदायक होने लगती है और तब नींद में आते हैं अच्छे अच्छे सपने।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए, रायपुर में 19 जून को यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया फॉर चिल्ड्रंस अवार्ड्स की रेडियो रिपोर्ट। संयोजक हैं रमाशंकर और इस कार्यक्रम के वाचक और प्रस्तुतकर्ता हैं दीपक हटवार।

0: बच्चे देश का भविष्य हैं, जिनके अधिकारों की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। बच्चों के लिए समर्पित संस्था यूनिसेफ द्वारा कल यानी 19 जून को रायपुर में मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए कार्य करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों, फोटोग्राफरों और मीडिया कर्मियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सन 2024 से 2026 तक के कार्यों के लिए दिए गए इस सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आमंत्रित मीडिया कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए कार्यक्रम के संचालक श्री श्याम कुमार ने।
1: ये जो मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड्स का क्यों किया गया, तो जब हम ट्रेनिंग करते थे हमारे पत्रकारों के साथ, ट्रेन तो उनको बता तो दिए, मगर वो अपने मीडिया के उसमें कैसा उसको अप्लाई कर पा रहे कि नहीं, उनसे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और वो जो भी बच्चों पे लिखते थे हम सबको एंट्री मंगाने चालू किए। और फिर साल में एक बार जो बेस्ट एंट्रीज रहती थी, जो बच्चों के जो बेस्ट होता था, उनको हमने अवार्ड देना चालू किया 2020 में। तो 2026 में पांचवा संस्करण है और ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ है, यूनिसेफ का सबसे ज्यादा सहयोग रहा और आप सबका सहयोग रहा।
0: इस अवसर पर बोलते हुए आप हैं यूनिसेफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गजेंद्र सिंह।
2: यूनिसेफ मुख्यतः 9 क्षेत्र हैं जिनमें काम करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वाटर सैनिटेशन और बाल संरक्षण, ये मुख्य 5 क्षेत्र हैं। इसके अलावा 4 सपोर्टिंग एरियाज या जिनको हम क्रॉस सेक्टर्स कहते हैं, जिसमें से एक है मीडिया एंगेजमेंट, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन, तीसरा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि आपदा प्रबंधन।

0: बंधन कह सकते हैं आप उसको, और चौथा है सोशल पॉलिसी। तो ये नौ क्षेत्र हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नौ क्षेत्र के थ्रू बाल अधिकार को के हर मुद्दे पर यूनिसेफ सक्रिय है। यूनिसेफ मुख्यतः चार प्रकार से काम करता है सरकार के साथ। पहला सबसे ज़रूरी काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन या पॉलिसी कॉन्टेक्चुलाइजेशन, यानी कि जब भी कोई नीति बनती है तो नीति में यूनिसेफ ये पूरी कोशिश करता है कि नीति जो है वो बाल अधिकार या बाल कल्याण के लिए पर केंद्रित हो या उस तरफ दिशा में काम कर रही हो। यदि नीति भारत सरकार बनाती है तो राज्य सरकार पर उसका क्रियान्वयन कैसे होगा उसका ध्यान रखने की कोशिश यूनिसेफ की तरफ से रहती है, पहला। दूसरा काम, मुख्य काम है जितने भी नीति जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई कार्यक्रम जो भी है उनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर कैसे हो रहा है वो उसमें यूनिसेफ मॉनिटरिंग सपोर्ट करती है, यानी कि जाके ये देखना कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, और उसमें ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई गतिविधि में कोई कोई गैप है, कोई कमी है, या कोई चीज़ अच्छे से और हो सकती है। ये केवल गलती निकालना ही उद्देश्य नहीं है, इसलिए तीसरा और ज़रूरी काम है कि यदि कोई गलती या कोई कमी मिलती है तो उसका एक सुझाव भी देना, समाधान भी देना। तो समाधान देने के लिए ज़रूरत पड़ने पर यूनिसेफ छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स भी करती है। पायलट प्रोजेक्ट्स हमेशा करने के लिए यूनिसेफ काम करती है एनजीओज़ के साथ, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ खुद भी। तो जब ये पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके थ्रू हम एक मॉडल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह का सॉल्यूशन है।
1: आप हैं यूनिसेफ के संचार प्रमुख श्री अनिल गुलाटी।
2: मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों संचार देखता हूँ। पहले सिर्फ मध्य प्रदेश देखता था, अब छत्तीसगढ़ भी संचार का कार्यक्रम मैं ही देखता हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश में था तो बहुत सुना जाता था छत्तीसगढ़ के एनसीसीआर के कोलिशन के लिए, तो इसीलिए आप सबको धन्यवाद। पॉल सर है, उनके साथ तो मैं कई बार मिला, बीएल सर से आज मिला, तो काफ़ी सुनने को मिलता था कि जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इसका इस कार्यशाला का हिस्सा बन के, इस प्रोसेस का हिस्सा बन के, ताकि हम आपके साथ जुड़ के बच्चों के अधिकारों को आगे लेके आ सके। मेरे हिसाब से मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बच्चों के अधिकारों की बात करें, आप लोग बच्चों के अधिकारों की पैरवी का काम करते हैं, आप लोग बच्चों के अधिकारों जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ कुछ दिक्कत भी है उसको भी हाईलाइट करते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया की बहुत अहम भूमिका है अगर बच्चों के अधिकारों की पैरवी करनी है, अगर हमें एक ऐसा विश्व बनाना है जिसमें बच्चे और युवाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके हित का काम हो सके, वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आपकी उसमें अहम भूमिका है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो रहा था तो आप उसके बारे में लिखते हैं, कुछ अच्छा भी हो रहा था जो सकारात्मक काम कर रहा होता है उसकी भी स्टोरीज आप लोग ही आगे लेके आते हैं। मैं बहुत सारी स्टोरीज जब मैं पढ़ता हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप से आती है, मेरे पास आती है, तो तब तो पता लगता है कि उस ज़िले में ऐसा अच्छा काम हो रहा है। अभी हम लोग, मैं और सीमा और काफ़ी लोग नारायणपुर में थे, वहाँ पर हमने देखा कि कैसे सकारात्मक काम हो रहा है नारायणपुर के अंदर, जो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे नई नई चीज़ें घटित हो रही हैं, तो वो स्टोरीज आप लोग ही आगे ला के आ सकते हैं। एक और है, एक चीज़ होती है बाल अधिकार समझौता, जो विश्व में सबसे ज़्यादा साइन ट्रीटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें मीडिया की अहम भूमिका बताई गई है। एक तो मैंने जैसे बताया आप बच्चों की पैरवी करते हैं, दूसरी भूमिका ये है एथिकल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, कि जो मीडिया के जो बच्चों के इश्यूज हैं उनको क्या लिखना चाहिए और क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अगर कन्फ्लिक्ट में है तो उसकी फ़ोटो नहीं छापते हम, उसका नाम नहीं डालते, या कोई बच्चा के साथ कोई चैलेंज हो गया तो हम कोशिश करते हैं उसकी फ़ोटो ना छापें या उसका नाम ना छापें या नाम बदल के छापें। फ़ोटो तो हम लोग छापते ही नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है जो MCCR का प्रोसेस है ये एथिकल गाइडलाइंस को प्रमोट करने का काम अच्छा कर रहा है। और ये खाली प्रिंट में नहीं होती सर, मीडिया के टीवी चैनल्स के लिए भी है, रेडियो के लिए भी है, और अब सोशल मीडिया के लिए भी है। मुझे पता है सोशल मीडिया आने से बहुत बदलाव आ गया, लेकिन उसके अंदर भी एथिकल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल है।
1: इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए संयुक्त संचालक शिशु स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर निर्मला यादव ने।
3: मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो लगातार मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित कर उसके द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मातृत्व स्वास्थ्य एक बहुत ही और शिशु स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा, बहुत ही सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कार्य हो रहा है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मातृत्व स्वास्थ्य में हमारी जो दोनों में, शिशु स्वास्थ्य और मातृत्व स्वास्थ्य में हमारी प्रमुखता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इतने सालों में, अभी विगत 5 सालों में हमने 20 अंक का सुधार हुआ है हमारे जो इंडिकेटर है, जो मातृत्व

0: मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 146 से 124 पर आ गया है। तो हम आगे भी अभी जिस ग्राउंड स्तर पे काम सारे उस पर हम लोग स्टार्ट किए हैं मैटरनल हेल्थ में, उम्मीद है हमें भविष्य में आगे आने वाले वर्षों में और ज़्यादा सफलता मिलेगी और हम 70 से भी कम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कर पाएंगे। इसी तरह शिशु स्वास्थ्य जो शिशु इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो भी 36 है, वैसे उसमें भी सुधार हुआ है मगर फिर भी छत्तीसगढ़ इसमें अभी काफ़ी पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो सबसे निचली पायदान पे है। तो हमें शिशु स्वास्थ्य पे बहुत ही काम करने की ज़रूरत है और उसमें भी बहुत सारे मातृत्व स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य दोनों में बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि हर गर्भवती माता का रजिस्ट्रेशन हो और सभी जो माताएं हैं वो संस्थागत प्रसव में शामिल हो, मतलब सभी का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो और इन दोनों उसमें छत्तीसगढ़ में काफ़ी सुधार हुआ है।
1: उप संचालक मातृत्व स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर स्मृति देवांगन ने इस अवसर पर कहा,
2: ये आसान नहीं है कि अपनी चिंता करने के अलावा आप समाज की भी चिंता करें और उस चिंता करने के चक्कर में आप इतनी खूबसूरती से अपने आर्टिकल्स को लिखें, सजाएं और आप उन लोगों की आवाज़ बने जिनके पास आवाज़ नहीं है। तो आप लोग सबको साधुवाद, जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ बेवजह ही नहीं है, आप उन लोगों के लिए आप लोग बातें करते हैं, उन लोगों के लिए आप मैसेज क्रिएट करते हैं और समाज में रेवोल्यूशन ला पाते हैं जिसके बारे में शायद किसी और ने नहीं सोचा, झेल रहे होंगे लेकिन वो किसी की आवाज़ बन नहीं पाते। तो मैं तो मानती हूँ कि मीडिया एक लीडर है, भले आप लोग को एक नेता का नाम नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग सब किसी न किसी रूप में सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने के आप लोग नेता हैं। आप लोग सबको मेरा साधुवाद और आज जो ये अद्भुत संगम हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि हम सब साथ एक मंच में बैठे हैं, ये ज़रूर यूनिसेफ ही ऐसा कारनामा कर सकता था कि समाज के सभी अंग जो किसी एक परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी एक विषय पर चिंतित हैं ऐसे सभी चिंतक को एक साथ यहाँ ला के बिठाए हैं और उन सभी लोगों का सम्मान भी करना चाहते हैं जो इतनी शिद्दत से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित मीडिया कर्मियों को संबोधित किया यूनिसेफ की मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी सुश्री सीमा कुमार ने।
3: कि हम लोग के साथ में गवर्नमेंट भी है, हमारे साथ में मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और उन सबको जोड़ने के लिए जो MCCR है एक CSO के तरह से वो भी यहाँ पर हैं और हमारे यूनिसेफ के प्रतिनिधि और सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर हम सोच रहे थे वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे कि अगर हम सब यहाँ इकट्ठा हैं एक उद्देश्य लेकर के, एक विजन, एक गोल लेकर के, तो फिर विकसित छत्तीसगढ़ जो आजकल हम जब से हम यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ में तब से और उसके पहले से सुन रहे हैं कि ये स्टेट में सबसे ज़्यादा बल और बहुत पैशन के साथ में इसमें काम हो रहा है हमको सुनने में आया, तो वो सपना या वो गोल को तो बिल्कुल पूरा किया ही जा सकता है, मतलब उसमें कोई नामुमकिन वाली तो गुंजाइश ही नहीं है और हमें लगता है कि हम सभी लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। तो हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पे उपस्थित हैं और दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से एकदम जैसे हम लोग को एक रोड मैप दे दिया है कि किस तरह से हम हेल्थ के मुद्दे और उसके बाद में हेल्थ से जुड़े, जब हम हेल्थ के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इंटरडिपेंडेंस और बहुत सी चीज़ों की रहती है, हमें वॉश अच्छा चाहिए तो टू अचीव गुड हेल्थ राइट, हमको न्यूट्रिशन आउटकम्स भी अचीव करने हैं फॉर गुड हेल्थ करेक्ट, हमको बच्चों को स्कूल में भी रखना है, उनको बाल विवाह से भी दूर रखना है सो दैट वी अचीव गुड हेल्थ आउटकम्स। सो बहुत सारे लिंकेजेस हैं, तो हेल्थ खाली अपने आप में, मैडम लोगों ने बात करी मैटरनल हेल्थ की और चाइल्ड हेल्थ की और उस सब को अचीव करने के लिए हमें और बहुत सारे मुद्दों पे भी काम करना है। तो हमें बहुत खुशी हुई ये जान के जब हमने कुछ लोगों का परिचय सुना कि आप लोग स्टेट से, ज़िले से और विभिन्न प्रकार के मीडिया अंगों की उपस्थिति है यहाँ पे, प्रिंट मीडिया भी है जिसका पैशन कभी नहीं जाएगा, प्रिंट मीडिया का जो चार्म है वो हमें लगता है पर्सनली कि वो हमेशा रहता है, और फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और अब जो लोग शायद

0: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया यूज़ करके मैसेजेस को प्रोपोगेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो गैदरिंग है वो बहुत स्पेशल है, और जो हम लोग काम आगे ले जाना चाहते हैं आप सबकी मदद से, उसमें बिल्कुल मतलब इरादा पक्का है, और उसके बाद में फिर हमको सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हम असफल होंगे। हम सबको आगे हम बात करें उसके पहले यहाँ पर जितने हमारे मीडिया के साथी उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिनको आज सम्मानित किया जाएगा, और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगले राउंड के लिए तैयार होना शुरू कर देंगे, शायद आज की सूची में नहीं होंगे, लेकिन उनको भी बहुत बधाई बधाई इसलिए कि आप सब लोग पूरे पैशन के साथ में ये इश्यूज़ को लेकर के जुड़े हुए हैं। हमें जो समझ में आया जो MCCR की मदद से और सरकार के साथ में और यूनिसेफ के छोटे प्रयास से जो ये काम चल रहा है इतने सालों से, उसमें आप लोग एक इशू बेस्ड रिपोर्टिंग हो रही है, तो आप लोग का शायद विजन एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी रिपोर्ट हुई, या कहीं पे चोरी डाका हुआ उसकी रिपोर्ट हुई, या कोई बड़ा मुद्दा हुआ देश विदेश का उसकी रिपोर्ट ही, उससे कहीं ज्यादा आप लोग शायद बहुत आगे बढ़ करके सोच रहे हैं।
1: समारोह में उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया MCCR के अध्यक्ष श्री बाबूलाल शर्मा ने।
2: हम लोगों ने जब अपना प्रयास शुरू किया और हमने उनको उनके सामाजिक बोध कराने का प्रयास किया कि आपका पत्रकार होने के नाते समाज में जो स्थान मिला हुआ है चौथे स्तंभ के रूप, आपका जो सम्मान है, आपको जो लोग मानते हैं, उस मान्यता के अंदर आप अपना प्रभाव डाल करके जो है क्या कर सकते हैं, सामाजिक बोध कैसे करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए दुखी होते हैं, कुछ भी होता है, जरा सी चोट लग जाती है तो आपको दुखी होते दौड़ते भागते हैं, आपके पड़ोस के बच्चे के लिए क्यों नहीं, आपके मोहल्ले के बच्चे के लिए क्यों नहीं, आपके राज्य के बच्चे के लिए क्यों नहीं, शहर के बच्चे के लिए क्यों नहीं, और देश के बच्चे के लिए क्यों नहीं सोच वैसी बनती जैसी आपके बच्चे के लिए बनती है। अगर आपके बच्चे के बारे में जो आप सोच रखते हैं वो देश तक आपकी सोच पहुंच जाए तो निश्चित रूप से एक सामाजिक बोध आपके मन में भी आएगा कि हाँ वाकई हमारे देश का हर बच्चा जो है वो महत्वपूर्ण है।
1: इसके साथ ही कल रायपुर में यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड्स समारोह की रेडियो रिपोर्ट समाप्त होती है। वाचक दीपक हटवार, प्रस्तुतकर्ता रमाशंकर।
3: अभी आप सुन रहे थे रायपुर में 19 जून को यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया फॉर चिल्ड्रंस अवार्ड्स की रेडियो रिपोर्ट। संयोजक थे रमाशंकर, वाचन और प्रस्तुति दीपक हटवार की थी। और आइए नमस्कार रायपुर के सफर को आगे लिए चलते हैं इस गीत के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब एक जानकारी राशन कार्ड से संबंधित। रायपुर जिले के नागरिकों को अब राशन कार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने या किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला प्रशासन ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन और सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। हितग्राही इस सेवा सेतु पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार प्रमुख का बैंक खाता विवरण, निःशक्तजन श्रेणी के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें। फिर आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले रसीद क्रमांक से उसकी स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। श्रोताओं, यहां हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है, वे समीपस्थ किसी भी लोक सेवा केंद्र में 30 रुपए शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन सेवा सेतु ऐप के माध्यम से राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को बनवाकर अपने पास रखें और सुविधाओं का लाभ उठाएं।

0: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
1: छत्तीसगढ़
0: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य। एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
1: छत्तीसगढ़
0: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।
2: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र रायपुर ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की घोषणा कर दी है। स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र सहित सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पुराने छात्रों के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। इस सूचना के बाद बारी है इस गीत की।

तो श्रोताओं, हर मौसम में खुद को स्वस्थ संतुलित रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। इसी बात के साथ आज के नमस्कार रायपुर से अनुमति दीजिए अनुभा अग्रवाल को। नमस्कार।

ये था सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश।

योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा। योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
8: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई

0: परियोजना की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashvani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage

0: खामोश रहकर भी शरीर बहुत कुछ कहता है। हर बदलाव कोई संकेत जरूर देता है। जरूरत है उस बदलाव को समझ पाए, क्योंकि सेहत जरिया है खुद से जुड़ने का। कभी बिना वजह वजन बढ़ना, कभी पीरियड्स की अनियमितता, कभी चेहरे पर अनचाहे बाल या मुहासे, या कभी मां बनने को लेकर चिंता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच महिलाओं में ये समस्या तेजी से सामने आ रही है। PCOS ये क्या है, क्यों होता है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ा जाए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आंचल अग्रवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे PCOS क्या है।
1: जी, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन जैसे कि आज आपको पता भी होगा, अब इसका नाम चेंज हो गया है। हम पहले भी जब इसकी बात करते थे या पेशेंट को समझाते थे तो हम इसको बोलते थे ये एक मिसनॉमर है, मतलब पॉलीसिस्टिक बहुत सारे सिस्ट होना इसका आम भाषा में मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होता था, हमारी बॉडी में ये नहीं होता कि ओवरी में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट नहीं हुआ करते थे। तो अब बहुत सालों बाद में इसका नाम फाइनली चेंज होकर के सही तरीके से आया है, और वो है PMOS, मतलब पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी की डिजीज नहीं है, ये एक एंडोक्राइन डिजीज भी है, रिप्रोडक्टिव डिजीज भी है, और इसका ताल्लुक सिर्फ ओवरी से नहीं है, हमारे एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम से भी है। तो ये सीधे दिमाग से लेकर के ओवरी तक जो साइकिल चल रहा है हमारा, ये सबको इफेक्ट करती है। तो अब इसके नाम में ही हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। बड़ी बीमारी का इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर की तरह है, इससे घबराना नहीं है, बस कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें सही टाइम पे पहचानना है और उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है।
0: जी, तो डॉक्टर साहिबा, PCOS के मुख्य लक्षण जो हम, जैसा आप कह रहे थे सिम्टम्स होते हैं, तो मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
1: जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि PCOS कितना कॉमन है। पहले के जमाने में अगर हम देखें, जैसे कि हमारी मम्मी जो हुआ करती थी, मम्मी दादी नानियां, उनके जमाने में PCOS शायद ही किसी ने सुना होगा या किसी ने अनुभव किया होगा इस चीज को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता था। और हम सबको ही को अभी पता है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो PCOS का मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है पीरियड्स अनियमित होना, यानी कि कभी 15 दिन में पीरियड्स आ जाना या कभी 1.5 महीने में, 2 महीने में पीरियड्स आना। दूसरा होता है कि अनचाहे बाल उगना, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ हम इसको बोलते हैं, जहां हमें बाल चाहिए तो वहां से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और अनचाहे ग्रोथ चेहरे पे, जैसे मेल्स का बियर्ड होता है, दाढ़ी होती है, उस जगह पे हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती में, पेट में, बगलों में, ये सब जगह पे बाल एक्सेस में आते हैं और बहुत मोटे होते हैं वो बाल। दूसरा होता है बहुत सारे मुहासे आने, चेहरे पे पिंपल्स होना। तीसरा होता है कि स्किन जो है बहुत ब्लैक हो जाती है हमें, हमारे गले के पीछे में, इसको एकेंथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं। हिर्सुटिज्म होना, हमारी आवाज जो है वो मोटी हो जाती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा वजन काफी बढ़ने लगता है, मोटापा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बच्चे करने में दिक्कत होती है, पर ऐसा नहीं है कि ये बांझपन लेके आता है, लेकिन हाँ जरूरी है, बच्चे करने में ये दिक्कत होती है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट से बच्चे हो भी सकते हैं इसमें। ये सब तो हुआ हमारा एडोलेसेंट और रिप्रोडक्टिव के टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है, बट PCOS सिर्फ इसी में सीमित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, तो फ्यूचर में जाकर के हमें डायबिटीज होने का खतरा होता है इसकी वजह से, हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है, डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी के अंदर की

0: परत का कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है इसमें।
1: जी, तो बहुत सारे लक्षण आपने बताए, तो हमें लगता है कि अगर किसी भी महिला में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, अब हम जानना चाहेंगे कि PCOS होता क्यों है, क्या वजह है इसकी?
0: जी, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है एक जेनेटिक है, ये अनुवांशिक होता है, तो जीन्स के कारण में आने वाले जेनरेशन्स में ये PCOS दिखाई देता है। और दूसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो सेडेंटरी हो गई है तो हमारे अंदर मोटापा पहले से ही बढ़ रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, प्लस इंसुलिन रेसिस्टेंस इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो सबको पता भी होता है लेकिन कोई उस पर वर्क नहीं करते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के कारण ये PCOS भी होता है और वजन भी हमारा बढ़ता है। और बाकी है, आजकल बहुत सारे टॉक्सिन्स, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉक्सिन्स होने लग गए हैं हर चीजों में, फलों में मिलावट हो रही है, हम इतने केमिकल्स यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, पाउडर्स यूज करते हैं, सब में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल हार्मोनल मिल्यू जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक एंडोक्राइनो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जो हम सिंपल सी चीज है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, सिम्टम कम हो जाएगा, इसको कभी हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, तो वो जीन तो आपकी बॉडी में आ चुके हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हाँ बस ये है कि हम अगर इसको मेंटेन करें, सही टाइम पे जो दवाइयां हमें डॉक्टर ने बताया गया है वो ले और अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली सुधार के रखे तो ये चेक में रह सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब हम गर्भ में होते हैं अपनी माँ के, तो उस समय अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कोई प्रॉब्लम हुआ है, या कि IUGRH हम वर्ड यूज करते हैं, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब फीटस का जो बच्चा भ्रूण होता है उसका वजन अगर बहुत कम है या वजन अगर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी उसको PCOS होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर को डायबिटीज हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान में, या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले मदर डायबिटिक थी, तब भी बच्ची को PCOS, अगर लड़की है तो उसको PCOS होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भ्रूण में भी डिसाइड हो जाता है कि आपको फ्यूचर में जाकर के ये प्रॉब्लम्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मम्मी पापा के साथ में, आपके मामा मामी या दादा दादी, किसी को भी
1: को,
0: जी किसी को भी शुगर है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तब भी उस बच्ची को PCOS हो सकता है।
1: जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी कि PCOS क्यों होता है। वैसे हर चीज के लिए अगर हम सोचें तो संगीत की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो मानसिक शांति देता है, किसी भी समस्या का एक हल्का सा हल जो है वो संगीत में भी छुपा हुआ है। तो हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं ये बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।
0: जी, जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर की सलाह में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल, जिनसे बहुत ही रोचक बातचीत हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर डायबिटिक है तो बच्ची को, अगर बच्ची होती है तो उसको ये समस्या हो सकती है
1: जी।
0: तो जिनकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा है, वजन थोड़ा ज्यादा है, जो थोड़ी सी मोटी हैं, क्या उनको ये समस्या ज्यादा होती है?
1: ये जरूरी नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है ये उन्हीं को हो। पीसीओएस जो है, लीन पीसीओएस भी, मतलब पतले लोगों में भी पीसीओएस देखा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये मोटापा बढ़े तभी उनको पीसीओएस होगा। पतले लोगों में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियम कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको भी ये पीसीओएस हो सकता है।
0: तो पीसीओएस होने के बाद क्या गर्भ धारण करना संभव है?
1: बिल्कुल संभव है। मैंने जैसे कि बताया थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, महीना जो है समय से नहीं आ रहा है। और समय से नहीं आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडे नहीं बन रहे हैं अच्छे। जो हम पहले बात करते थे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, तो हम यही

0: कहते थे कि आपकी बॉडी में सिस्ट नहीं है, ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तभी वो अंडे में फूटते हैं, तो वो अंडा बन ही नहीं रहा है, इसीलिए उनका मासिक धर्म जो भी है वो अनियमित हो रहा है। तो हमें पहले उनको ऐसी दवाइयां देनी होती है जिससे उनका मासिक धर्म नियमित हो। उनको लाइफस्टाइल के बारे में सजेस्ट करते हैं हम, वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अगर वजन ज्यादा है तो उनको वजन कम करने की सलाह हम देते हैं, या फिर अगर पतले लोगों में ये पीसीओएस है तो उनको भी एक्सरसाइज करना होता है, क्योंकि उससे उनका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आसपास में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा, एंड्रोजन हार्मोन कम होगा उनकी बॉडी में, तो अंडे अच्छे से बनेंगे, ओव्यूलेशन प्रॉपरली होगा, फिर ऑटोमेटिकली उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में वो खुद से भी कंसीव कर सकती है बिना कोई सहायता के, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधार ले और कुछ मेडिसिन ले दो। अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो हमारे पास और भी दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कि अंडे बनने की दवाइयां देना, ओव्यूलेशन इंडक्शन से उनको प्रेगनेंसी धारण करवाना, या आईयूआई करना, तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करना बेसिकली उनके में।
1: जी, पीसीओएस का निदान कैसे किया जा सकता है?
0: जी, अभी तक मैं हर बार ये बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है, बट ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए तो आपका पीसीओएस सुधर जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें पेशेंट से बात करना है कि उनका दिनचर्या कैसा है, वो सुबह से उठ करके रात तक क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, और उनकी हॉबीज क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पीसीओएस है, आप जाकर के ये एक्सरसाइज करिए, आप हो सकता है कि हफ्ते दो हफ्ते मेरी बात माने, फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका बिजी लाइफ शेड्यूल है।
1: ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि कोई भी सलाह अगर डॉक्टर देते हैं खासतौर पे एक्सरसाइज करने की, कुछ दिन तो वो चलता है लेकिन उसके बाद फिर लगता है क्या एक्सरसाइज करना, वो फिर अपने जैसा उनका
0: जैसा रूटीन है वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है पहले हम वो जाने, और उनके लाइफस्टाइल में वो डाइट फिट करें। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अंडे खाइए, आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली आप अंडे नहीं खाएंगे। तो हमें पेशेंट के हिसाब से उनको लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर गाइड करना है। तो ये सिर्फ एक अकेले गायनेकोलॉजिस्ट का काम नहीं होता है, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइफस्टाइल के कोच होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, ये सब कोई अगर मिलजुल करके उस पेशेंट पे काम करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और उनका पीसीओएस का सिम्टम्स जो है कम हो जाता है। तो हमें उनकी दिनचर्या सुधारनी है, जो भी उनकी दिनचर्या में गलत हो रहा है उनको हेल्दी डाइट की सलाह देनी है, जो भी वो खा रहे हैं उसमें से हमें उन्हें बताना है कि उसमें उनको क्या कट करना है और क्या ऐड करना है। बेसिकली हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन ज्यादा करना है, बट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सलाह देंगे। एक्सरसाइज भी हम सिर्फ एक्सरसाइज बोल दें तो वो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो महिला कहां से आ रही है, गांव से आ रही है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, किस क्लास से बिलोंग करती है। कुछ लोगों को जिम जाना पसंद होता है, कुछ लोग घर पर ही करते हैं एक्सरसाइजेस, और अगर मैं गांव वालों को बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज करो तो उनको ये सारी चीजें जैसे भी नहीं समझ में आनी है। तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे व्यायाम होते हैं जो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो हर पेशेंट के लिए उनके अकॉर्डिंग हम चीजें वो बताएंगे, और प्लस कुछ मेडिसिन होते हैं जिनके में अगर प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, हम पहले उनका टेस्ट करेंगे। अगर शुगर के चांसेस हैं, प्री डायबिटिक हैं, या मोटापा बहुत ज्यादा है, तो हम उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए उनको दवाइयां देंगे। उनके हिर्सुटिज्म, एक्नी बहुत ज्यादा है तो एंटी एंड्रोजेंस भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से, ये दोनों को मिक्स करके हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उनको ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि गांव की महिलाएं हैं तो वो तो वैसे ही बहुत काम करती हैं, उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, है ना। शहर की जो महिलाएं हैं, अगर वो ऑफिस जॉब में है तो लगातार अगर बैठ के काम करना पड़ता है तो वो काम तो वो भी कर रही हैं लेकिन वो बैठे बैठे काम कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि गांव का या शहर का होना मायने नहीं रखता, ये किसी को भी हो सकता है?
0: किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अब वैसा गांव में भी उतना ज्यादा काम नहीं देखा जाता है, तो उनका भी लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहा जो हम पहला सोचे करते थे। तो लाइफस्टाइल अब चाहे गांव हो या शहर हो सबकी खराब हो चुकी है। तो वही चीज जब हमें सुधारनी है, जो हम पहले बोलते थे, हमारे दादी नानियां जो बोला करती थी कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, शाम के 6-7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, तो ये सारी चीजें हमें वापस लेके आनी है। जो चीज हमारे हाथ में है उतना हम कर सकते हैं, बाकी जो मिलावटें हो रही है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है।

0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई स्थायी इलाज है?
1: मैंने आपको बताया है पहले भी, इसका परमानेंट इलाज नहीं है, बट हाँ इसके लिए अभी भी खोज चल रही है, लेकिन सारे सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल में कर सकते हैं हम, और अब प्रॉपर तरीके से सलाह ले रहे हैं डॉक्टर से, प्रॉपर उनके उसमें हैं, तो हम इसका सिम्टम्स जो है सब चेक कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ नियंत्रण हो सकता है।
0: खान पान की शैली या जो मोटापा बढ़ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ये लगता है कि मैं तो ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा खाना नहीं खा रही हूँ या इधर उधर की चीजें नहीं खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी महिलाएं जैसे खास तौर से पीरियड्स की बात करें तो अनियमितता होने पर वो थोड़ा संकोच करती हैं, घर में भी वो नहीं बताती, डॉक्टर के पास तो बहुत दूर, मतलब डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही वो घबराने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी गलत धारणाएं भी समाज में बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूंगी कि यूजुअली जो हम एडोलिसेंट की बात करते हैं, जब बच्चों का पीरियड स्टार्ट होता है तो उनके में पीरियड्स और ऐसे ही अनियमित रहते हैं, या फिर जब पीरियड्स बंद होने वाला रहता है महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम, तब भी पीरियड्स अनियमित होते हैं, तो इसको वो लोग नॉर्मल है मान लेते हैं, बच्चे भी मान लेते हैं कि ये तो होता ही है, या उनके घर में उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, या फिर जो पेरीमेनोपॉज में महिलाएं हैं उनको भी ये बोला गया होता है, या फिर उनको भी ये धारणा होती है कि हमारे भी पीरियड्स अनियमित होंगे, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे। इनके में भी पीसीओएस हो सकता है, तो आजकल 8 साल की उम्र से पीरियड्स होना शुरू हो जाता है, तो उनके में भी पीसीओएस हो सकता है, तो उनको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स ये अनियमित हो रहा है, 6 महीने से 1 साल हो चुके हैं आपको अनियमित हुए, तो इसको आप साधारण नहीं मानिए, चाहे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ हो, चाहे आपका महीना बंद होने वाला हो, या आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो आपका सही डायग्नोसिस सही टाइम पे हो, तभी हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे और वो जल्दी ठीक हो सकता है आपका।
0: जी, तो ये जो नई शब्दावली आई है उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं?
1: अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिजीज जो है सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं है, इसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो पहले जो शब्द था पीसीओएस, ये सीमित था सिर्फ ओवरी तक
0: जी।
1: तो इसकी जो ग्रेविटी है वो किसी को पता नहीं चल रही थी, सबको सिर्फ ये लगता था कि ठीक है, सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर होंगे फिर ठीक हो जाएगा। अब पीएमओएस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये बीमारी बड़ी है, ये सब चीज को इन्वॉल्व करती है। बस एक चीज और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है इस शब्द में अभी भी, वो है कि डिप्रेशन जो फीमेल्स को पीसीओएस या पीएमओएस होता है उनमें डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय तक रहता है, तो उनको लंबे समय से ये सारी प्रॉब्लम सूझनी पड़ रही है कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रहे हैं, तो आसपास के सभी लोग उनको पिक करते हैं, उनको स्कूल्स में कॉलेजेस में सब बोलते हैं कि मोटी हो रही है, कुछ करो, शी ऑल्सो नोज, उसको भी पता है कि वो मोटी हो रही है, तो ये सबको उस पर पिक करेंगे, तो ये अंदर ही अंदर वो डिप्रेस होती चली जाती है। तो ये एक और चीज अगर इसमें ऐड हो जाती तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इस बीमारी के लिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमने देखा है अपने आसपास भी कि प्री मेनोपॉज अगर है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो भी जो फीमेल है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाती है, क्योंकि वो कटने लगती है, वो आना जाना छोड़ देती है समाज में, परिवार में, उसे लगता है कि किसी से बात ना हो, बस अपने कमरे में रहें। और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग लाइट बंद करके अकेले कमरे में पड़े रहते हैं, तो एक तरह से ये डिप्रेशन की ओर ही जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो प्री मेनोपॉज या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें और पीसीओएस में कंफ्यूजन थोड़ा सा महिलाओं को हो सकता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति भी है तो भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ये पीसीओएस तो नहीं
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल, ये हो सकता है, तो आपको उस समय एक बार डॉक्टर के पास मिलना ही है, क्योंकि अगर आपका महीना भी बंद होने वाला है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है महीना बंद होने के बाद में, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे सवाल करके वो चीज क्लियर कर लेंगे कि ये पीसीओएस है या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं आपके, और आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड कर पाएंगे। अगर पेरीमेनोपॉजल है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या मेनोपॉज में आने वाली दिक्कतों को कैसे बचना है, और अगर पीसीओएस है तो हम

0: वैसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उस चीज से शर्माइए नहीं, और घर में इधर उधर लोगों से पूछने या गूगल करने की बजाय एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए।
1: जी, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि आजकल हर समस्या का समाधान लोग गूगल में ढूंढते हैं, गूगल में तलाशते हैं कि वो समस्या कुछ है, वो दिख रहा है लक्षण, लेकिन वो कुछ और हो सकता है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि आपने बात की, अभी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या योग से, व्यायाम से और तनाव को कम करके इसमें काफी हद तक हमको फायदा हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका ये सारी चीजें जो आपने बोला वो हमारा स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस करेगा, तो अगर आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो रहा है तब भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, तो ये सब चीजें भी आपको हेल्प करती है पीसीओएस हार्मोनल डिस्टर्बेंस से बचाने में। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए।
1: और खाने की थाली में, यानी भोजन की थाली में बदलाव बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, खाने की थाली हमारी संतुलित व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी दादी नानियां जो खाती थी उनके डाइट में सब कुछ होता था, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ होता था, तो हमें वैसे ही खाना खाना है। सब चीजों का संतुलित आहार लेना है हमें, और उतना ही हमें काम करना है। हमें तीन टाइम खाने की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम उतना काम नहीं करते हैं। हम अगर एक टाइम भी खाना खाएं दिन भर में तो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफी होता है, लेकिन वो बचपन से ऐसे दिमाग में डाला गया है कि तीन टाइम खाना होता है। एक्चुअली कई लोग छह टाइम भी खाते हैं तो वो छह टाइम खाने की आदत हो जाती है। पर अब पहले में देखा जाए, पहले के लोग सिर्फ दो टाइम खाना खाते थे और उससे कहीं ज्यादा, हमसे 90% ज्यादा वो काम करते थे, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता था।
1: जी, तो ये भी एक दुविधा वाला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत जरूरी होता है
0: जी,
1: और बहुत सारे लोग उसको खाने की तरह ही खाते हैं, मतलब हैवी नाश्ता करते हैं।
0: नाश्ता जरूरी तो उसको हैवी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हैवी करेंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक जाएगा, आपका शुगर बहुत बढ़ जाएगा, आधे घंटे तक ही आपको एनर्जी रहेगी, उसके बाद 11 बजे के आसपास आप ऐसा फील करेंगे कि दोपहर के 3 बज रहे हो और आप सो जाए, आपको बिस्तर मिल जाए सो जाए। तो आपको जो सुबह का नाश्ता है उसमें हाई फाइबर डाइट लेना है, ताकि आपकी एनर्जी पूरे डे तक मेंटेन रहे, एटलीस्ट आफ्टरनून तक वो एनर्जी मेंटेन रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोग 90% लोग सुबह में ही मैक्सिमम काम करते हैं, तो हमें वो हाई पीक ऑफ एनर्जी उस समय चाहिए। तो नाश्ता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही नाश्ता करना है हमें। कार्बोहाइड्रेट से ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं मॉर्निंग में, प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड होने चाहिए हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहिमा। हम जानना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं या तो इस परेशानी से गुजर रही हैं या जिनमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आप क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, जिनको भी पीसीओएस है, या फिर मैं यूं कहूं कि जिनको अनियमित पीरियड्स हैं और जिनको मोटापा हो रहा है या मुहासे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। और सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं अब अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगी, क्योंकि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे डॉक्टर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम कहते हैं, अगर हम अपनी सहायता नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है, तो उसी तरीके से ये भी है, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, तभी आपका जो भी बीमारी है वो ठीक हो पाएगा।
1: जी, तो बहुत संक्षेप में एक बार फिर से आप ये बता दीजिए कि शरीर के किन संकेतों को अनदेखा नहीं करना है, और हर महिला अपने हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आज से क्या छोटा सा बदलाव शुरू कर दे।
0: जी, सबसे पहले तो महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग डरने में या संकोच करने में ये सब चीजों से बाहर निकलिए। अब इस चीज से शर्माइए मत कि मेरे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई क्या कहेगा, या आपको कोई और दिक्कतें हैं जो स्त्रियों को होती है, तो वो सब चीजों के लिए आप बात करना शुरू करिए।
1: तो डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और पीसीओएस के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम।
2: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे पीसीओएस के कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ

0: डॉक्टर आंचल अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थी शुभ्रा ठाकुर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में और अनेक स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग क्यों जरूरी है या किस तरह से हम सब के लिए फायदेमंद है, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अनुभवी योग प्रशिक्षक अमित तिवारी। अमित तिवारी जी को योग प्रशिक्षण का करीब 26 वर्षों का अनुभव है। उनकी हठ योग और अष्टांग योग में विशेषज्ञता है। अमित जी नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: अमित जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए योग क्यों जरूरी है?
2: देखिए योग इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले तो हम समझें कि योग है क्या।
1: जी
2: अब हम योग को जैसा हम समझते हैं कि आमतौर पर आज के टाइम पे देख के कि केवल सिर्फ जो आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो योग है,
1: मतलब जिसको फिजिकल हम जो
2: जिसको
1: कहते
2: हम फिजिकल समझते हैं।
1: जी जी।
2: जबकि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध।
1: जी
2: यानी कि वो योग है जो कि आपके चित्त की वृत्ति को,
1: जी
2: जो मन इधर उधर जो भटक रहा है, जो 10 जगह हमारा दिमाग जा रहा है, उसकी वृत्ति को जो रोक दे वही योग है।
1: जी
2: तो जरूरी ये नहीं है कि आसन करेंगे तभी मतलब योग होगा। आप देखेंगे कि पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ 3 बार आसन का मेंशन किए हैं।
1: अच्छा।
2: और मैक्सिमम चीजें फोकस है ध्यान धारणा समाधि के ऊपर।
1: जी
2: अब आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है
1: जी
2: वो है स्ट्रेस।
1: बिल्कुल।
2: और जहां मन ही अगर चित्त अगर नहीं अगर शांति, जैसे आप अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे फिट एंड फाइन बिल्कुल दिख रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन तनावग्रस्त हैं
1: जी,
2: कोई हाइपरटेंशन से ग्रसित है, किसी को डायबिटीज है
1: जी,
2: लेकिन बॉडी का अपीयरेंस बिल्कुल ठीक दिख रहा है
1: जी।
2: तो योग आज के टाइम पे ऐसे मॉडर्न टाइम पे योग खासकर मैं कहता हूं कि सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी आपने अमित जी योग की शिक्षा जो प्रारंभिक है वो कहां से ली, इसके बारे में बताएं।
2: मैंने अपनी योग की शिक्षा स्टार्ट की जब मैं 7 साल का था
1: जी,
2: और शिवानंदा आश्रम से स्टार्ट किया
1: जी,
2: और उसके बाद में मुझे गुरुजी बीके सयंगर से भी सीखने के लिए मुझे मौका मिला
1: जी।
2: करीब 2.5 साल मैं उनके पास रहा
1: जी,
2: पुणे रामामणि अय्यंगर इंस्टीट्यूट में
1: जी।
2: फिर करीब 2 साल शरद गुरुजी के पास में रहा
1: जी,
2: अष्टांग विन्यासा योगा सीखा
1: जी।
2: तो लगभग करीब 13-14 साल करीब सीखने का मेरा एक्सपीरियंस रहा हठ योग और अष्टांग विन्यासा।
1: तो ये तो आपने 13-14 साल योग सीखा
2: जी,
1: और अब योग सिखाते हुए आपको कितने साल हो गए हैं?
2: करीब 26 साल से ऊपर
1: जी। जी तो ये मुझे बताइए, जैसे अभी आपने बात की कि आपने अष्टांग योग सीखा, हठ योग सीखा, कई लोगों को नहीं पता है, लोग योग से वही जैसा आपने कहा कि शारीरिक मुद्राएं या यूं कहें कि अभ्यास जो रहते हैं उसी को ही योग मान लेते हैं। तो योग कितने प्रकार का होता है, हठ योग और अष्टांग योग क्या है और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं।
2: देखिए योग अलग, जैसे क्लासिकल योगा है, राजयोग है, कर्म योग है, अष्टांग विन्यासा योगा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी रास्ते से आप चलेंगे
1: जी,
2: तो एट द एंड ऑफ द डे आप पहुंचेंगे सीड्स पे, जहां वहां से आपको चारों साइड से एक ही चंद्रमा दिखना है। पहाड़ पे किसी भी साइड से चढ़े
1: जी,
2: चंद्रमा एक ही दिखना है।
1: बिल्कुल।
2: रास्ते अलग अलग हैं
1: जी।
2: तो जैसे मैंने कहा कि योग का मतलब ही है कि योग चित्तवृत्ति निरोध
1: जी।
2: अब वो चित्त की वृत्ति आप कैसे आसन के माध्यम से करें
1: जी,
2: अष्टांग विन्यासा के माध्यम से करें, हठ योग के माध्यम से करें, कुछ भी हो सकता है। हठ योग में हम आसन और सांस के थ्रू बॉडी को स्टिलनेस में लेकर आते हैं और लंबे देर तक हम होल्ड करते हैं
1: जी,
2: जिसमें कि सांस के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर, आसन के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर

0: फोकस किया गया है
1: जी।
0: अष्टांग योग यानी हठ योग का ही सिक्के का दूसरा पहलू है कह लीजिए।
1: अच्छा।
0: जिसमें कि यम नियम जो कि हठ योग में भी है
1: जी,
0: लेकिन एक फ्लो में आता है और एक इंटेंसिव वे में आता है।
1: अच्छा।
0: तो आसन तो सारे वही हैं, लेकिन अष्टांग में एक के बाद एक फ्लो को मेंटेन करते हैं
1: जी,
0: और थोड़ा इंटेंसिव होता है हठ योग के कंपेटिवली।
1: अच्छा।
0: तो इसमें सारे डायमेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे हठ योग में अगर कोई अगर कर रहा है तो किसी एक दिन किसी पर्टिकुलर एक आसन पे फोकस किया, किसी और दिन पर्टिकुलर आसन के ऊपर फोकस किया
1: जी।
0: लेकिन अष्टांग आप थ्रू आउट ध्यान धारणा समाधि सभी के ऊपर एक उसी फ्लो में ही एग्जैक्टली गोल पे आते हैं
1: जी। अमित जी, जैसे कोई भी व्यक्ति अभी इस हमारी परिचर्चा को सुन रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति योग शुरू करना चाहता है तो एकदम प्रारंभिक अवस्था में आप उसे क्या सुझाव देंगे कि किस प्रकार का अभ्यास उसे करना चाहिए, कैसे वो योग किस दुनिया में पहला कदम रखे?
0: जो भी पहले स्टार्ट कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो पहले किसी शिक्षक के अंडर स्टार्ट करे
1: जी,
0: और बिल्कुल बेसिक आसन प्राणायाम और ध्यान के ऊपर फोकस करे
1: जी,
0: बजाय कि इंटेंसिव आसन के ऊपर ध्यान देने से। कि जैसे हम आज के दौर पे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में हम देखते हैं
1: जी,
0: और बहुत ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं उससे, और एडवांस आसन करने के लिए हम सोचते हैं कि अरे बाप रे ये तो इतना मुश्किल है हम नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वो ना तो करने की इतनी ज़रूरत है, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें स्टिलनेस कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। तुम तो किसी प्रशिक्षक के अंदर शिक्षक के अंदर बेसिक आसन से स्टार्ट करें
1: और उसमें एक निरंतरता भी रहे,
0: निरंतरता आए
1: जी।
0: जब वो निरंतरता रहेगा तो एक दिन वो जो एडवांस आसन हम जो देखते हैं वो भी आने लग जाएगा। कई लोगों को लगता है कि एडवांस आसन के लिए कुछ अलग से स्पेशल करना होता है, जो कि कुछ भी नहीं, वही बेसिक आसन ही जैसे जैसे आप उसमें डीप जाना चालू करते हैं वैसे वैसे वो एडवांस हो जाता है।
1: बिल्कुल। अमित जी, अभी आपने एक बात कही थी कि आज की जो है वो दिनचर्या लोगों की कुछ ऐसी है, जॉब भी ऐसे हैं कि एक स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, और ज्यादातर लोगों का डेस्क जॉब रहता है क्योंकि आईटी सेक्टर में भी कोई है, वो कुर्सी पे बैठे बैठे ही उसका लैपटॉप के सामने ही एक बड़ा वक्त दिन का गुजर जाता है। तो ऐसे में लोग क्या होता है, डायबिटीज के, मोटापा के, हाइपरटेंशन के अपने आप ही शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में योग किस तरह से सहायता कर सकता है?
0: ऐसी स्थिति में योग बहुत सहायक है
1: जी।
0: मैं कहता हूँ कि 20 मिनट आज की डेट में चाहे या किसी कोई भी बिजी से बिजी आदमी भी है
1: जी,
0: वो 20 मिनट अपने लिए जरूर निकाल सकता है
1: जी।
0: उस 20 मिनट में कम से कम वो सूर्य नमस्कार
1: जी
0: और बेसिक प्राणायाम कर ले, जैसे कि अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति थोड़ा कर ले, भ्रामरी कर ले
1: जी,
0: ये 20 मिनट भी उसके लिए काफी है
1: जी।
0: बस ये कंटिन्यूसली एक निरंतरता मेंटेन रहे
1: जी,
0: और ये नोटिस करेंगे लोग कि उनके अंदर फिजिकली मेंटली इतना ड्रेस्टिकली इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जा रहा है।
1: एक बात और है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो योग को मतलब कई लोग तो उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि बड़ी लंबी सी प्रक्रिया है, कुछ बोरिंग सी है, तो जिम को इस तरह की जो फिटनेस के लिए उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे?
0: देखिए, मैं योग और जिम दोनों को पैरेलल मानता हूँ, समांतर मानता हूँ
1: जी,
0: और मैं जिम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, जिम की भी उतनी ही ज़रूरत है
1: जी,
0: मसल का स्ट्रेंथ भी होना चाहिए
1: जी,
0: लेकिन 20 मिनट का अगर बेसिक अगर स्ट्रेचिंग और केवल अगर प्राणायाम करें
1: जी,
0: तो ये एक और एड ऑन होगा उनके फिटनेस में, ओवरऑल मेंटल हेल्थ में
1: जी,
0: क्योंकि फिजिकली तो आप जिम में कर ही रहे हैं
1: जी,
0: आपने किसी चीज को स्ट्रेंथन किया लेकिन आपने कड़ा कर दिया
1: जी।
0: अब वो जब कड़ापन है और जब अगर कभी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मूवमेंट आया तो वो लचीलापन नहीं होगा और इंजरी के चांसेस होंगे
1: जी।
0: जैसे बांस को अगर हम ऊपर से कहीं से गिरा दें तो बांस फट सकता है,
1: बिल्कुल
0: घास नहीं फटेगा
1: जी,
0: लेकिन घास अगर बहुत ज्यादा लचीला है तो घास खड़ा भी नहीं हो सकता है
1: जी।
0: तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है
1: जी।
0: तो मैं आज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो जिम करें लेकिन 20 मिनट जो कि मैनेजेबल है
1: जी, बिल्कुल
0: 20 मिनट योग जरूर करें, कम से कम कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जरूर करें
1: जी। एक सवाल और है कि आज की दुनिया में मोबाइल जो है वो यूं कहें कि अब हमारा एक जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, उससे कोई भी अछूता नहीं है, वो क्या बच्चे क्या युवा और क्या बुजुर्ग सब ही मोबाइल चलाते हैं, एक तरह से लत हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि एकाग्रता की कमी होती जा रही है लोगों में, नींद ना आने की एक समस्या हो गई है, इसमें योग किस तरह से मदद कर सकता है?
0: इसमें प्राणायाम बहुत मदद कर सकता है,

0: जी
1: और मात्र एक सप्ताह में बदलाव दिखने लगेगा।
0: अच्छा,
1: कि कुछ अगर नहीं तो सिंपल सिर्फ एक अनुलोम विलोम करें
0: जी,
1: सुबह हार्डली 5 मिनट
0: जी
1: और शाम को केवल 5 मिनट।
0: अच्छा,
1: सोने के पहले कर लें, इससे खाने पीने से या खाने के पहले करना है खाने के बाद करना है ऐसा कोई रिलेशन नहीं
0: जी।
1: तो करना क्या है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे से
0: जी
1: नासिका छिद्र को
0: जी
1: दबा के और बाईं साइड से लेना है
0: जी,
1: और फिर बाईं साइड को दबा के और दाईं साइड से छोड़ देना है
0: जी।
1: ये प्रक्रिया 5 मिनट दोनों साइड से ऐसे ही दोहराना है।
0: ओके,
1: सो एक बार दाएं से लिए, फिर बाएं से छोड़े, फिर बाएं से लिए और दाएं से छोड़े,
0: दाएं से छोड़े जी।
1: इस पूरे प्रक्रिया में केवल सिर्फ 5 मिनट
0: जी
1: जो हम कर रहे हैं आंख बंद करके, और सिर्फ केवल सांस पे ध्यान देना है कि ठीक है सांस किस किस हिस्से को, नासिका के भीतर किस किस हिस्से को छू रहा है
0: जी।
1: केवल ये 5 मिनट ये अभ्यास
0: जी
1: ड्रेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है
0: जी।
1: मैं सभी युवा वर्ग को कहता हूँ कि दूसरा भ्रामरी का अभ्यास जरूर करें
0: जी।
1: आप भ्रामरी सोने के पहले कर सकते हैं
0: जी।
1: कोविड के टाइम पे देखा गया कि कोविड के टाइम पे भ्रामरी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए
0: जी।
1: ओवरऑल भ्रामरी मेंटल हेल्थ में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है
0: जी।
1: एकाग्रता को बढ़ाता है
0: जी।
1: प्राणायाम अगर केवल सिर्फ 5 मिनट सुबह और शाम भी अगर करें तो ये मोर देन सफिशियंट है।
0: अमित जी, आपकी जो विशेषज्ञता है वो हठ योग और अष्टांग योग में तो है, जो कस्टमाइज एक हीलिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसमें भी आपकी काफी विशेषज्ञता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: देखिए, आमतौर पे हम जो हीलिंग प्रोसेस है
0: जी,
1: बेसिकली क्या है कि नॉर्मली हम जो योगा करते हैं, हम जो भी आसन है
0: जी,
1: हम आसन को त्रिकोण आसन जैसे अगर हम कर रहे हैं तो त्रिकोण आसन को हम गलत अलाइनमेंट से हम करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो इस वजह से जैसे किसी के बैक में पेन आ गया, किसी के इनर थाई में पेन आ गया
0: जी।
1: अब इसी को हम सही अलाइनमेंट के साथ में करते हैं तो वही थेरेपेटिक योगा हो जाता है।
0: अच्छा,
1: कि उसके थेरेपेटिक ओवरऑल आपको जो 100% आपको जो बेनिफिट जो मिलना है
0: जी
1: वो मिलने लग जाता है।
0: मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बीमारी से या किसी परेशानी से शारीरिक ग्रसित है
1: जी,
0: तो उसके लिए फिर आप एक कस्टमाइज उसको बताते हैं कि ये आसन करने से उसे फायदा होगा।
1: आमतौर पर वैसे तो मैं किसी को भी मैं कहता हूँ कि सही अलाइनमेंट के साथ में ही करने के लिए।
0: अच्छा,
1: नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैं पार्क वगैरह में लोगों को देखता हूँ कि बस किसी हिसाब से बस हमें, क्योंकि हमारा फोकस हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं
0: जी,
1: तो उस कंपटीशन के प्रभाव में
0: जी
1: हम किसी भी हिसाब से करने के लिए सोचते हैं
0: जी,
1: सही अलाइनमेंट को हम भूल जाते हैं
0: जी।
1: तो उसमें जो करना है और उसका जो प्रभाव आना है, जो इफेक्ट आना है, वो इफेक्ट ना आके हम रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से पेन या कुछ गड़बड़ कर लेते हैं
0: जी।
1: अब जो थेरेपेटिक योगा है
0: जी,
1: वो कहता है कि जो जो कि बीके सयंगर गुरुजी ने इसके ऊपर फोकस काफी किया
0: जी,
1: और गुरुजी ने कहा कि भाई सभी आसन का
0: जी
1: सही अलाइनमेंट होना चाहिए
0: जी।
1: मैं शीर्षासन करूं ये किस लिए जरूरी है
0: जी,
1: लेकिन शीर्षासन अगर करूं, जो अगर शीर्षासन अगर नहीं अगर कर सकता है तो वो सपोर्ट के साथ कर सकता है, प्रॉप्स के साथ में कर सकता है, लेकिन अलाइनमेंट तो सही हो
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आफ्टर ऑल अलाइनमेंट अगर ठीक है तो वो बेनिफिट तो आपको 100% मिलना ही है,
0: तो इससे गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं।
1: देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा दावा नहीं करता हूं
0: जी,
1: मॉडर्न पद्धति जो है और आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल है
0: जी,
1: उसके साथ में योग आपको एक असिस्ट करता है।
0: अच्छा,
1: जैसे किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है
0: जी,
1: तो केवल ये नहीं है कि हम अपना आहार कुछ भी रखें और चूंकि योग कर रहे हैं तो वो सब पचा लेगा।
0: हाँ, लेकिन आहार में भी सुधार करना ही पड़ेगा।
1: तो आहार में भी सुधार करना है
0: जी,
1: और अपने दैनिक दिनचर्या में भी सुधार करना है।
0: ये बताएं अमित जी कि जैसे हमारे यदि कोई श्रोता इस समय जो इसको सुन रहे हैं, हमारी इस बातचीत को, इस कार्यक्रम को, तो उन्हें यदि आपको योग का कोई सबसे सरल अभ्यास बताना हो तो वो कौन सा होगा?
1: मैं सबसे सरल अभ्यास कहूंगा कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी,
0: जो आपने एकाग्रता के लिए हमें बताया। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
1: जी।
0: आपने करीब 13-14 साल योग सीखा और अब करीब 25-26 साल आपको होगा योग सिखाते हुए
1: जी,
0: तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर?
1: मैं सभी को कहना चाहूंगा कि केवल सिर्फ योगा दिवस के लिए नहीं होना चाहिए
0: जी,
1: ये आपके दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि एक दिन योगा करके योगा दिवस में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है
0: जी।
1: आपको इसको दैनिक दिनचर्या का, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा
0: जी,
1: और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है
0: जी,
1: एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है
0: जी।
1: तो मैं सभी को इस योग

0: बस मैं कहूंगा कि योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और जब भी करें तो जो आपने जैसा कहा कि एक अनुभवी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने वाकई बहुत सारगर्भित तरीके से हमारे श्रोताओं को योग के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में। आपको भी योग दिवस की बहुत सारी बधाई।
0: धन्यवाद आप सभी को
1: और आपका हार्दिक आभार।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: बातों बातों में समसामयिक विषयों पर केंद्रित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति थी विकल्प रंजन शुक्ला की। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है आसपास।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कारवां फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: साहिर का लिखा और खयाम के संगीत से सजा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

0: दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लालपुरी का लिखा गीत। संगीत खयाम का है और फिल्म का नाम है खानदान।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। पहले ये संदेश।
1: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
2: छत्तीसगढ़
1: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।
0: लोक संगीत में आज सुनिए पंडवानी गायन। कलाकार हैं विदुषी शांतिबाई चेलक और साथी। आदि पर्व का प्रसंग है और किस्सा है अंबा अंबालिका अंबिका का स्वयंवर और भीष्म द्वारा अपहरण का।

0: नरेश, राजा काशी नरेश के तीन कन्या।
1: हाँ जी
0: रागी, और तीनों कन्या के राजा काशी नरेश रखे हैं स्वयंवर। देश देश ला राजा चले। हस्तिनानगर से संतनु पुत्र भीष्म पितामह अपन दो भाई चितांगद और विचित्र वीर लेके बैठे हैं रथ में। एक एक टापू उठे भैया, तो बजा टभाग टभाग टभाग टभाग टभाग। अरे रथ आगे चले चले भैया, टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप।

0: राजा काशी नरेश कहे 16 सिंगार करके मोर तीनों कन्या ला स्वयंवर में बुलाए जाए। 16 सिंगार करे हाथ में धरे बरमाला रागी सभा के बीच में तीनों कन्या घूमत है।
1: अच्छा।

कूदा लगावा जाते, अरे मिर्गा के समान कूदा जाते। लोग ताली मार के हंसे, चारों ढर के राजा मन हंसे रागी, लेकिन भीष्मा किसी के सुने नहीं, किसी के ओर देखे नहीं, तीनों कन्या ले एक साथ पकड़ ली, रथ में लेके बैठा ली, और रथ जब आगे चलना शुरू करे तो सारे राजा आवाज दे एक साथ तीन कन्या उठाना अन्याय है, हम सबसे लड़ना होगा। भीष्म पितामह लड़े के लिए तैयार हो गए और बाण के वर्षा शुरू हो गए।

सारे राजा ले हरा दिए, तभी सालव नरेश राजा आ गए। कहे राजा, हम सालव नरेश है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भीष्म पितामह के लड़ाई शुरू हो गए राजा सालव नरेश के साथ।

0: तीनों कन्या के ऊपर में बैठे रथ में भीष्म पितामह सारे राजा हरा दिए, साल व नरेश लहरा दिए। अब ये तीनों कन्या ला लेके राजा हस्तिनागर पहुंच गए रागी। शादी के मंडप तैयार है और दो दुल्हन के संग में दो दुल्हा राजा घलो तैयार
1: है।
0: भाई चित्रांगद के साथ में अम्बालिका के विवाह कर दिए और भाई भी चित्रवीर के साथ में अम्बिका ला भी विवाह कर दिए। अम्बा कहे, कस महाराज, अरे तुम्हार दो भाई के संग हमार दो बहनी के विवाह कर दे तो हमार दुल्हा राजा कौन है महाराज? शायद आप हो। भीष्म पितामह कहे, हम भाई बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे ते ब्रह्मचारी रहे महाराज तो स्वयंबल उठा के कबर ला। मैं तो मन ही मन साल व नरेश ला चाहत रहे हूँ। भीष्म पितामह साल व नरेश के पास में पहुंचा दी और साल व नरेश बैठे सभा में देखे है। कहे, अम्बा, अरे तू यहाँ कहाँ चली आई अम्बा? अम्बा कहते, महाराज आप मन तो मोला मन ही मन मानता महाराज।
1: मानता
0: और हमार पति कोनो दूसर नो है, आपे मन

महाराज आपो मन तो मोला चाहिथा ना साल व नरेश कहे अम्बा हम चाहते थे लेकिन अब नहीं काबर अरे कोनो राजा तोला उठा के ले गए वो अम्बाला में कैसे भी हो ते जात हसिया बाहर निकलवाओ

राजा मेरे माथा रगड़ रगड़ के कहा मुझसे बिहाव कर ले राजा, या वो पिता के द्वारा जाओ जेना सौदा के तरह लेके मोला स्वयंवर में खड़ा कर दीस, या वो पितामा के पास जाओ जे मोला कहीं के नहीं छोड़ीस। आत्महत्या करके मर जाना चाहिए या जीना चाहिए? अरे

0: दिख लो हमारे समाज में दाहत प्रथा में बेटी जला दिए जाते, बेटा नहीं होए के कारण बेटी हुआ थे तो गर्भ में बच्चा मार दिया जाते, कुंवारी कन्या के बलात्कार करके छोड़ दिए जाते। औरत ना जीना चाहिए या मरना चाहिए?
1: जीना चाहिए।
0: अम्मा कहे मुझे जीना है। अब हमार शत्रु कोई यू नहीं, वो भीष्म है, बोला मारे बर मोला शक्ति लेना बहुत जरूरी।
1: हाँ जी।
0: रागी और शक्ति है कहाँ?
1: भक्ति में।
0: भक्ति में।
1: हाँ जी।
0: तो भक्ति करे के खातिर
1: हाँ।
0: माता

0: शक्ति लेके खातिर कहाँ चल दी?
1: हाजी भक्ति में,
0: साधु संतों की आश्रम में। और साधु संत मन हा देखे कहा कहा थे?
1: कहा कहा थे?
0: अरे अति सुंदर कन्या है, यहाँ कहा बरा है संबा?
1: हाजी
0: अम्बा के थे कैसन राम के भक्त हो महाराज आपू मन?
1: हाजी
0: अरे देखत नहीं हमर हालत ल, तुहरे बीच में मोला भक्ति करना है। साधु संतो मन के थे राजा महाराजा मन से उठा के लगी तो हमन कैसे करबो?
1: कैसे करबो?
0: अम्बा के थे निचत पहुँच पहुँचा हा महाराज, राम के भक्त होके काबर हिम्मत हारत हो? मैं तो यह भक्ति कर हूँ, यह शक्ति ले हूँ।

दर्शन और बहुत सुंदर भक्ति पूजा में लग गए तो अम्बा के नाना होत्रवान पहुँच गए। बेटा ते यहाँ का करत हस? कहते नाना मोर शत्रु भीषा में वाला मारे बर मैं यहाँ प्रतिज्ञा करे हूँ। तो कहते बेटा हमार धरती में ऐसे परशुराम गुरु है जिन औरत के ऊपर स्त्री के ऊपर अत्याचार अन्याय दुराचार करने वाले ला वो मार देते। तो बेटी हमला परशुराम के पास जाना है। परशुराम के पास में ले गए और सारे बात परशुराम ने बता दी अम्बा कि मोर शत्रु है तो भीष्म पितामह ओला मारे के खातिर मैं भक्ति में लगे रहे महाराज लेकिन मोला न्याय चाहिए। अरे मोर सन बिहाव करे और नहीं तो मोला कुछ न कुछ

0: भीष्म पितामह के लड़ाई शुरू हो गए। आगी मान, पानी मान, हवा मान, सर्प मान, गरुड़ मान, अंधकार मान, प्रकाश मान, शक्ति मान, अरे बान बान।
1: या या।
0: सात दिन सात रात बीत गए। अब परशुराम के टारे तो भीष्म नहीं टारे, और भीष्म के टारे परशुराम
1: नहीं टारे।
0: तेरे जीवा में

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडवानी गायन। किस्सा था आदि पर्व का और प्रसंग था अम्बा अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर तथा भीष्म द्वारा अपहरण का। कलाकार थे विदुषी शांतिबाई चेलक और साथी। सहयोगी कलाकार में रागी थे पंचराम धृतलहरे। हारमोनियम पर थे विनोद साहू। तबले पर शिवलाल खरे। नाल पर गोपाल दास और झुमका पर थे श्यामलाल देशमुख। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। रायपुर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि देशभर में योजना के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 11,400 से अधिक युवाओं को पहली नौकरी का प्रोत्साहन मिला है। ईपीएफओ रायपुर के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में

0: विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कल प्रदेश के अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 19 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला और सम्मान समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
1: रोजगार एवं कारोबार से संबंधित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का शुभारंभ एवं लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय रायपुर द्वारा 19 जून को एम्स ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय एवं श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जुड़ी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, श्रम आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त वाणिज्य कर, आवास, पर्यावरण, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी तथा रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एवं कार्यालय प्रभारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के श्री जयवर्धन इंगले ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा,
2: मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ईपीएफओ द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ईपीएफओ क्षेत्र कार्यालय रायपुर ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन, श्रम एवं उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी अपनाई। व्यापक प्रचार हेतु सेक्टर स्पेसिफिक कैंप्स जैसे आयरन एंड स्टील, पावर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी तथा

0: एक्सपर्ट सर्विसेज जैसे रोजगार सृजन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया गया। विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशंस एवं उनके इवेंट्स, एमएसएमई एनक्लेव कॉन्क्लेव्स में संवाद एवं बैठकें आयोजित कर योजना की विशेषताओं, पात्रता एवं लाभों की जानकारी दी गई। ईपीएफओ रायपुर ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के द्वारा छत्तीसगढ़ के हर जिले में कुल 312 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अगस्त 2025 से अब तक लगभग 800 कैंप्स का आयोजन तथा 1100 से अधिक न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया कवरेज प्रेस एवं मीडिया के सहयोग से जारी किए गए हैं। इन सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को उत्साहजनक सफलता प्राप्त हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के 11,481 कर्मचारियों को लगभग 5.37 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वहीं 900 नियोक्ताओं को ₹16.33 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि हम अगस्त 2025 से योजना के अंतर्गत प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की प्रोफाइल का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने में अत्यंत प्रभावी रही है। लाभार्थी कर्मचारियों में लगभग 80% की आयु 35 वर्ष से कम है, जिनमें से 61% कर्मचारी 28 वर्ष के आयु से कम है। जेंडर एनालिसिस से यह भी योजना समावेशी सिद्ध हुई है। प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों में लगभग 22% महिलाएं हैं, जो महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी तथा आर्थिक सशक्तिकरण का सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के उद्योग, प्रतिष्ठान और युवा कार्यबल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान ऐतिहासिक 4 नई श्रम संहिताओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा लागू की गई 4 श्रम संहिताएं जैसे वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य संहिता श्रम कानूनों को सरल, पारदर्शी और श्रमिक हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन संहिताओं का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक श्रमिक को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल तथा सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना है। इन संहिताओं के माध्यम से श्रम कानूनों को सरल बनाया गया है, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया है तथा अनुपालन की जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। इन संहिताओं का मूल उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स भी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इनके प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और इनके लाभों को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाएं। आप सभी के सहयोग, सहभागिता तथा राष्ट्र निर्माण एवं विकसित भारत के प्रति समर्पण के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
1: कार्यक्रम की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: आज हम सब जब यहाँ पर प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, देखिए देश के तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं और उसी के तहत विकसित भारत रोजगार योजना, जिस योजना में 99,446 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रखा है और उस योजना में 15,000 रुपए तक अप्रेंटिसशिप के लिए नौजवानों को मिलेगा और जो उद्योगपति अपने यहाँ, जिनके यहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं, वो अगर 2 लोगों को नए एम्प्लॉई देते हैं तो 3,000 रुपये केंद्र सरकार उनको देगी और 5 से ज़्यादा है तो उनको भी केंद्र सरकार, 100 से ज़्यादा जिनके यहाँ हैं उनको 5 लोगों को अगर देते हैं तो उनको 3,000 रुपये केंद्र सरकार देगी। और ये एक ऐसी योजना है, छत्तीसगढ़ में लगभग हम 10,000 लोगों को अप्रेंटिसशिप में रोजगार दे सकते हैं, हम स्किल्ड कर सकते हैं, तो इस योजना का फायदा छत्तीसगढ़ में हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में उद्योग मंत्री जी आपको एक बार

0: बैठक बुलाकर और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बच्चों को हम इस प्रकार से ये स्टाइपेंड जो केंद्र सरकार की योजना है ये दिलवा सकते हैं, इस दिशा में हमको कोशिश करना चाहिए। और विशेष रूप से अब जैसे हमारे बस्तर में मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री ओम प्रकाश चौधरी मंत्री वित्त वाणिज्य आवास पर्यावरण उद्योग एवं सांख्यिकी छत्तीसगढ़ शासन ने कहा,
2: हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी बड़ी योजना का एक आज विशेष लॉन्चिंग और एक विशेष रूप से जो इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस अवसर पे हम सब उपस्थित हैं, हम सब सौभाग्यशाली। और यही कारण है कि भारत जैसे देश में आज जो दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है वहाँ इस तरह के अलग अलग स्कीम्स देखने को मिलते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जो मैकाले आधारित शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं जो सिखाया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में सिखाया जाता था और जो उद्योगों को जरूरत होती थी उन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप था। इसको व्यवहारिक रूप से समझने का और समझ करके उसे दूर करते हुए युवा साथियों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का एक बड़ी योजना अगर किसी ने सोचा है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और आज जो हम स्कीम देख रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये इसी समझ का व्यवहारिक परिणाम है कि जो पढ़ाया जाता है और जो उद्योगों को जरूरत है उनके बीच जो दूरी है जो गैप है वो समाप्त हो। और इसके लिए लगभग 1,00,000 करोड़ की योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मनसुख मांडिया जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। और इसी अवसर पर मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि 2024 से 2030 तक के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लेकर आई है उसमें भी इस तरह के इंटर्नशिप और अतिरिक्त जो प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है इम्प्लायर को भी और इम्प्लाई को भी उसके भी विशेष प्रावधान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवा भाई बहनों को अगर रोजगार देते हैं तो उसका अतिरिक्त लाभ आप दे पाएंगे। उद्योग नीति के प्रावधानों का भी मैं आप सबसे इम्प्लायर साथियों से उद्यमी साथियों से एंटरप्रेन्योर से रिक्वेस्ट करूंगा कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को भी क्लब करके पढ़ें और इस योजना और उद्योग नीति दोनों को मिला करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त करते हुए अधिकाधिक लोगों को रोजगार दें। पहले छत्तीसगढ़ में भी जो उद्योग नीति बनती थी उसमें जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी सब्सिडी प्रदान की जाती थी छूट प्रदान की जाती थी उसका एक ही क्राइटेरिया होता था कि कितना बड़ा अमाउंट निवेश किया जा रहा है। अब नई उद्योग नीति पहले जैसे होता था कि भाई 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छूट मिलेगी। इस तरह से छूट का जो क्राइटेरिया था वो निवेश का अमाउंट होता था। लेकिन नई उद्योग नीति जो छत्तीसगढ़ की है आदरणीय लखन भैया जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से जो उद्योग नीति लागू हुई है उसमें ये जो छूट है वो निवेश के अमाउंट पर आधारित ना होकर रोजगार सृजन पर आधारित कर दिया गया है, जिसमें 1,000 रोजगार अगर क्रिएट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, 5,000 रोजगार क्रिएट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत गौरव का क्षण है हम सब के लिए कि इतनी बड़ी योजना का आज एक बहुत बड़ा अमाउंट लगभग 2,500 करोड़ रुपए का अमाउंट इम्प्लायर्स और इम्प्लाइज के खाते में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हस्तांतरित किया जा रहा है। ये बहुत गौरव का क्षण है कि इस अवसर पर हम सब उपस्थित हैं और विशेष करके आज के बदलते जमाने में जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड रही है लेकिन सर्विस सेक्टर में टेक में किस तरह से डिसरप्शन होता है उसको आज AI के जमाने में हम सब देख रहे हैं। तरह तरह की जरूरतें सर्विस सेक्टर में IT सर्विसेज में बहुत तेजी से बदली हैं और जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज थे KPO BPO थे उन पर एक बहुत बड़ा चैलेंज एक चुनौती प्रस्तुत हुई है और हमारे भारत देश के युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के वो सामने आई है। लेकिन जहाँ तक मैं इस योजना को पढ़ रहा था ये मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फोकस करता है और इस सेक्टर में जो हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार मिलेगा वो ज़्यादा सर्वाइव करने

0: वाला रोजगार होगा, ज़्यादा उसमें संभावनाएं ज़्यादा होंगी और उसमें रिस्क फैक्टर डिसरप्शन रिस्क कम से कम होगा, जिस और किसी भी इकॉनमी के लिए, दुनिया की जिस भी इकॉनमी ने बड़ा जंप लगाया है वो सर्विस से पहले मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही स्ट्रांग किया है। इसी बात को समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था जो मोस्टली सर्विसेस ड्रिवन हो गई थी उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी मजबूत बनाने का काम किया है और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जैसी चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। दुनिया के हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को एक मजबूत बुनियाद देना, ये नरेंद्र मोदी जी के बड़े विजन का परिणाम है जो भारत को 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जा रहा है और उसमें इस योजना की बड़ी भूमिका होगी। हम सब मिलकर के, आदरणीय बृजमोहन जी ने जैसा कि कहा है, हम सब लोग मिलकर के इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को दिलाएँ और लखन भैया जो उद्योग नीति लेकर के 2024 से 30 के लिए लेकर आए हैं उसमें भी लक्ष्य कि 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पर हम सब लोग मिलकर के हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त करेंगे। यही निवेदन करते हुए, यही संकल्प लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय मनसुख मांडिया जी को और राज्य की उद्योग नीति लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री लखन भैया को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
1: इस अवसर पर श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य कर, आबकारी एवं श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: अत्यंत ही यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की 12 वर्ष सफलतम पूर्ण रूप से पूरा हुआ है। इस 12 वर्ष में उन्होंने इस देश में हर क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का प्रयास हुआ है, चाहे विकास की मामला हो, चाहे गरीब कल्याण योजना की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, हर क्षेत्र में एक भारत ऊंचाई तक पहुंचने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे जो उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की बहुत सारे काम इस 12 वर्ष में हुए हैं, जिसमें हमारे कर्मचारियों को प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रोत्साहन राशि कभी दी जा रही है, जिसमें हमारे कर्मचारियों के 1 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक के प्रोत्साहन राशि उनको देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें 99,446 करोड़ रुपया कुल व्यय वाली योजना पूरे भारतवर्ष में होना है, जिसमें हमारे 3,05,00,000 हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 1,92,00,000 हमारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये योजना बहुत ही अच्छा एक योजना, ताकि रोजगार के अवसर प्राप्त हो। अभी हमारे 4 लेबर कोड भी लागू हुए हैं, इससे भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। समय पर उनका वेतन, समय पर काम, ये सारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मनसानुसार और हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बड़ा देश के हित में एक अच्छा काम होने का प्रयास हुआ है। अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे, छत्तीसगढ़ में भी नया उद्योग नीति और उस उद्योग नीति में भी इस तरह से प्रावधान किया गया है और लगातार छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाने का काम आप सबके मेहनत आशीर्वाद से पूरा करने का प्रयास हो रहा है। उद्योग नीति में बहुत सारे सब्सिडी वगैरह का प्रावधान, रोजगार को बढ़ावा देने का प्रावधान, नए नए उद्योग प्रारंभ हो इसका प्रावधान, अभी तक के हम लोगों को 8 लाख करोड़ तक का निवेश का प्रस्ताव मिल

0: यह है और खाली निवेश का प्रस्ताव नहीं है, धरातल पर काम भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो नहीं, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उद्योग रहेगा तभी हमारे श्रमिक वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, और उसी भाग में जो 15,000 3,000 का अलग अलग मापदंड में देने का भारत सरकार ने प्रावधान किया है, छत्तीसगढ़ सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह से उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है, और यह भारत सरकार का बहुत ही बड़ा काम, इतना बड़ा 99,496 करोड़ रुपया का व्यय होगा। अब इस तरह से लोगों को कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिसमें 3,05,00,000 लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है, हमारे देशवासियों को, और बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़े ही अच्छा अवसर है, और आज की आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
1: तत्पश्चात कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा जुड़ा। कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मांडवीय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगी।
2: देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है, और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है, और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं।
1: इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा,
3: आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों,

0: तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरा नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है, नहीं ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थी के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है।
1: और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना समारोह के अवसर पर भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त श्री गौरव डोगरा के धन्यवाद ज्ञापन से समापन किया गया। इस अवसर पर कुछ नियुक्ताओं और लाभार्थियों से हुई बातचीत के अंश अब आप सुनेंगे।
2: सर, आपका शुभ नाम?
3: अमनेश रंजन तिवारी।
2: अच्छा, आप किस पद पर हैं?
3: मैं

0: जी टी के तौर पे जिंदल स्टील में कार्यरत हूँ।
1: आप इस योजना के साथ कब से काम कर रहे हैं?
0: मैं इस कंपनी के साथ मुझे अभी 8 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, पर ये यहाँ पर जो डेट बताई गई उसके पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। जैसे 1 अगस्त बताई गई तो मैंने 14 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था।
1: आप इस योजना का मुख्य उद्देश्य बता सकते हैं?
0: मतलब मोटिवेशन है नए एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली।
1: मैम आपको शुभ नाम।
2: शिल्पी डी।
1: आपका किस पद पर है?
2: मैं सीनियर HR हूँ रोल्स में।
1: आप इस योजना के साथ कब से काम कर रहे हैं?
2: मैंने ये कंपनी एक्चुअली मेरा वर्क एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का, 2019 से मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और इस कंट्रोल्स मैंने ज्वाइन किया था 2025। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे कलीग्स के साथ।
1: मैम इस योजना में काम करते समय सबसे बड़ी परेशानी क्या आई आप?
2: चैलेंजेस एज सच ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मोस्टली हर कंपनीज़ में जब हम जॉब करते हैं मोस्टली कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते ही है, बट ज़्यादा कोई चैलेंज मुझे फेस नहीं करना पड़ा।
3: इस अवसर पर उद्योग के प्रतिनिधि, नियोक्ता, लाभ

0: एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली।
1: मैम आपको शुभ नाम?
2: शिल्पी डी।
1: आप किस पद पर है?
2: मैं सीनियर एचआर हूँ रूल्स में।
1: आप इस योजना के साथ कब से काम कर रहे हैं?
2: मैंने ये कंपनी, एक्चुअली मेरा वर्क एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का, 2019 से मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और इस रूल्स मैंने ज्वाइन किया था 2025। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे कलीग्स के साथ।
1: मैम इस योजना में काम करते समय सबसे बड़ी परेशानी क्या आई आप?
2: चैलेंजेस एज सच ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मोस्टली हर कंपनीज में जब हम जॉब करते हैं मोस्टली कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते ही है, बट ज़्यादा कोई चैलेंज मुझे फेस नहीं करना पड़ा।
3: इस अवसर पर उद्योग के प्रतिनिधि, नियोक्ता, लाभार्थियों की सराहनीय उपस्थिति थी। और इसी के साथ रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना समारोह के आयोजन की रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग उदय ठाकुर और क्रांति कुमार साहू, स्थल ध्वन्यांकन पीहू शरणागत, वाचन और प्रस्तुति सहयोग हर्षिका ध्रुव और प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे।
4: अभी आप सुन रहे थे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 19 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेले और सम्मान समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

वक्त फिल्म का ये गीत था आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीत साहिर का था और संगीत था रवि का। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। SH बिहारी का गीत है, संगीत OP नैयर का और फिल्म है कश्मीर की गली।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है बड़े दिलवाला।

था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे सुरों से सजाया है राहुल देव बर्मन ने। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म है सितमगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है।

0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है आरजू।

0: मेरे सनम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था ओपी नैयर का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मेरे हुजूर, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म है मेरे जीवन साथी।

दो चोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम है गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:40 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के

कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित छन्नूलाल मिश्र से राग मिश्र देश में ठुमरी, बोल हैं श्याम नहीं आए। आपके साथ हारमोनियम पर हैं जय कुमार जयपुर वाले और तबले पर हैं अवध सिंह ठाकुर।

0: उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र के स्वर में अभी आपने सुनी राग मिश्र देश में ये ठुमरी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कल होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल किया गया और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490,54,00,000 रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राज्य में अब तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। सरकार ने वन पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जाति वर्ग के किसानों को भी इस योजना से जोड़ा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा और अन्य व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 78279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम डोंड राही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37,00,000 रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कल होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल किया गया और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर।

0: यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। आकाशवाणी संग्रहालय से अब प्रस्तुत है गाथा झरोखे से का भाग 4, नगेश्वर कैना की लोक गाथा। लेखक हैं डॉक्टर PC लाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।
1: प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोके से।

0: लीजिए सुनिए रूपक नगेसर कैना की गाथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर पीसीलाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।
1: हृदय को छूने वाली ये मधुर मधुर स्वर लहरी उस लोकवाद्य की है जिसके तारों में झंझकृत होता है छत्तीसगढ़ का लोक जीवन, जिसकी संगति में महानदी की लहरों की तरह तरंगित होता है छत्तीसगढ़ का जीवन दर्शन। इस स्वर लहरी में समग्रता है लोक जीवन की, सहजता है, सरसता है लोक मन की।
2: हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये स्वर लहरी है लोकवाद्य रुंझों की, जो देवार जाति का पारंपरिक लोकवाद्य है। हाँ, वही देवार जाति जो बड़ी कला प्रवीण होती है, जिनकी कला और सृजन कर्म की पृथक पहचान है। रुंझों के तारों पर अटखेलियां करती उंगलियां और लोक अमृत की निझरनी बहाते इन लोक कंठों से न जाने कितनी लोक गाथाओं की रस वर्षा होती है। उन्हीं लोक गाथाओं में एक है नगेसर कैना।

0: सुंदर कनर है रे भाई, तेकर कथा लामे सुनावा थोरे भाई। हरी
1: दो मित्र थे शिवनायक और बर्मा। अवर्षा और दुष्काल की स्थिति में जीवन यापन के लिए दोनों परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए। आजीविका की तलाश में उज्जैनी तक गए। दोनों की पत्नियों ने महाकालेश्वर के समक्ष मित्रता को संबंधों में परिणित करने की सौगंध खाई। परिस्थिति अनुकूल होने पर दोनों सपरिवार अपने देश राज की ओर लौट पड़े।
2: शिवनायक रतनपुर में रम गए और बर्मा मल्हार में बस गए। शिवनायक की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और बर्मा की पत्नी ने पुत्री को। नामकरण हुआ सीताराम नायक और नगेसर कहना। वादे के मुताबिक शिवनायक और बर्मा समधी बन गए। 5 महीने का सीताराम और 4 महीने की नगेसर कहना का विवाह हुआ पर्रा भावर।

0: के बिहाव खुशहाली से सफल हुआ तेरे भाई।
1: विवाह पश्चात सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। धूं की बीमारी से शिवनाथ की अकाल मृत्यु हो गई। वर्मा को जब समाचार मिला तो वो रतनपुर पहुंचा। उसने अपने समधि के दशगात्र क्रियाकर्म को विधि विधान से पूर्ण किया और बालक सीताराम के संरक्षण का दायित्व उसके पुराने सेवक भीमाचालक को सौंपा।

साल दर साल बीतते 12 साल बीत गए। सीताराम नायक का गबना होना था। भीमा चालक बैलों, ऊंटों व घोड़ों पर गुड़, चिवरा, चना, आटा और चावल लादकर मल्हार की ओर प्रस्थान करता है। इधर नगेसर कैना अपनी माता से सरोवर स्नान के लिए जिद करती है। लाख समझाने के बाद भी 5 भाइयों की इकलौती बहन नगेसर कैना अपनी सहेलियों के साथ सरोवर स्नान के लिए चली जाती है।

0: ऐसे ढंग ले महतारी रहे तुम नगेसर कैनाला समझावा थे रे भाई।
1: नगेसर कैना माँ की बात अनसुनी कर सात चीरी

0: या आगे और सात चिड़िया पीछे लेकर सरोवर स्नान के लिए चलती है। काफी अपशगुन होते हैं। बिल्ली रास्ता काटती है। सखियां उसे मना करती हैं, पर नगेसर कहना मानती कहां है। उसकी तो प्रबल इच्छा है सरोवर स्नान की। नगेसर सारे गहने उतारकर स्नान करने में तल्लीन हो जाती है।
1: इधर सीताराम नायक सरोवर के किनारे अपने दलबल के साथ रुका हुआ है। सरोवर के किनारे रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव को सुनकर सीताराम नायक उनका शिकार करना चाहता है। भीमा चालक सीताराम नायक को मना करता है। सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही हैं, वहां जाने से मर्यादा का हनन होगा। सीताराम नायक पक्षियों का शिकार करता है। इस बात पर एक दूसरे से अनजान सीताराम और नगेसर में वाद विवाद हो जाता है।

0: व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए सामने वाले का अपमान करने से भी नहीं चूकता। वो धन दौलत और रूप सौंदर्य का गुमान करता है, जबकि ये सारी चीजें किसी की नहीं होती। सीताराम नायक और नगेसर कैना एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। अभिमान के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो किसी की पहचान कर ले।
1: आदमी का अहंकार उसकी विवेक शक्ति को विनष्ट कर देता है। सीताराम नायक और नगेसर कैना के बीच भी यही तो हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे की पहचान जानने की कोशिश कहाँ की, इसलिए विवाद गहराता गया। लोक गाथा नगेसर कैना का ये पक्ष संपूर्ण मानव जीवन के उस मर्म को प्रदर्शित करता है, जहाँ लोग एक खुली किताब की तरह अपने अच्छे बुरे सबको सबके सामने प्रकट कर देता है।

0: बदले की भावना और क्रोधाग्नि में जलती हुई नगेसर कैना अपने घर आकर उस युवक की शिकायत करती है। वो रुष्ट होकर बैठ जाती है। उसकी माँ कहती है, क्या कमी हो गई है, बताओ क्यों रो रही हो। तब नगेसर उस युवक का सिर काट कर लाने को कहती है जिसने उसके साथ धृष्टता की है।
1: इधर सीताराम नायक भी अपने अपमान से पीड़ित है। वो गबन के लिए किए दूल्हे के श्रृंगार को उतार फेंकता है। वो एक अनजान भय से आक्रांत भी है क्योंकि नगेसर कैना ने उसके सिर को कलम करने की बात कही है। वो सारी स्थितियों से भीमा चालक को अवगत कराता है।
0: नगेसर की बात सुनकर पांचों भाइयों का खून खौलने लगता है। नगेसर की पांचों भाभियां भी उस युवक का सिर काटने के लिए उकसाती हैं। पांचों भाई क्रोधित होकर फौज फटाका लेकर सरोवर के किनारे जाते हैं। उन्हें युद्ध के लिए आते देखकर भीमा चालक सतर्क हो जाता है और बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें अपने और सीताराम के बारे में बताता है कि वो तो गवना के लिए आए हैं।
1: सीताराम नायक उनकी बहन का पति है, ये जानकर पांचों भाइयों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वे नगेसर द्वारा कही गई बातों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सीताराम नायक भीमा चालक और उसके बारातियों का स्वागत करते हैं। सभी बारातियों की परघनी की जाती है। मल्हार में चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। गांव भर की महिलाएं मल्हार की बेटी नगेसर कैना को विदा करती।

0: के सर किनारे भाई।
1: सेवरी नदी के किनारे डोली रोक दी जाती है। उसी समय सुग्गा सीताराम से शिकायत करता है कि डोली में तो वही लड़की है जिसने सरोवर के किनारे तुम्हारा अपमान किया है। सीताराम घूंघट उठाकर देखता है। नगेसर को देखते ही वो आग बबूला हो जाता है। 12 बरस की नगेसर को सीताराम कोड़े से मारता है। पुरुष का अहंकार यहां पुनः जागृत हो जाता है। निर्मम पिटाई से नगेसर की मृत्यु हो जाती है। सीताराम रतनपुर चला जाता है।
2: उसी समय कंबल खुमरी ओढ़े एक वृद्ध प्रकट होकर अमृत कुंड से जल पिलाकर नगेसर को जीवित कर देता है। नगेसर अपनी सहेलियों के साथ मल्हार पहुंचती है। तब तक क्रोध की अग्नि में जलता सीताराम नायक 7 बैलों में गेरू लाद कर व्यापार के लिए निकल जाता है। नगेसर अकेली रह जाती है। उधर सीताराम नायक नदी पार करते समय बह जाता है। सीताराम का सुग्गा आकर नगेसर को समाचार देता है। नगेसर तत्काल पुरुष वेश बनाकर घोड़े में सवार होकर प्रस्थान करती है।

0: पत्नी अपमान और तिरस्कार सहकर भी अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है, ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय लोक जीवन में मिलते हैं। लोक जीवन के आचार विचार और रहन सहन का प्रतिबिंब हमारी लोक गाथाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नगेसर कैना इस बात की साक्षी हैं।
1: सीताराम नायक इस बात से अनभिज्ञ है कि पुरुष वेश में उसके प्राण बचाने वाला उसकी पत्नी है। घर लौटने पर पुनः नगेसर को देखकर वो उससे नफरत करता है। वो दोबारा अपने बैलों पर गेरू लादकर व्यापार के लिए निकल जाता है। उसके साथ भीमा चालक और अन्य साथी भी हैं। इस बार ढोल नदी पहुंचकर सीताराम नायक का दल संकट में पड़ जाता है। सीताराम नायक को एक बहता हुआ पेड़ अपनी चपेट में ले लेता है। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता।

अड़गे सब ओ काम बिगड़ गए रे भाई। पहला चालक सहित काका के काम तमाम हो गए कहा थे रे भाई। तब नागेसर कहना अपन पति ला

0: इस प्रकार पार्वती के आग्रह पर शंकर जी सीताराम नायक को अमृत सींच कर जीवित कर देते हैं। सारा भेद जानकर सीताराम नायक को अपनी गलती का एहसास होता है। वापस रतनपुर लौटकर सीताराम नायक और नगेसर कैना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे इनके सुख के दिन बहुरे, वैसे ही सबके दिन बहुरे, यही मंगल कामना है।
1: और ये भी कामना है कि लोकमानस में व्याप्त हमारी लोक गाथाएं संरक्षित और संवर्धित हों, क्योंकि ये लोक गाथाएं हमारी कला, संस्कृति और साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। ये धरोहर युगों युगों से हमारा मार्ग प्रदीप्त कर रही हैं। नगेसर कहना केवल गाथा ही नहीं, लोक संस्कृति की पहचान है, लोक जीवन का गान है। इसमें माटी की सौंधी महक है, प्राण पखेरों की चहक है। नगेसर कहना आम नारी की कथा है, उसके अंतर

0: रहा थे भैया।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक नगेसर कैना की गाथा। इसके लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव, वाचक स्वर दीपक हटवार और शीतला शुक्ला के, गायक कलाकार कुलेश्वर ताम्रकार और पुराणिक साहू। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।

आकाशवाणी संग्रहालय से अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गाथा जरोखे से का भाग चार, नगेश्वर कैना की लोक गाथा। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, आपके मीत ये गीत।

आपके मीत ये गीत सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के लिए जो पहला गीत हमने लिया है

आपके मीत ये गीत सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के लिए जो पहला गीत हमने लिया है वो है फिल्म एनिमल से। आवाज सोनू निगम की, गीत लिखा है राजशेखर ने और संगीत है हर्षवर्धन रामेश्वर का। इस गीत को सुनवाने के लिए पोस्टकार्ड भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी, ममता तिवारी, धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, अर्चना मिश्रा, प्रतीक्षा चंद्रकांती, धनंजय मिश्रा, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और कान्हा आर्य, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, पहंदा कोरबा से समेलाल कुरे, सावित्री देवी कुरे, सरकबुंदिया से गब्बर साहू और निर्मला देवी साहू और पटपर डोंगरगढ़ से रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव। फिल्म एनिमल के इस गीत को सुनवाने की ख्वाहिश अपने ईमेल में हमारे इन श्रोताओं ने भी की है। कवर कॉलोनी बड़वा खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक चंदकी साहू, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर, भड़गा कोदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, कुई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई ध्रुवे, फिरतराम ध्रुवे, मालती ध्रुवे, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, परसाटोला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परिकृतिका, रमेश चंद्र डांगी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी से इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, भले सर महासुमन से बलराम सेन, इंदू सेन, छगन सिन्हा और द्वारिका सिन्हा, मऊ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, पंजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक चंसौलिया, टेकापार वालों से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति, अंकित, श्रद्धा और सौरभ यादव, खबरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, और नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म एनिमल का ये गीत।

सोनू निगम के गाए फिल्म एनिमल के इस गीत के बाद अब बारी है फिल्म लव यात्री के इस गीत की, जिसके लिए आवाज़ आतिफ असलम की है। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने पोस्टकार्ड भेजकर। धामनी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनंत डेरे। देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे। करहीभदर से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना सोनवानी, गीतिका गुड़िया, पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर और कुमारी लोचन विद्यार्थी। सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, विजय सेन, ललिता सेन, रामेश्वरी मीरा सेन। पावर हाउस भिलाई जामल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ संजय प्रधान, पूजा प्रधान। मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। और चूड़ी नाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल में की है हमारे इन श्रोताओं ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुषी और नंदिनी जंघेल। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। बुडगहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेंश कुमार चंदन। डोंडी लोहरा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल। पलारी से प्रकाश वर्मा, यश, निखिल, अन्नपूर्णा, पूजा वर्मा। गेंदा टोला बाजार चौक राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। धरसीमा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरणा, अनुराधा, अल्पना यादव। मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपला।

दीपक और टेकलाल पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनिए फिल्म लव यात्री का ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में।

आतिफ असलम के गाए फिल्म लव यात्री के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाएं मेरी प्यारी बिंदु। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत लिखा है प्रिया सरैया ने, संगीत सचिन जिगर का है। इस गीत को सुनवाने के लिए पोस्टकार्ड भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू, बेमित्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या, सुषमा सारथी, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृकु, विनय ठाकुर, सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष, प्रकाश सेन, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी, ओजल वर्मा, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, और आप हैं चिरमिरी रोड कोरबा से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत सानवी, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल में की है हमारे इन श्रोताओं ने। पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी और अरुण कनौजिया, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, लोरमी ग्राम करुहानार

से गोमती रजक काजल रजक, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग टेलर, पूनाराम कृष्णा देवांगन, बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा अदिति बंसोड़े, शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक खुशबू नामदेव, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, देहान बांदा बाजार राजनांदगांव से हरिओम साहू, रेवाराम, रानू, सरस्वती, प्यारी राम और परमानंद साहू, पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जानवी साहू, मेचका सोंडूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा लिखिल, तरुण दीप नाग, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, सिंगारपुर पैलीमेटा से चिंताराम ध्रुवे, कामिन चंद्रध्वज और सानी ध्रुवे, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य, अंजलि जंघेल, गांधी पार्क मनपुरा शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष कान्हा, आदित्य देवांगन और लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का ये गीत।

आपके मीत ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। अगला गीत फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से शांतनु सदाने और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

सुनना चाहा हमारे इन श्रोताओं ने जिन्होंने पोस्ट कार्ड भेजा है। आप हैं बंगला मटिया बालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु और आरती यदु, सिमगा से सविता जैन और मोनिका जैन, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सिंह। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल में की है हमारे इन श्रोताओं ने। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, सुमांशु पांडे, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता, वंशिका दिवाकर, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, पानबेड़ा मंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत उमंग, मोक्ष पडोटी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छिरहा बेमित्रा से दिलीप जायसवाल, दिलेश्वर, दीपक, विभू, चित्रांश और देवांश जायसवाल, बाजारवाड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा हिरमनी, दीपक, लक्ष्यदास, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, भाटापारा से सोहन, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह, बानी चावला, लोकेश पायल, अंकित जोशी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा, वान्या सिंगरौल, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े, नागर कोहरा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्राजल, समीक्षा आराध्या साहू, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, बागामोड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, लगान पंडेरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती मयंक, सेक्टर 8 भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, बठेना पाटन दुर्ग से पलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा, इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा नेहा, राजू देवांगन, सहमालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, डोडरी घोटिया मोहलामानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद, कोरासी भैंसा रायपुर से पवन कुमार, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू और भोईना पार लाटाबोड़ बालोद से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई और गंगाराम साहू। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म उरी का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म RRR से सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची प्रियल। सासपुर से छोटकू साहू, मोहित राम, लोकेश राम, राम किशन, दुलीचंद, सत्यबाई, उर्वशी साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, पिपल कांबड़े। चरडुंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा और संध्या कुकरेजा। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना। बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। खमारमुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, शिवाय गिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी। चौरादा बारनवापारा से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर। भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, उमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता। हरदेव लाल पारावाड़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा देवांगन। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता गम्हाणकर, एकांश गम्हाणकर। और इसी गीत को सुनना चाहा है हथनीपारा भाडापारा से चुआराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी बाई और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। और वार्ड नंबर 20 बेमित्रा से राज और सारिका वैष्णव। और सबकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म RRR का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत को यहीं समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार। आपके मीत ये गीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया।

0: वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

किशोर कुमार की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत श्यामल मित्रा का था, फिल्म थी आनंद आश्रम। आइए अब सुनी चलते चलते, इस फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा है, संगीत पप्पी लाहिरी का है।

फिल्म कभी कभी का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था, संगीत था खयाम का। साहिर लुधियानवी का लिखा और खयाम के संगीत से सजा एक और गीत सुनिए, लता मंगेशकर और येसुदास की आवाजों में, फिल्म त्रिशूल से।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है
1: कह दो।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत राहुल देवी बर्मन का था। फिल्म दीवार के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे दिन में 3:55 पर। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स कैन और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा आज रात 10:00। इसमें आप सुनेंगे विवेक करमहे का ठुमरी और तात्रा गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम संस्कृति सुनिएगा आज रात 9:25 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गुट में चर्चा होगी योग भगाए रोग, इस विषय पर। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी फोन इन क्रम जोहार पहनी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन कोट का विषय होगा विश्व शरणार्थी दिवस और होंगे क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे खोमचंद साहू और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे पंडवानी। कलाकार होंगे विदुषी शांतिबाई चेलक और उनके साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा महिला सशक्तिकरण का आधार मशरूम उत्पादन। 7:30 पर किसानवाणी में क्रम आज के किसान में खेती किसानी और पशुपालन के बारे में बताएंगे श्री राम साहू, ग्राम आमोदी, जिला सारंगढ़, पिलाईगढ़। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी।

श्रोताओ, हम आपको एक बार फिर बता दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे दिन में 3:55 पर। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स कैन। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसमें आप सुनेंगे विवेक करमहे का ठुमरी और दादरा गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम संस्कृति सुनिएगा रात 9:25 पर।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

रोज करे जे योगला, तन मन रहे निरोग, सांस सांस में बसे सुख, दूर भगावे रोग, दूर भगावे रोग। आवा बहनी हूँ घर

आपले सुने या जम्मो श्रोता बहिनी मला रोशनी राठौर कोतीले जय जोहार राम राम हे। हाँ बहिनी हो, मोर ये पंक्ति ले सुन के आप मन हा समझ गए हो कि आज हमर गोट के विषय का हरे। बिल्कुल सही समझे हा आप मन हा, आज हम बात करबोन योग भगाए रोग ये विषय मा। काबर की काली आवाय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जौन ल हर साल 21 जून को मनाए जाथे। बहनी हूँ, योग शरीर मन और आत्मा ला एकाग्र करैया एक अति प्राचीन साधना आवय। योग की शुरुआत कहाँ ले हो रही से जानता हूँ? हाँ बहनी हूँ, हमारे सनातन संस्कृति भारत देश ले ही योग के शुरुआत हो रही से। भगवान शिव ला योग के प्रवर्तक माने जाते। भगवान भोलेनाथ ही मानव मन में योग के बीज बोइन। देखे जाए तो योग एक ऐसन क्रिया आवय जो न सिर्फ मन खेला शारीरिक और मानसिक रूप ले स्वस्थ रखे में उकर मदद करते, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे में भी सहायक होते। योग के द्वारा कोई भी

योग के प्रवर्तक माने जाते। भगवान भोलेनाथ ही मानव मन में योग के बीज बोइन। देखे जाए तो योग एक ऐसा क्रिया आवे जो न सिर्फ मन खेला शारीरिक और मानसिक रूप ले स्वस्थ रखे में उकर मदद करते, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे में भी सहायक होते। योग के द्वारा कोई भी मनखे पूर्ण रूप ले निरोगी बन सकत है और स्वस्थ सफल शांतिपूर्ण तरीका ले जिंदगी जी सकत है। एकर खातिर अब विश्व भर में योग ला खास महत्व दिए जाते है। बहनी हूँ, कुछ साल पहले सिर्फ आयुर्वेदिक रूप ले ही योग ला महत्व दिए जात रही सी, लेकिन आज तो वैज्ञानिक रूप ले डॉक्टर मन भी अपन मरीज ला योग करे बर सलाह देवत है। यहाँ तक के गर्भावस्था के दौरान भी योग क्रिया करे बर कहत है, ताकि जचकी सामान्य हो सके। आज के भाग दौड़ भरे जिंदगी में देखथन ना, तो प्राय कहूँ शुगर है तो कहूँ बीपी तो कहूँ मोटापा घेरे है। कहूँ अभी के बेरा में सबले बड़े समस्या है तो वो है अनिद्रा, माने नींद के कमी कहन। ऐसा दिन आए है कि सूते भर गोली खाए पड़ जावत है। अभी के बेरा में देखथन ना तो बीमारी घेरे में लड़का सियान नहीं लगत है, कोनो भी उम्र में कोनो भी बीमारी में हो जावत है। तो स्वस्थ रहे खातिर योग ला जरूर अपनावन और कहिन कि गांव गांव शहर शहर में अलख ला जगावन, आवाओ मिल के योग दिवस ला सफल बनावन सफल बनावन।

0: बहनी हूँ आज आवे जून महीना के तीसरैया शनिचर जेकर आपो मन ला अगोरा रही थे और संग में हमू ला उत्केच अगोरा होते का के त भाई फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के फिर कार्यक्रम शुरू करे ले पहली हम तो यही कहत हन सुर के डोरी में बंधे है आप मन के बात फोन के रद्दा ले जुड़ थे मया भरे जज्बात गीत संग मुस्कान बगर थे खुशी के हर एक राह आवो संगवारी सुनबो फरमाइश के चाह फरमाइश के चाह इही भाव संग स्वीकारो रोशनी राठौर के जय जोहार आवो देखथन कि पहली फोन कॉल कौन बहने के आए है तेनला
1: हेलो
0: हेलो जोहार बहनी कौन बहनी बोला था भाई
1: जयश्री देवांगन गंडई से
0: अच्छा जयश्री बहनी बोला था
1: हाँ।
0: जयश्री बहनी हम ये जानना चाहथन कि हर साल हमन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाथन और कहे जाते कि योग भगाए रोग तो योग दिवस के बारे में आप कुछ कहना चाहो
1: योग से शरीर स्वस्थ रहते तन भी स्वस्थ रहते मन भी स्वस्थ रहते बहनी अब आजकल कहा है एकदम खान पान एकदम पूरा केमिकल से हो गई है और हर कोई की कुछ न कुछ परेशानी होता से अच्छा योगा करे से बहुत लाभदायक होते बहनी में ही तो योगा तब होगी
0: बहुत अच्छा बताया बहनी काहे आजकल शरीर स्वस्थ रहे नहीं है ना एकदम बिल्कुल सही कहा है ना तो अपन जीवन में योग ले शामिल करे हो कि नहीं आप
1: हाँ करे हो ना बहनी मैं तो रोज करता हूँ एक्सरसाइज सुबह उठ के 5 बजे
0: अच्छा सूर्योदय से पहले ओकर समय नियम है योग करे के है ना बहनी
1: और
0: ये नियम है कि भूखा पेट करना है ना खुले जगह में करना है
1: रूटीन बनाना बहन है उसको तो सबसे पहले गर्म पानी पी के फ्रेश होता हूँ और बस फिर एक्सरसाइज करता हूँ
0: बहुत अच्छा वही बहनी हमें सोचथन कि घर के काम बूता करे ले ही योग हो जाते है ना
1: कि लोगों से नहीं हो रहा है घर के काम अलग हो जाते और तो सिर्फ अपन शरीर के लिए योगा ना
0: नहीं
1: बिल्कुल काम बूता दिमाग में
0: है ना काम बूता है योग के श्रेणी में नहीं आए बहनी बल्कि योग तो वो क्रियाएं जिले हम व्यवस्थित ढंग ले आसान प्राणायाम नियम धारणा ये सब ले करते हैं है ना अच्छा ये बताओ आज कौन सा गीत ले सुनना चाहो आप
1: गौतम जैन के कोहली के गुप्त गोली
2: गिरेला पानी

0: हेलो,
1: जोहार बहनी।
0: जोहार बहनी, कौन बहनी के फोन कॉल लगे है भाई?
1: रानू साहू बोला था, ग्राम दिहान माना मजा।
0: अच्छा रानू साहू, और का हाल चाल बहनी? स्वास्थ्य कैसे है आपके?
1: ठीक है बहनी।
0: अच्छा,
1: अभी ठीक ठाक चलती है।
0: अच्छा, मौसम भी तो बदल गए है ना बहनी?
1: हाँ,
0: है ना, ग्रीष्म ऋतु ले अब वर्षा ऋतु आ गए, तो खेती किसानी के बूता चालू हो गए का? खेती बाड़ी कौन ढंग से करता बहनी? आप मन धान के पद्धति कैसे लगा था? रोपा पद्धति लगा था कि बोता पद्धति ले?
1: बोता पद्धति में लगा था ना, रोपा तो अभी खेत में ही नहीं है, पानी सीधा तो बारिश के पानी से ही खेती करता
0: हूँ। अच्छा, बोर पंप पानी की सुविधा नहीं है का? मतलब भगवान भरोसे है इसे?
1: नहीं, कुछ मन हावे खेत मन पर पूरी तरह नहीं है, अच्छे से पानी नहीं निकलता।
0: अच्छा, उती नहर नहीं कहे का बहनी?
1: नहीं बहनी, नहर नहीं है, छोटे मोटे नरवा वगैरह हावे।
0: तो अभी पानी तो बने संग से गिरे नहीं है, है ना? तो अभी काम है, खेती बाड़ी के काम है, थोकन पिछुआ है कहन?
1: हाँ, पिछुआ
0: है ना। और अन्न के महत्व तो हम समझबे करथन, कही थे ना, अन्न के कण और आनंद के क्षण ला कभू नहीं गंवाना चाहिए। कौन से गीत सुनना चाहो आप?
1: ममता चंद्राकर के कोई भी गीत सुना
0: दे। अच्छा, विदुषी ममता चंद्राकर के है ना, तो चलो आप ला सुनावा थन आपके पसंद में ये गीत ला।

0: हेलो।
1: हाँ जोहार बहनी, कौन बहनी बोला था भाई?
0: जोहार बहनी, मैं मोती मानिकपुरी बोला था दीदी, गणेश धाम परदोली से।
1: का हाल चाल बहनी?
0: सब बढ़िया है दीदी, अब पानी का गोरा है।
1: अच्छा, मौसम तो अभी कुछ पानी नहीं गिरा थे कहना चाहिए, है ना? ओकरे अगोरा है पानी कब गिरा है, के अब बड़ गर्मी रही से दारी। अच्छा ये बताओ आपकी स्वास्थ्य कैसे है?
0: हमारे स्वास्थ्य तो ठीक है दीदी।
1: 21 तारीख को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाबोन, और कही थे ना कि पहला सुख निरोगी काया, है ना? तो योग दिवस के बारे में आप कुछ कहना चाहो?
0: सब योग करना चाहिए दीदी, लड़का से यहाँ सब बोला।
1: हाँ आप करते हो कि नहीं योगा?
0: हाँ करते हो, 2.5-3 किलोमीटर का मन पैदल चल के जाता है दीदी।
1: कहाँ घूमे जाता हो कि खेत डोली वगैरह देखे जाता हो?
0: नहीं खेत में जान दीदी, अब मैं अभी अब लोग लेकर मन बड़े बड़े हो गए तो काम धाम में।
1: और का रुचि है आप ला?
0: रुचि तो अभी रेडियो वाला सुनता।
1: हाँ रेडियो सुने में रुचि है ना? तो रेडियो रेडियो में सुनता हो कि आजकल मोबाइल के माध्यम ले भी सुने जा सकत है, तो कौन सा साधन ला अपना था गीत सुने पर?
0: हाँ रेडियो घलो सुनता दीदी, मोबाइल के साधन से घलो सुनते, हम अगर रेडियो आवे।
1: अच्छा भाई सुने कर आकाशवाणी के कार्यक्रम अच्छा लगते है, अपन हमन के नियमित श्रोता हो। हाँ कौन सा गीत सुनना चाहो आज आप?
0: अभी ही महीना के है 29 तारीख के कबीर जयंती है दीदी, हम मन कबीर पंथी है।
1: अच्छा
0: एक खन कबीर भजन सुना दे कोई भी कलाकार।

0: हेलो, जोहार बहनी।
1: हाँ, जोहार बहनी।
0: कौन बहनी बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
1: चित्ररेखा साहू दीदी, रानीगांव नगरी ले।
0: अच्छा, और का हाल चाल है चित्ररेखा बहनी?
1: और सब बढ़िया है दीदी, खेत खार जत नहीं चलत है, खेते डहना हन उनके ले आप मन से मुलाकात करे बार ट्राई करत हन।
0: अच्छा, तो देखो आप सफल भी हो गया, कही थे ना करत करत अभ्यास के।
1: हाँ।
0: अच्छा ये बहनी, ये बताओ कि 16 तारीख ले लड़का मन के स्कूल खुल गई।
1: हाँ।
0: है ना, तो बालिका हाँ, शिक्षा के बारे में आपके क्या राय है?
1: हाँ, बालिका शिक्षा ला विशेष ध्यान देना है ना दीदी, आगे बढ़ाना है बालिका मन ला।
0: हाँ,
1: हाँ
0: आजकल तो समानता के अधिकार है ना नोनी बाबू मा।
1: हाँ, सब चीज में कदम से कदम मिला चल सकत है नोनी बाबू मन एक समान है।
0: हाँ,
1: हाँ नोनी मन आगे बढ़त है और बाबू मन ले।
0: बिल्कुल सही कहा बहनी, है ना, हम सहमत हैं आपकी बात से कि आजकल बेटी मन बेटा मन ले आगो निकल चुके है।
1: हाँ,
0: है ना, तो आप मन घर लड़का मन छोटे है कि बड़े है अभी?
1: मोर लड़का मन बड़े बड़े है दीदी, बाबू है तो MBBS करत तीसरा साल है।
0: ओहो, आप लोग बहुत बहुत बधाई बहनी, कहाँ ले पढ़ा थे?
1: धन्यवाद है दीदी, ए, दुर्ग।
0: अरे वाह,
1: चंदुलाल चंद्राकर।
0: अरे वाह वाह, बहुत अच्छा लगी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हो आप, ऐसा है सबला शिक्षा देव कि पढ़ाना जरूरी है।
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ, नोनी है साल बाद ही पढ़ी दीदी, दानीगल से रायपुर।
0: अच्छा, नोनी भी बढ़िया MBBS करवा के डॉक्टर बनाओ।
1: हाँ, आप सबके आशीर्वाद रही, सब हो ही दीदी, आगे बढ़ी सब।
0: अच्छा ये बताओ कि शिक्षक, हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ शिक्षा के साथ खेल कूद भी जरूरी है कि नहीं लड़का मन पर?
1: हाँ दीदी, सब जरूरी
0: है ना। मोबाइल आजकल लड़का मन बहुत मोबाइल चलाते है, तो चलाना चाहिए ना कि लड़का मन ला?
1: गलत उपयोग करत है तो गलत भी है, अच्छा उपयोग करत है तो अच्छा है, लेकिन कम चलाना है, इंटरनेट से थोड़ा दूर रहना ही ठीक है।
0: बिल्कुल सही बहनी, का खूबी और खामी सब होते है ना, सब मरे थे।
1: हाँ।
0: लेकिन अब कौन ला ज्यादा करना है, प्राथमिकता देना है अपन ऊपर रहे थे, है ना।
1: हाँ।
0: और मोबाइल बिना तो आजकल रहे भी नहीं जा सके, बहुत अकन हम लोग सुविधा दिए है।
1: हाँ, अब ओकरे से तो सब पढ़ाई लिखाई हर चीज कैसान ओकरे बार तो सुविधा नहीं मिले, लेकिन हम ओकर दुरुपयोग करबो तो गलत है।
0: बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ कि आज कौन सा गीत सुनना चाहो?
1: सोम ठाकुर और संगवारी मन के गाये गीत हरे, झुमके बरस बे बादल ईसो के अषाढ़ मा, झुमके बरस बे बादल ईसो के अषाढ़ मा, बैठे बैठे घूमत आवा मेरे मुंह पार मा, झुमके बरस बे बादल

0: हेलो
1: हेलो, जोहार बहनी।
0: जोहार बहनी, कौन बहनी बोला था भाई?
1: मैं धनोरा जगदलपुर बस्तर से कहा था।
0: अरे वाह,
1: नायडू
0: नायडू मैडम बोला था। अरे आपके हंसी हमला बहुत अच्छा लगा थे।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप मल्ला मोर हंसी ला फसल पसंद करे बर।
0: आपके मुस्कान से हम कायल हो गए।
1: थैंक यू थैंक यू। और आप सब कैसे हैं?
0: एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपके स्वास्थ्य कैसे है बहनी?
1: स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया है। हमार धनोरा है ना।
0: हाँ?
1: बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ी है, बीच में हमारा गांव है।
0: भाई छत्तीसगढ़ के स्वर्ग कहे जाते बस्तर ला।
1: हाँ, चित्रकूट के पास रहती हूँ मैं। हाँ मैडम।
0: अच्छा, चित्रकूट के पास
1: लगे हुए
0: है ना, भारत के नियाग्रा कहे जाते चित्रकूट ला।
1: यहाँ तो 12 महीना लोग आते रहते सैलानी मन।
0: अच्छा।
1: तो कभी नहीं रुके, हमेशा टूरिस्ट आते रहते हैं। और बहुत अभी तो बहुत डेवलप हो गई सेठ।
0: तो अभी तो पानी कम हुई ना जलप्रपात में?
1: नहीं नहीं, बहुत है, बहुत पानी है।
0: अच्छा।
1: और ये डहा ना अभी रात के देखे भर कला व्यवस्था करी ने, लाइटिंग वगैरह सजा के रात के ना मस्त दिखते वो जलधारा।
0: अच्छा, मतलब स्वर्ग के सुख भोगा था आप मन प्रकृति के बीच में रही की है ना?
1: अब यही यही रहन तो हम लोग जैसे तो नहीं लगे वहाँ। बाकी सब जना कथे बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है कथे।
0: अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया है, हमू एक बार घूम के आ गए हैं। तो आप मन वहाँ रही था तो रोज बार बार देखा था तो आप मन नहीं लगा थे, लेकिन वाकई वो देखने योग्य है।
1: हाँ, बहुत देखने के योग्य है, बहुत आते और बहुत पसंद करते। और मंदिर है और बड़े बड़े होटल गला है यहाँ पर। अब तो
0: और बस्तर के दंतेश्वरी के माइल हम प्रणाम करथन।
1: आप मन के दशहरा में आप आऊ तो बढ़िया देखेला मिली मैडम जी। दशहरा तो हमारे डहार बहुत अच्छा होते और बहुत भीड़ और बाहर के लोग गला आते और मस्त होते।
0: बस्तर के दशहरा तो विश्व प्रसिद्ध है।
1: हाँ,
0: लगातार 75 दिन तक चलने वाला विश्व के सबले लंबा पर्व है।
1: हाँ, लंबा पर्व है मैडम जी। और लेकिन जो विशेष उत्सव होते वो 15 दिन के होते।
0: अच्छा।
1: तो देखने के काबिल होते मंदिर मस्जिद, बाहर ले गए देवी देवता आते।
0: हाँ, हाँ।
1: में बिठा के लानते हो मुन्ना।
0: अच्छा, और अब बस्तर के का खूबी है, आप वहाँ रही था तो बताओ भाई।
1: यहाँ तो बहुत जगह है देखने के काबिल, जैसे यहाँ कुटुम्बसर है, कुटुम्बसर में गुफा मन है मैडम जी, और वहाँ पर बहुत अंदर में मंदिर वगैरह है और बहुत सारे चीज है देखने के काबिल। और जो तीरथगढ़ है, तीरथगढ़ गला वो भी जलप्रपात है, वो गला प्रसिद्ध है बहुत जगह। दंतेवाड़ा है और ओकर बाद में यहाँ पर एक पुराना प्राचीन मंदिर मन है मैडम जी, बारसूल बोलते, वह बारसूर में है, दंतेवाड़ा के पास ही है थोड़े दूर में।
0: और नारायणपाल मंदिर भी सुने हो बहनी?
1: नारायण पाल तो पास में ही, हमारी घर हमारी चित्रकूट के रास्ता में ही पड़ते।
0: अच्छा, पुरातात्विक मंदिर है ना?
1: पाल है। हाँ, यहाँ पर जो आप मन बोलते हो ना वो हमारे चित्रकूट के रोड में ही है, थोड़े अंदर जाएला पड़ते।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत जगह है यार देखने के काबिल। अगर बोलूँ तो अभी तो टाइम गला नहीं है, 2-3 घंटे लग जाए अगर ओकर मैं आप मन ले विवरण बताऊँ तो।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगी साहब से बात करके, बहुत सारा जानकारी मिली बस्तर के बारे में। अब ये बताओ बहनी, अपन पसंद के गाना बता दे वो जला हम सुना सकन आपला।
1: हाँ, कोई सा भी छत्तीसगढ़ी गीत अपन पसंद के सुना दे मैडम जी। आपके दूसरा के पसंद गला सुनना है, अपने पसंद के तो सुनते रहतन।
0: अच्छा, इसने आओ कार्यक्रम ले जुड़े रही हो बहनी है ना, बहुत अच्छा लगे हिसाब से बात करके, फोन लगाए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जतन करो धरती के संग, जतन करो रे, जतन करो भूया के संग।

बहनी हो एकरे संग सिरावत है आज के फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी हा। अवैया जुलाई माह मा जोहार बहनी के प्रसारण 18 जुलाई को हो ही, जेकर पर फोन कॉल सके रिकॉर्डिंग 15 जुलाई बुधवार के दिन 12 बजे ले 12:30 बजे तक करे जाही। तब फोन करे बर फोन नंबर लिख लो। पहला फोन नंबर है 4003482, दूसरैया नंबर है 4003483, तीसरैया फोन नंबर है 4003484। और रायपुर शहर के बाहर रहवैया मन हा स्टडी कोड 0771 जरूर लगा हो। फोन करे बर आप मल्ला न्योता देवत हन। ये कार्यक्रम बर फोन संवाद हमारे यानी रोशनी राठौर के रहिस, गीत संकलन और प्रस्तुति बीरभान साहू के रहिस और संयोजक रहिन रमा शंकर। अब अपन संगवारी रोशनी राठौर ला दौ बिता। जय जोहार।

बहनी हो, अब हमरो जाय के बेरा हुआ थी। अगले महीना आप मन कर फेर भेंट होही, इही वादा के संग अब अपन रेडियो संगवारी रोशनी राठौर ला कार्यक्रम ले दौ विदा। राम राम, जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए शान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है, संगीत आनंद राज आनंद का है, फिल्म का नाम है किस्मत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म रॉय का गीत। मीत ब्रदर्स और कनिका कपूर की आवाजों में कुमार ने इस गीत को लिखा है। संगीत मीत ब्रदर्स का है।

मीत ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर की आवाजों में अभी आपने सुना कुमार का लिखा गीत। संगीत मीत ब्रदर्स का था, फिल्म थी रॉय। आइए अब सुने सुनिधि चौहान की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है धूम 3।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म धूम 3 का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में 2:30 से फिर सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम, बद्री धाम का पुनर्निर्माण,

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही है।

0: और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: सर बोल रहा हूँ सर।
1: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

0: साधना सरगम और किशोर कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत, संगीत नदीम श्रवण का था, फिल्म थी सैनिक।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्ट।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग

0: माँ माटी के गीत, हमर गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई,
1: वाह एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाई।
3: कुमार सानू की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म मोहरा का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत वीजू शाह का है।

आइए अब सुने उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा गीत। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है, फिल्म का नाम है जुल्मी।

उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था, फिल्म थी जुल्मी। कार्यक्रम के आखिर में आइए अब आपको सुनाए SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में इंदीवर का लिखा गीत। संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है द जेंटलमैन।

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में अभी आपने सुना इंदिवर का लिखा गीत। संगीत अनु मलिक का था। फिल्म द जेंटलमैन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायवाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 3:55 पर अपनी सांध्यकालीन सभा में विशेष कार्यक्रम के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया।
2: मोदी

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राज़ील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi today attended a major public function at Dand Bose in Rairangpur, Odisha, marking 2 years of the state government. On the occasion, development projects worth over 47,600 crore rupees were inaugurated, dedicated, and their foundation stones laid for the people of Odisha. Prime Minister Narendra Modi extended his heartfelt congratulations and best wishes to President Draupadi Murmu on her birthday. Addressing the gathering, the Prime Minister said that a daughter of Odisha has reached the highest constitutional office in the country and is guiding the nation, which is a matter of immense pride for the people of the state. He said President Murmu has not only brought glory to Mayurbhanj, but has also strengthened Odisha's identity across the country.
3: मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है।
2: The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court directed review by an expert.

एफएम गोल्ड 100.1 सुन रहे सभी साथियों को सीमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और शुरू होता है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जी मन भावन। आपके मन को जो भाता है आप हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। अब आप मेल कैसे करते हैं? fmgoldair@gmail.com पर। और हम आपके जो संदेश हैं आपके अपनों तक पहुंचाते हैं और अपनों तक पहुंचाते हैं। कई बार आपका मन करता है कि आप अकेले ही कोई गीत सुने, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत वेलकम है जी, स्वागत है आपका। एक बार दोबारा सुन लीजिए fmgoldair@gmail.com। इस पर आप अपना संदेशा जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मन भावन प्रोग्राम में आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और मैं उम्मीद करती हूँ

हूँ कि आपने दोपहर का खाना जो है यानी लंच कर लिया होगा और आप अपने रेडियो के साथ मुस्कुराते हुए हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तो ये क्योंकि आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है, हर बार मैं अपनी पसंद का कोई गाना पहली बार चलाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी फरमाइश ही ले लेते हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल, इन्होंने अपना संदेशा भेजा है और आप भी अपना इसी तरह संदेशा भेजिएगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपना संदेशा भेजते हैं और हम आपका संदेशा लेते हैं, लेकिन कई बार आपको भी बुरा लग जाता है जब आपका संदेशा नहीं पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश है कि ज़रूर सभी के संदेशे लिए जाएं। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी साहब हैं, इन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है और इसी तरह मैंने आपके सारे जो मैसेजेस हैं उन्हें लेना है और इसके साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत गीत भी सुनाने हैं। तो पहला गीत आपकी नज़र करती हूँ, बहुत सुंदर गाना है, अपने ज़माने का बहुत चर्चित गीत

फिर सुबह होगी फिल्म से अभी हमने ये गीत सुना और अब बारी है आपकी अगली फरमाइश की। लेकिन उससे पहले ये भी जान लें आप कि आपको हमें जो मेल करना है वो करना है fmgoldairdelhi@gmail.com। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर हमारे पास सहसपुर छत्तीसगढ़ से गुनी राम

राजपूत जी का संदेश आया है, साथ में इनके संतोषी जी हैं, हेम प्रभा हैं और सूरज और पुष्पराज हैं। जालंधर अगर हम चलते हैं यानी सिर्फ और सिर्फ शब्दों के जरिए, तो ज्योति मक्कड़ हैं, संदीप मक्कड़ हैं, मन्नत हैं, भरत हैं और कमल सैनी साहब हैं। इन्होंने इनमें से किसी एक ने इस गीत की फरमाइश की है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो एक आध संदेशा और पढ़ लिया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा नाम ले लिए जाएं उतना ही अच्छा है। ये किसने लिखा है, अपने सिर्फ नाम, हाँ नहीं, अपने नाम नीचे लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। उमेश कुमार जी, दिनेश कुमार हैं आप, अनुज कुमार हैं और सोनित कुमार हैं। खैला से आपने हमें ये संदेशा भेजा है और गाना बिल्कुल जी रेडी है, तैयार है आपके लिए। लीजिए सुनिए।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर

0: फैसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। आपका मनपसंद कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आपके और आपकी दोस्त सीमा वर्मा के दरमियान है। आपकी पसंद को हम आपके अपनों तक और आप तक पहुंचा रहे हैं, और कैसे पहुंचा रहे हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप हमें मैसेज कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उन्हें एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। अब मेरी नज़र एक बार फिर आपके मैसेजेस पर है जी, और यहाँ पर हरिद्वार से हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ और बस, ये तीन नाम इन्होंने भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन मैसेजेस के लिए। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, आपने हमें जमशेदपुर से संदेशा भेजा है, आपने भी एक गीत की फरमाइश की है। हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद जो है वो आप तक पहुंचाने की। अग्रसेन यादव जी और शकुंतला जी हैं, साथ में इनके गरिमा हैं, और ये दिल्ली से हमें संदेशा भेजते हैं। वहीं अगर हम जवाहर नगर दुर्ग की बात करें तो यहाँ से भी हमारे पास एक संदेशा आया है, और नाम मैं ले देती हूँ। RC कामड़े जी हैं, करुणा है इनके साथ, मीना है, अश्वनी है और विपुल हैं, और जी गाना आप सब में से किसी एक की पसंद का, जो अब बनने जा रहा है हम सब की पसंद।

साथियों, इन्हीं गीतों को सुनते हुए ना कई बार हमें पर्दे के पीछे के वो कलाकार याद आ जाते हैं। फिल्में तो हम देखते हैं, पर्दे के आगे जो अभिनय करते हैं उन्हें हम देखते हैं, सराहते भी हैं, लेकिन इन्हीं गीतों की वजह से, इन्हीं गीतों के माध्यम से हमें गीतकार याद आते हैं, संगीतकार याद आते हैं, गायक और गायिकाएं याद आती हैं। तो आशा जी की याद आ गई अभी इस गीत को सुनने के बाद। चलिए, अंग्रेजी में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, काम जो है वो आगे हम अपना बढ़ाते हैं। और एक बार फिर से आपको पता बताते हैं, fmgold@delhi.gmail.com आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपके मैसेज तुरंत मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और मैं उन्हें कैसे पढ़ती हूँ भला, ऐसे पढ़ती हूँ कि इतनेनगर दिल्ली से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या और निवेश कुमार और नियति कुमारी, आपका संदेशा आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अरविंद राज सिंह, आपने हमें ये संदेशा भेजा है। कहाँ से भेजा है? चलिए, दूसरा संदेशा आ गया हमारे एकदम पास, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, इनका ये संदेशा आया है। एक दो संदेशे मैं और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आप तक एक गीत जो बहुत खूबसूरत है, अपने ज़माने का बहुत बहुत मशहूर गीत है, उसे भी आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। खंडवा से हमारे पास जगन्नाथ पटेल जी का संदेशा आया है, इनके साथ कुछ नाम और हैं, कमला जी हैं, अंतिम पटेल हैं, ज्योति हैं, शुभम देवी किशन हैं, भावना है और मनमानस और कनिका पटेल हैं। तो अभी जो मैं गीत की बात कर रही थी, ये वो गीत है जो देखिए 60s में ये फिल्म आती है और पूरे 70 के दशक में किसी भी घर में जब ब्याह शादी हुआ करती थी तो ये गीत तो ज़रूर ज़रूर सुनाई देता था। अब कौन सा है भला,

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: स्वागत है जी एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz पर। प्रोग्राम मन भावन में आपके साथ आज शनिवार की दोपहरी आपकी दोस्त सीमा वर्मा, और मेरे साथ तो आप सब हैं ही, और आपके बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सुदर्शन मुखी जी हैं, अनीता जी हैं इनके साथ, सिमरन मुखी हैं, और भी बहुत सारे नाम आपने भेजे हैं। कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अजीत भवसार जी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम भेजा है और 2-4 फूल आपने भेज दिए हैं। हम आपके जो फूल हैं वो भी स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इनका संदेश आया है। और बीकानेर से रानी और बिट्टू जी का संदेशा आया है। अब एक संदेशा और है जिससे मुझे एक बात याद आई, क्योंकि ये बर्थडे विश है तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज आप में से जिस का जन्मदिन है आपको एफएम गोल्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, वो भी दिल से मुस्कुराते रहिए। अब आते हैं हम उस संदेशे पर जो मैं जन्मदिन की बात कर रही थी। वैसे दोस्त आज की तारीख में अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है

0: कहते हैं कि आप बहुत खुश नसीब हैं और वो एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपने दिल की बातें कर पाएं, वो एक ऐसा दोस्त जिसके सामने कुछ भी कहना हो तो सोच के ना कहना पड़े। ऐसी ही एक दोस्ती है, भारती जी का संदेश आया है। अपनी दोस्त रचना जी को ये जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हैं। दोनों फ्रेंड्स हैं और एफएम गोल्ड की तरफ से हम रचना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपका दिन है, खूब इंजॉय कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए इसी तरह मुस्कुराते हुए। तो भारती जी और रचना जी की दोस्ती के नाम एक खूबसूरत गीत, 1980 में ये फिल्म आई, आपके दीवाने, आइए सुनते हैं।
1: Abini na na benito, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

और साथियों, आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, और चलते चलते कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद साहब हैं, शाहजहां जी हैं, और मरियम जी हैं, श्रीगंगानगर से रामकुमार और चंद्रकला जी हैं, और मॉडल टाउन से मीनाक्षी जी हैं, जिन्होंने अपने भाई रवि के लिए उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। तो आपको इस खूबसूरत गीत के हवाले में किए जा रही हूं। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए।

0: मीडियम वेव 305.8 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, द रिजॉल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today.

0: Day, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow. Truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed. India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
0: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and gram panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister, and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधान

0: In the drill being carried out across examination centers nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centers in the Delhi Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल की विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Sone ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता

0: और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड।

0: चीज़ें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways, then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद, या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है, कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले. जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है, कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए. और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो. आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere, completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments, who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even is tarah ki jo takniki hai Vaibhav, aaj se ek, jaisa ki tumne kaha ki ek dashak pehle is tarah ki parikalpana bhi aap nahi kar sakte the ki iske माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें,

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvindu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और
0: प्रधानमंत्री जी के साथ अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का शैली में बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: सिद्धार्थ, यू शुड रिमेम्बर दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन

0: tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय।

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। नाउ दिस has been released, various beneficial scheme for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Jiha Pradhanmantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंगस्ट दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है।

कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव इतना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग

हजार करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए।

इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में

ने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू हो गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है।

हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया।

0: बांटा जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा कोटराही भगवानपुर गोपालपुर मुरका करवा ठरकी अतौरी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सकालो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार सायर ससकालो सत्तीमुड़ा दांतीढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा घोड़ाघाट नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर बालाझर झिक्की खंताडांड परसाडांड पेटा कुर्डेग बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान पुरुंगा बनहर सिंघीछा बेहरामार इंचपारा कंचीरा कोयलार सागरपुर सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर आमा टिकरा नवापारा मड़ई कोदवारी कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगूरसिया जुनवानी कशडोल राट रोड झिंगोल नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तेंदुचुआ कोठारी रामपुर अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदो माली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गाँव के आस पास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: छूट जाते जब अपन घर अपन माटी और गांव,
1: तब जाके समझ आते दुनिया में का होते खाओ।
0: आसमान हा छत अंजोर रद्दा जिंदगी के संगी बन जाते,
1: जिए के जज्बा और बाचे के जंग में हर घड़ी लड़ जाते।
0: तभे तो आज के दिन वो मनखे मन दुनिया में सुरता करे जाते। रेडियो के तीर में जुराए जम्मू रेडियो संगवारी मल्ला, आप मन के मयारू संगवारी त्रिलोचन
1: और लेनिमा के
0: राम राम, राम, राम जय जोहार। कैसे हस संगवारी?
1: मैं तो बने हो त्रिलोचन, तय बता तय कैसे हस?
0: महू बने हो नीलिमा, का बात है नीलिमा, ते कछु सोचा थस का?
1: हाँ संगवारी।
0: का सोचा था संगवारी?
1: एक बात बता त्रिलोचन।
0: हाँ?
1: जब कभू काकरो घर में आगे लग जाते ना, तब मनखे हा सबले पहली का जिनिस ल बचाही?
0: सबले पहली वह मनखे अपन जान ल बचाही, अपन लइका मन ल बचाही, फिर अगर कछु कीमती जिनिस है तो ओला बचाही।
1: और संगवारी, ओ आगी हा कोनो एक ठन घर में नहीं, भलुक पूरा शहर पूरा देश में लग जाए ना। जब मनखे मनखे हा एक दूसर के जान के दुश्मन बन जाए तब?
0: तब ना संगवारी, मनखे हा एक एक एक सिरे सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा अपन लइका मन के हाथ ला थाम के जेड़ा रद्दा मिली उड़ान चल दी संगवारी।
1: और उही बेघर मन ला त्रिलोचन दुनिया हा शरणार्थी कहते। आज 20 जून आए संगवारी विश्व शरणार्थी दिवस। आज के दिन हा सिर्फ कोनो तारीख नो होवे, यह दुनिया भर के ओ करोड़ों मनखे मन के हिम्मत ला जोहार करे के दिन आए जे मन हा अपन माटी ले दूर हवे।
0: पोड़ बात कहे लीलिमा, एक ठीन और बात है लीलिमा।
1: हाँ?
0: ये बच्चर 2026 हा इतिहास में गजब महत्व रखते।
1: का महत्व रखते संगवारी?
0: शरणार्थी के जिन अधिकार रक्षा और बर अंतरराष्ट्रीय संधि हो रही ना, जिन्हा 1951 के जिनेवा कन्वेंशन कहे जाते।
1: हाँ?
0: उला आज 75 बच्चर हुआ थे।
1: 75 मौन पौने एक सदी बीत के माने।
0: हाँ।
1: पर तभो ले दुनिया में शरणार्थी मन के पीरा हा कम नहीं हुए त्रिलोचन। आज तक लड़ाई के संगे संग मौसम के बदलाव बाढ़ और सूखा के सेती घलो लोगन मन हा बेघर हुआ थवे।
0: तभी तो संगवारी हो इस साल ना संयुक्त राष्ट्र संघ अपन थीम रखे शरणार्थी के साथ एकजुटता और नारा दे है, जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है।
1: बड़ सुघर है संगवारी। वैसे भी सुरक्षा न कोनो सरहद देख के नहीं मिलना चाहिए, ए तब मनखे के जन्म सिद्ध अधिकार हवे।
0: सिरतोन बात कह ली माँ।
1: जब तक संगवारी ए दुनिया में हर एक मनखे है सुरक्षित नहीं है ना।
0: हाँ?
1: तब तक हमन अपन आप ला सुरक्षित नहीं मान सकन।
0: और हमन तो छत्तीसगढ़ियन संगवारी। हाँ? हमार माटी माँ वसुधैव कुटुम्बकम के माया कूट कूट के भरे है।
1: सिरतोन के है त्रिलोचन।
0: हमार तो संस्कृति आए, हमन दुखियारी मन ला कोरा माँ लुकाए बर जानथन, ओ मन ला सहारा दे बर जानथन।
1: आज ए रिफ्यूजी डे हरे त्रिलोचन, और अपन मन के कपाट ला थोकिन हमन ला खोलना चाहिए, नफरत ला पाछू छोड़ के मन के हाथ ला थामना चाहिए।

0: संगवारी हो आप मन सुनत रहो सुग्घर अकन माटी के गीत जिला अपन सुर में सजायरी से शांति यादव और इंद्रा चंद्राकर है।
1: और सुने बर चेहरी नंबर ये संगवारी मन है नांदघाट कातल बोलले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत मन है भुरसुदाले भगवानी सेन संतोषी गजेंद्र चिराग सेन मन है त्रिलोचन अब भाई आज शनिचर हरे और ते पहली बार शनिचर के कार्यक्रम करते थे लागत है तो भाई शनिचर के दिन हमारे संगवारी मन लगोरा रही थे की हम लोग उनके समीक्षा पाती ला पढ़बो जवाब देबो की के तो चल भाई बेरा ला धुरिया थन और शुरू करथन क्रम
0: आप मन की चिट्ठी।

0: तो त्रिलोचन तोर हाथ में संगवारी मन की पियर पियर पाती दिखत हवे
1: हाँ।
0: तो संगवारी मन हा कौन संगवारी मन भेजे तेला तो बता डर
1: ये पहली पाती हमन ला पठोए हवे अब्दुल माजिद कुरैसी मन हा चूड़ी लाइन भाटा पारा ले ओमन लिखे है कि 19 जून के दिन क्रम पहुना जोहार मा छत्तीसगढ़ के लोक गायक शेख अमीन के संग जेन गोड़ बात ला सुनेगी से ओमला हमला बड़ सुग्घर लागी से बे जेन बात बताइस ओला सुन के मन गदगद हो गए अतका सुग्घर गोड़ बात करे बर नीलिमा साहू और लीलेश साहू ला अंतसले धन्यवाद
0: संगवारी हो शेख अमीन जिला तो हम वहाँ ननपन ले सुना थन और ओकर से जोन गोट बात करे हन तो ओकर ले जो प्रेरणा मिली से वो तो हमारे बहुत है वे भाई और ओला मोला वार्ता करके बहुत अच्छा लगी से वे है ना तो संगवारी हो आप मन पाती भेजे हो तेकर बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो आपके पाती लही मेरे अमर डरे नीलेश ला कार्यक्रम के माध्यम ले अमरावत हूँ पाती लिखे हो तेकर बर अंतसले धन्यवाद त्रिलोचन अगला पाती आऊ संगवारी मन के दिखा थे
1: हाँ ये संगवारी हा सिमगा कह रहे जे भेजे हो वह लवकुश सेन और प्रहलाद सेन एमन लिखते कि यहाँ के माटी के गंध और संस्कृति के झलक संस्कृति के महक मां सुने बर मिलते गांव के हंसी ठिठोली पीरा परम समस्या और ओकर निदान ला हमर मयारू कंपेयर भाई बहनी मन धर के आते तब मन मां छत्तीसगढ़ी

0: भाषा गुरतुर बोली के आमा खाए बर मिलते, बड़ मिठास लागथे।
1: संगवारी हो युवानी के अलग अलग क्रम इज बर बनाए गए हैं, जेकर ले आप मन हा आने आने प्रकार के ज्ञान मनोरंजन और गीत संगीत के आनंद ले सको। संस्कृति के महक में आने वाले विषय ऊपर हमर कई साथी मन हा युवानी के माध्यम ले अपन विचार प्रकट करते और ये आप मन ला पसंद आते। पाती लिखे होते कर बर अंतसले धन्यवाद संगवारी हो, आगू कलो आपके पाती के अगोरा रही। त्रिलोचन, अगला पाती है लागत है 13 जून बरा है तोर पास में?
0: हाँ, 13 जून बरा है, शनिचर के दिन। संगवारी मन पाती पठो है, रहिया ये मन कहरी बदर के, लिखैया है पुरुषोत्तम और शारदा निर्मल कर।
1: और का लिखे है वे संगवारी मन?
0: संगवारी मन लिखे है कि 13 जून के युवाणी लेके आए रही है हमारे दू संगवारी सुमित तिवारी और थनेश्वरी बघेल। संगी मन अपन गोड बात में अंतर्राष्ट्रीय एबलिज्म दिवस विषय लेके बहुत सुंदर बात गोठियाइन जे हमला प्रेरक लागिस। बताइस कि शांति और समानता जब मनखे के अधिकार हरे और मनखे सबले एक समान होते, यही दिन एक क्रम में चिट्ठी में श्रोता मन संगी मन के भेजे पाती और ईमेल ला समुचित स्थान दिए। क्रम माटी के गीत में रिकिम रिकिम के लोकगीत सुने पर मिलिस हवे। अतिक सुंदर मनमोहक की वाणी प्रस्तुति पर सुमित तिवारी और थनेश्वरी बघेल ला अंत असले धन्यवाद। यही क्रम में खैरागढ़ लालपुर ले मोतीलाल और सुशीला भीमटे घलोक ये पत्र मल्ला पठोरी से भे। परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश और सिलोचनी मसिया मन घलो आती पठोरी से भी। वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले शिवा यादव और राजा राज यादव आती पठोरी से भी। लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत और प्रमिला मरावी मन पाती पठो है। पोटियाकला दुर्ग ले संजय साहू और सुजाता साहू पाती मल्ला पठोरी से भी।
1: संगवारी हो, दिन शनिचर के युवानी के बगिया में आये थनेश्वरी बघेल और सुमित तिवारी जे मन अपन गोट में बताइन कि आने आने प्रकार के जागरूकता फैलाए बर कई वैश्विक संगठन बनाए हवे जिन्हा कार्यक्रम के माध्यम ले लोगन मंदिर पहुंच के जागरूकता फैलाते। अब इसने ही 13 जून ल विश्व अल्बेनिज्म दिवस के रूप में मनाया जाते, जेकर उद्देश्य अल्बेनिज्म ले प्रभावित मनखे मन के अधिकार सम्मान और समस्या मन के बारे में जागरूकता फैलाना होते। संग में दिन आप मन सुने हो क्रम आप मन के चिट्ठी ओमा आप मन हा आप मन के भेजे समीक्षा पाती ला सुने हो ओखर जवाब ला सुने हो। माने ए दिन के आप मन ला क्रम मन हा पसंद ऐसे तेकर बर बधाई पाती भेजे हो तेन ला हमन थनेश्वरी बघेल और सुमित तिवारी तीन अमरावतन पाती लिखे हो तेकर बर अंतसले धन्यवाद। ततिलोचन, अब कौन संगवारी मन हा अगला पाती भेजे है?
0: ये संगवारी मन है पुतका कला कवर्धल, ये मन हा 16 जून मंगलवार के पाती पठोरी से।
1: हमारी संगवारी मन हा
0: पुतकी कला कवर्धल। तो ये संगवारी मन है वे वीना पांडे और राधेश्याम पांडे। ये मन लिखते ठंडी ठंडी हवा चले बर पीपर के गांव मा राधेश्याम कहते मोला रहितो पुत्ती कला गांव मा हमन बनाथन संगी आमा के गुराम छत्तीसगढ़ युवानी के सबो कंपेयर मल्ला जय जोहर और राम राम। भीमसेनी एकादशी के हमन करथन तैयारी 16 जून छत्तीसगढ़ी युवानी लेके आए रहीन तृप्ति भारती और सुमित तिवारी। अब तो फुलत फुलत है कोकी कोकी अमली खट्टी मैं भेजत हो छत्तीसगढ़ी में चिट्ठी। कार्यक्रम रहीस माटी के गीत और रहीस सवाल जवाब 16 जून के कार्यक्रम रहीस बहुत ही लाजवाब। 16 जुलाई के लागत जून के करबो विदाई 16 जून के कार्यक्रम पर तृप्ति भारती और सुमित तिवारी ला गाड़ा गाड़ा झुआ झुआ हार्दिक बधाई। यही रिकिम मा रोवासी पलारी ले श्यामलाल और युवराज साहू मन पाती पठोरी से। राम ग्राम भड़गा कोदवा गोडान ले श्याम साहू मरावी और राजकुमारिया कोदई कोई गांव भंगी टोला ले ननका राम ध्रुवे और जामुन भाई ध्रुवे। गेंदा टोला बाजार चौक राजनांदगांव ले वीरेंद्र कुमार और अंजलि गुप्ता। लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार और रुक्मणी बघेल हा। कोका भिलाई ले उत्तम सिंह और मूरस बघेल मन हा पाती पठोरी से।
1: संगवारी हो, आपके पाती सुन के लागत है कि आप मल्ला उदिन के कार्यक्रम पसंद ऐसे वे और आपके जोन बधाई पाती है ते मल्ला हमन कार्यक्रम के माध्यम ले तृप्ति भारती और सुमित तिवारी तीर अमरावतन पाती बर अंतसले धन्यवाद आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही।
0: लीलिमा, ये पाती है 18 जून क्या है बृहस्पति के। ये पाती ला पठो है भागसी है राजपूत है नान घाट के रवैया है मन। ये मन लिखते कि 18 जून संझा के बेरा मा युवानी के बगिया मा धर के लाए रही से तृप्ति भारती और दामनी सेन मना। 18 जून सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस में चर्चा करत पर्यावरण स्वास्थ्य भोजन किसान पर चर्चा करत युवाणी ला आरंभ करीस और संस्कृति के महक मा वार्ता खेती किसानी और तिहार पर्व के बारे मा वार्ता अच्छा रही से। वार्ता करता दीप माला तिवारी दीदी ला बधाई और माटी गीत मा सुघर सुघर लोकगीत सुने बर मिलीस। ए दिन के सुघर प्रस्तुति पर तृप्ति भारती और दामनी

0: रिमला बहुत बहुत बधाई है। यही रिकिम मना रिमना और श्रोता मना पाती पठोरी से भी धरसीवा बस स्टैंड ले छेदूलाल और सीता यादव। यही रिकिम में दुर्गा पारा संतोषी नगर ले रायपुर रायपुर ले छन्नूलाल और पुष्पलता यादव। गांव तेंदुभाटा मगर लोड ले उमेंद्र कुमार और मोहेश्वरी निषाद। हसदा नंबर दो ले कमलेश और जितेंद्र साहू। भाटापारा बच कामल ले मोतीलाल और बसंत यादव। बिलाईगढ़ ले रोशन लाल और कौशल्या पटेल मना। मेघा पारा चिल्फी ले रामकुशल और संतोषी पटेल। सहसपुर ले छोटकू और मोहित साहू मना।
1: संगवारी हो, हमार बाबा हा कही थे कि खाना बढ़िया ले खाए करो, काबर तन स्वस्थ रही तब मन स्वस्थ रही और तबे तो काम कर पाबो। इसने गोट बात सन ओ दिन आए रही से तृप्ति भारती और दामनी सिन्हा। आप मन के पाती हा बतावत है कि ये कार्यक्रम हा सफल रिसे। आप मन जोन बधाई पाती भेजे हो तिलना कार्यक्रम के माध्यम ले तृप्ति भारती और दामनी सेंतीर अमरावतन संगवारी हो आगो घलो आपके पाती के अगोरा रही। ता अगला पाती कौन भेजे
0: लीलिमा? अगला पाती शिकायती पाती है
1: बता डर।
0: ये है गंडाई टिकरी पारा ले जगेश्वर और कचरी देवांगन मन भेजे भी। इमा लिखे कि माटी के गीत कार्यक्रम ईमेल भेजत शामिल नहीं, ईमेल भेजे है तेला शामिल नहीं करे है और सवाल जवाब में तो शामिल करे है, माटी के गीत में शामिल नहीं हुए कहा थे भी। और यही रिकिम ले और संगवारी मन पाती पठो अबे। इमन है अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन श्रीवास्तव मन।
1: संगवारी हो, कभू कभू शिकायत घलो बने रहते एकले पता चलते कि हमारे कार्यक्रम में कहाँ कमी रह गई और जिन नेता सच्ची में बने रहते ना ओमन हा शिकायत ला अपन गोट के माध्यम से वो आप मन हा पाती के माध्यम से अमर मन पटपटो हो तो संगवारी हो आप मन के शिकायत हमर मन तीर पहुँच गए। कभू कभू बेरा के सेति या फिर पाती देरी ले आते ना ओकर वजह से नाव शामिल नहीं कर पान, कभू कभू नाम ज्यादा हो जाते ओकर वजह से शामिल नहीं कर पान। तो संगवारी हो आपकी बात ला हमन गोट ला जरूर ध्यान रखबो और आगू कोशिश करबो कि आपके पाती ला हमन शामिल करन। तिलोचन संगवारी मन के तो बड़कन पाती आ रही से वे और ओला पट डरे। अब संगवारी मन आगू घलो पाती भेजी ओकर बर हमन बता देथन।
0: हाँ, बता देथन भाई पता लपन।
1: तो संगवारी हो आप मन आगू घलो समीक्षा पाती भेजो ओकर बर पता हवे। क्रम आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड हवे संगवारी हो 492001। और संगवारी हो ईमेल के माध्यम ले आप मन पाती पठोहू ओकर बर ईमेल आईडी हवे AIRYOUTH9@gmail.com। और संगवारी हो सब्जेक्ट कोड ला डाले भर झन बुलाहू, हमार सब्जेक्ट कोड आए YR। तो संगवारी हो पाती जरूर पठो और क्रम आप मन के चिट्ठी इहे तक।

0: लीलिमा, ये दिन हा बरसात के दिन है शुरू होवत हे। चारों कोती धरती मैया हरियर हरियर दिखत हे और ये हरियाली ला मानो मैया सिंगार करके रखे ऐसे दिखत हे।
1: धरती मैया ला जब देखथन ना तो मन हा फूल पत्ती मन ऐसे लागथे जैसे ओकर कोनो गहना हवे कहिके, और देख के एकदम मन हा हरियर हरियर हो जाथे। और त्रिलोचन, हमन हा ना संगवारी मन से जब गोट बात करथन ना तब बेरा हा एकदम जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी निकलथे। तो भाई अब बेरा हो चुके हैं हमर जाए के, तो जाए के पहले हमन संगवारी मन बता देथन काली के कार्यक्रम। तो संगवारी हो, काली के कार्यक्रम आप मन सुनू हिंदी मा, जे मा आप मन सुनू।
0: आज की मेरी बारी है रक्षा जायसवाल, संगवारी मन सुनू और नए तराने।
1: तो संगवारी हो आप मन कल सुनू, आज मेरी बारी है जे मा रक्षा जायसवाल मन बोली और कर संग मा सुनू आप मन है नए तराने। और यही गोट बात संग अपन संगवारी लिनिमा साहू
0: और त्रिलोचन सीला
1: देव विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास

0: अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाश

0: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकते हैं कल सुबह 6:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब आप सुन सकेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री अबले कुछ एक देर में पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किश्त जारी करी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कुतिले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में नीट यूजी के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ले कुछ एक देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। एकर तहत देश के 9,44,00,000 किसान मन के बैंक खाता में 18,880 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि सीधा भेजे जाही। ये योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में 490,54,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अंतरण करे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह काली नई दिल्ली में रखे गए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया के प्रोत्साहन राशि के वितरण करी। ए मौका में प्रधानमंत्री कहिन कि 21वीं सदी में अवसर उही देश के होही जेन कुशल प्रतिभा मन के पोषण करी, नवाचार ला बढ़ावा दी और गुणवत्ता के ऊंचा मानक ला बनाए रखी। श्री मोदी कहिन है कि अवैया बछर में भारत के युवा मन दुनिया के विकास, नवाचार और उद्यमिता ला तेजी ले बढ़ाए में आगू होही। ए योजना पर पहली पैत रोजगार पाने वाला कर्मचारी मन ला 15,000 रुपया तक के प्रोत्साहन दे जावत है और अतकाह रोजगार देने वाला नियोक्ता मन ला हर अतिरिक्त कर्मचारी ऊपर हर महीना 3,000 रुपया के प्रोत्साहन दे जावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बचर पूरा होए के मौका में प्रदेश में आने आने जगह में योजना मन के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर के आयोजन करे जावत है। इही कड़ी में दुर्ग में रखे गए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल होइस। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री उइके कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश विकास और विरासत के संरक्षण के दिशा में बड़का प्रगति करे है। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार समाज के आखिरी मनखे के विकास ला ध्यान में रखत हुए कई ठिन जन कल्याणकारी योजना लागू करे है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार समेत अब्बड़ अकन जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मन शामिल रहिन। बाद में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके कहिन कि केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के संग चलाए जावत योजना के सकारात्मक प्रभाव ले आज लोगन के जिंदगी में बदलाव आए है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही। ए बछर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखे गए है। एकर बर प्रदेश में तैयारी पूरा कर ले गए है। राज्यपाल रमीन डेका है राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य पहुना हुई। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में सरगुजा जिला में बिहनिया 7 सामूहिक योग अभ्यास हुई। एक कार्यक्रम के अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री विजय

0: महाकबीर धाम मा औ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव मा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका मा होइया कार्यक्रम के मुख्य पहुना होही। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मन के प्रशिक्षण शिविर आज ले रायपुर जिला के अभनपुर मा शुरू होए हे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ह पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए बताइन कि ए शिविर मा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ह शामिल होइन हे। उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हा घलो इस शिविर में शामिल होही। शिविर में जिला अध्यक्ष मल्ला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग कोती ले प्रशिक्षण दे जावत है। संगे संग विषय विशेषज्ञ मन कोती ले हाल फिलहाल के विषय ऊपर जानकारी घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA कोती ले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। एकर बर सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था करे गए है। परीक्षा मझनिया 2 बजे ले संझा 5:15 तक होही। परीक्षार्थी मल्ला बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होही। एकर बाद अवैया कोनो भी अभ्यर्थी ला भीतर नहीं करे जाही। NTA हा NEET UG के पुनर्परीक्षा देवैया उम्मीदवार मन बर एक ठीन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA हा बताइस है कि सब्बो आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश हा सिर्फ सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले ही भेजे जाही। एति रायपुर जिला में नीट परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन बर जिला प्रशासन और NTA हा जरूरी तैयारी पूरा कर ले है। जिला नोडल अधिकारी और कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी सिंह बताइन कि जिला में 25 केंद्र बनाए गए है। ओमन परीक्षार्थी मन ले बेरा ले पहली परीक्षा केंद्र पहुंचे के अपील करे है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हा नीट परीक्षा के परीक्षार्थी मन के सुविधा बर विशेष रेल सेवा की व्यवस्था करे है। रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद बताइन कि रेलवे कोती ले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन आज और कल चलाई जाही। एकर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग स्टेशन तक करे गए है। NTA हा NEET UG दोबारा परीक्षा ले पहली मानक तैयारी के निरीक्षण बर आज देश भर में मॉक ड्रिल करिस। इही कड़ी में रायपुर समेत प्रदेश के आने आने परीक्षा केंद्र में मॉक ड्रिल करे गईस। प्रदेश में लैका मन के शुरुआती शिक्षा ला व्यवस्थित करे के उद्देश्य ले विद्यारंभ अभियान चलाए जावत है। एकर तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरा करैया 6 बच्छर के लैका मन ला विद्यारंभ प्रमाण पत्र दे के स्कूल में भर्ती करे जावत है। ए पहल के उद्देश्य लैका मन के जीवन में शिक्षा के नवा चरण के शुरुआत ला तिहार के रूप में मनाना और आंगनबाड़ी ले स्कूल तक के सफर ला सरल और सुघर बनाना है। बलौदा बाजार भाटापारा जिला में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू करे गए है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हा अभियान के शुरुआत करत हुए कहिन कि स्वस्थ लैका ही देश के मजबूत भविष्य है। अभियान में जिला के 9000 कुपोषित लैका मल्ला 6 महीना तक हफ्ता में 6 दिन पौष्टिक लाड़ू दे जाही। जेखर निर्माण महिला स्व सहायता समूह करही। लैका मन के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल के व्यवस्था घलो करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करही। ए दारी के अंक मा आप मन कोरबा जिला के बारे में जानकारी सुनिहा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए गए है। महिला और बाल विकास विभाग हा प्रदेश के प्रतिभाशाली लैका मन ले ए राष्ट्रीय पुरस्कार बर आवेदन करे के अपील करे है। ए पुरस्कार 5 ले 18 बच्छर के ओ लैका मन ला दे जाते जे मन बहादुरी सामाजिक सेवा पर्यावरण ला बचाए खेल कला संस्कृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसन क्षेत्र में सुघर उपलब्धि हासिल करे है। आवेदन सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.in

0: govin के माध्यम ले स्वीकार करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर, प्रधानमंत्री अब ले कुछ एक देर में पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कोतिले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये 6,47,000 करोड़ रुपयकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय 16 निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः NEET UG इति पुनः परीक्षायाः प्राक् NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। अपि च फीफा विश्व कप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैती देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयं अलभत। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझीनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे गच्छति तथा च पूर्वी भारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। मयूरभंज जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृकग्रामे पहाड़पुरे आगमनं सौभाग्यम् अस्ति इति उक्तवान्। सः अघोषयत् यत् पहाड़पुरं सूर्यग्रामरूपेण अथवा सौरग्रामरूपेण विकसितः भविष्यति, यत्र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संरचनाः आधुनिक सार्वजनिक सेवाः च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 करोड़ रुपयकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वी भारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।
3: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20,00,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3,50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
2: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः स्वस्य दूरदर्शी शासनस्य विश्वनेतृभिः सह रचनात्मक सहभागित्वस्य च माध्यमेन वैश्विकमञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठां प्रभावं च महत्वपूर्णरूपेण वर्धितवान् इति उक्तवती। एकां जनसभां सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं शान्तेः संवादस्य सहकारस्य च स्वररूपेण उद्भूतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्वः कोलकाता नगरे स्वदेशीरूपेण निर्मित त्रयाणां भारतीय नौसेनायाः मञ्चीभूतानां INS दुनागिरी,

0: सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतुविभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतुविभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्र प्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयं अभिलिखितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं खोमचंद साहू और साथी। पहले आपको सुनवा रहे हैं खोमचंद साहू और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं खोमचंद साहू और साथी। लीजिए अब सुनिए खोमचंद साहू और बिसाहू साहू के स्वर में ये लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खोमचंद साहू और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय

0: बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के सलिया टोली स्थित आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी सवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बीच आज केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा हाट कचौरा में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद

0: आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रायपुर रेल मंडल प्रबंधक दयानंद ने बताया कि रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है।
1: देखिए, जो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, इस बार इसके लिए विशेष तैयारी की है हम लोगों ने। एक तो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो आज और कल दोनों दिन चलेगी, जो कोरबा से दुर्ग और दुर्ग से कोरबा, ये मेमू हम लोग चला रहे हैं छात्र स्पेशल करके। दूसरा, जो हमारी कोरबा से रायपुर चलती है ट्रेन, उसको हम लोगों ने दुर्ग तक एक्सटेंड किया है ताकि जो दुर्ग बिलाई जाने वाले लोग हैं उनको इस ट्रेन से लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो दल्ली रजारा सेक्शन है, जो मेमू चलती है, वो 12 को से चलाएंगे फॉर एग्जामिनेशन। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग स्टेशन में स्पेशल अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। मे आई हेल्प यू बूथ मैंड रहेंगे और जितने सेंटर की जानकारी है, कहाँ सेंटर पड़ेगा, कैसे जाएंगे, ये सारी जानकारी मे आई हेल्प यू बूथ से एग्जामिनी है वो ले रहे हैं।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार सहित कई जन प्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने कहा कि केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के साथ संचालित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से आज लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: इन 12 वर्षों की जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का जो लेखा जोखा है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए, सेवा, सुशासन और विकास, विश्वास को लेकर जो जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश के अंदर व्यक्ति व्यक्ति के चेहरे पे जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, राष्ट्र ने विकास की दिशा में जो करवट बदली है, वैश्विक पटल पर राष्ट्र का जो वैभव बढ़ा है, राष्ट्र की आंतरिक स्थितियां और राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाएं जिस तरह से सुरक्षित है, आज इन सभी विषयों को लेकर आज का ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन था।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से रायपुर जिले के अभनपुर में शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस शिविर में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट शामिल हुए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल इस शिविर में शामिल होंगे। शिविर में जिला अध्यक्षों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा समसामयिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से विद्यारंभ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके 6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के जीवन में शिक्षा के नए चरण की शुरुआत को उत्सव के रूप में मनाना तथा आंगनबाड़ी से विद्यालय तक के सफर को सहज और सुगम बनाना है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे ही देश का मजबूत भविष्य हैं। अभियान के तहत जिले के 9,000 कुपोषित बच्चों को 6 माह तक सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। इन लड्डुओं का निर्माण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु

0: वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के नेउरगांव खुर्द में भारत माता की प्रतिमा और शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित आवास मेला के लक्की ड्रॉ विजेताओं की घोषणा 22 जून को की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सक्ती जिले के ग्राम सपोस में बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री कर रहे एक कृषि केंद्र में छापा मारकर करीब 800 बोरी उर्वरकों की बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैकोना में बीती रात एक मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका अकलतरा में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 4 घंटे तक चला प्रदर्शन अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी से, आवाज थी मोहम्मद रफी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए आपको

सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अख्तर रोमानी का लिखा गीत, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

आया सावन झुमके। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं इसी सभा में रात 8 बजे और रात 9:15 पर। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से हम बोल रहे हैं।

0: राजेश भाई राम राम।
1: रोशन भाई राम राम। संगे संग कार्यक्रम सुनिए सबो संगवारी मल्ला हमर दोनों जन के
0: राम राम।
1: रोशन भाई
0: कोनो
1: भी काम बुता हुआ है या फिर खेती किसानी के काम हो है, रोजगार धंधा के बात हो है, ओमा महिला मन के योगदान ह जरूरी थे है नी। और नारी शक्ति मन है, माई लोगन मन ले ही छोटे बड़े काम रोजगार धंधा सबो संचालित हुआ थे, हमारे सहयोग मिला थे है नी।
0: सही बात कहे राजेश भाई। आज देखथन के रोजगार धंधा मन में कदम ले कदम मिला के महिला मन ह चलत है, चाहे खेती बाड़ी के बात होवे, दुकान डलिया के बात करन, पशुपालन बकरी पालन होवे या कोनो भी प्रकार के रोजगार धंधा होवे, सबो माँ महिला मन के महिला मन ह अपन बल बुद्धि ले काम करत है, घर परिवार के आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है, जीको पार्जन में लगे है।
1: सही कहे सुशन भाई। फिर आज हला कतको महिला है जे मन हाँ जीवन यापन बर रोजगार धंधा भर संघर्ष करत है नी, काम धंधा ढूंढत रहते खोजत रहते, और महिला मन बर मशरूम उत्पादन जो है वह बहुत फायदा के है। ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र के जो महिला है वो मल्ला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए मा जो मशरूम उत्पादन है अच्छा माध्यम बन गए है, और कतको जन एक लाभ घलो उठावा थे।
0: देख मशरूम उत्पादन के बात करे राजेश भाई तो देख ये एक ऐसा खेती हरा है मशरूम उत्पादन है कि एमा बिल्कुल ले कम लागत लागत है ना, और जगह जो उन्हें बिल्कुल कहूँ बड़े जगह नहीं है तो छोटे जगह में घला आसानी हो जाते है ना भाई। और वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग ले महिला मन हा घर बैठे महीना मा हजारों रुपया कमा सकते, जेखर ले समाज मा नवा पहचान और आत्मविश्वास वो महिला मन के बाढ़ते अब पावत घलो है,
1: कतको जन कमावत घलो है
0: हाँ।
1: और रोशन भाई ये रोजगार मा खास करके गांव मन मा कतको महिला जो रहते वो मन समूह ले लोन लेते है नी, पैसा उठाते ब्याज पटाते और वो पैसा कौड़ी उही में सिरा जाते
0: हाँ।
1: और कोनो रोजगार धंधा नहीं लगा पावा
0: हाँ।
1: तो वो माई लोगन मन हा मशरूम उत्पादन करके अच्छा आमदनी कमा सका थे।
0: राजेश भाई देखे मशरूम उत्पादन में जो उन्हें या कोनो काम हुआ है ओमा सबले पहली मनखे के सोच ली थे कि ओमा कतेक लागत लगे, लागत है प्रमुख होते, फिर ये ऐसा रोजगार है कि ओमा लागत बिल्कुल कम लगते है ना। मशरूम के खेती पर बहुत बड़े भारी मशीन की जरूरत नहीं होवा, एला घर के घर माँ एक छोटे से कमरा माँ या झोपड़ी माँ या जैसन भी व्यवस्था है ना। हमारे किसान संगवारी मन हकत को झन है जो उन्हें तो आज घला ओकर मन के कच्ची घर है, ब्यारा बाड़ी है ना भाई, तो ओमा बड़ आसानी ले इला कर सकते हैं।
1: और एकर जो सामग्रिक बात करें रोशन भाई
0: हाँ
1: ये तो में फसल अवशेष जैसे भूसा हो गए, कुट्टी बदरा हो गए है ना, और फसल अवशेष मतलब बहुत अकन जिनिस आ जाते
0: हाँ।
1: एकर आसानी ले उपयोग करके हम ना मशरूम उत्पादन कर सका था
0: हाँ।
1: और ऑयस्टर मशरूम हो गए जैसन और कतको प्रकार के मशरूम आते तो मन हाँ 10-15 दिन में तैयार हो जाते, जेखर ले महिला मल्ला या जोन भी उत्पादन करे संगवारी मल्ला नियमित रूप ले एक आमदनी मिलत रही थे
0: हाँ।
1: और आर्थिक क्षमता बाढ़ते
0: हाँ सही कहे राजेश भाई। देख आओ ये मशरूम उत्पादन पर नहीं शासन है घला इमा सहयोग देवत है नहीं भाई, खास करके जो उन महिला समूह मन है ना, चाहे राज्य सरकार हो वाए केंद्र सरकार हो वाए, स्वयं सहायता समूह के महिला मन पर कम ब्याज में लोन देते ने पैसा देते ऋण देते है ना भाई, प्रशिक्षण जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम ले सब्सिडी मशरूम किट घला दे जाते

0: अपनी की बहुत अकाने में छूट देते जेकर ले ए रोजगार में ज्यादा से ज्यादा महिला मन आवाय और करे।
1: अभी वो रोशन भाई हाँ। प्रशिक्षण लेके ही इखर शुरुआत करे या कोनो भी काम धंधा करत है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
1: और जो संगवारी मन मशरूम उत्पादन करत है ओकर से मिल लन विशेषज्ञ से मिल लन और जानकारी लेके शुरू करना।
0: हाँ
1: अब अपन मन ले चालू कर दे और घाटा हो गए तहन फिर मन टूट जाते
0: हो जाते कर्जा बोड़ी में
1: लादा जाबे तेखर ले जे जानकार है तेखर मन ले जरूर एक घाव सलाह ले लेवन ओकर बाद अपन कामला चालू करना। रोशन भाई गोट बात करबो अभी सुनथन ये संदेश।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़े प्रकृति से नाता जोड़े आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
9: छत्तीसगढ़
8: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।

0: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।
1: रोशन भाई,
2: हाँ,
1: हमारे देश में अभी जो 12 साल बीते हैं ओमा खेती किसानी के क्षेत्र में बहुते बदलाव देखे पर आ है न। अब ये बदलाव में कस्टम हायरिंग सेंटर्स की भूमिका है बहुते बड़े है, अहम है। और एक माध्यम ले छोटे छोटे किसान हैं, है एक एकड़ दो एकड़ पाँच एकड़ जैसे जो भी कमती रकबा वाले किसान है, मंत्री आधुनिक कृषि यंत्र है पहुँची से और मल्ला खेती किसानी में लाभ गलो हो है।
2: राजेश भाई, देख हमारे देश में जो है तो खेती है जो उन्हें नहीं, देश के आधार आए तरक्की के है ना भाई। एमा कहूँ विकास हो है या कोनो आधुनिक यंत्र है फायदा के हो है, ये बहुत बढ़िया बात है ना। और जैसे कहेस ना कि एक माध्यम ले है ना भाई, कस्टम हायरिंग माध्यम ले सस्ता दर में आधुनिक तकनीक बड़ फायदा की हुई। जैसे कतको कन जो यंत्र है वह किसान संगी है दो साल ले खेती करे तभो पैसा में नहीं ले पाए है नहीं भाई, महंगा रहा है। जैसे ट्रैक्टर है, रोटोवेटर है, लेजर है, लैंड लेवलर है, सुपर सीडर है और कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना छोटे किसान संगी मन पर बड़ असंभव है। फिर कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम ले किराया मा मशीन हा पहुंच के असंभव और संभव बनाई।
1: और रोशन भाई,
2: हाँ,
1: बेरा हो गया किसान वाणी के प्रोजेक्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: रोशन भाई,
1: हाँ
0: अब जेठ महीना चला थे, अभी आषाढ़ घरों लग गया है ना, वो घाटा बाजार अब धीरे धीरे उठा थे, पानी बाजार चालू हो गए।
1: और राजेश भाई देख, जब घुमड़ के उठते बादर, ऐसे लागते सरा घा आंजे है काजर, रज रजा के गिरे पानी ए बादर, तभे मयारू के मया है कि थे, उठे घटा बादर के आंखी में आंजे काजर
0: के। रोशन भाई बढ़िया सुघर कविता के है, और यही रकम के गीत सुनथन जो लगावा थे धुरुआ राम मरगाम और दुखिया बाई।

0: अभी सुनो कि जिलगावत रहने धुरवा राम मरकाम और दुखिया भाई मन राजेश भाई देख कोनो भी काम बूता होवा या खेती किसानी होवा सोझे सफलता है नहीं मिले है ना बहुत संघर्ष करे के बाद ही सफलता ला पाथन है ना भाई और देख सफलता ऐसे नहीं रहा है कि एक बार मिलीस तो सबो दिन बने रही हमला लगे रही थे और लगातार जो उन्हें संघर्ष करे लागते प्रयास करे लागते और हम किसान हन तो खेती किसानी की गोट बात करबो जब एमा कोनो संगी मन सफल थे तो हमर कर वो जब बात रखते सफलता के तो बड़े निक लागते
1: और जन चिभिक लगा करा देते
0: हाँ
1: वही मन सफल होते
0: बिल्कुल
1: है नहीं बारह महीना धान के हो पशुपालन ये कैसे बढ़ाओ इमें कैसे ज्यादा लाभ मिली
0: हाँ।
1: ऐसे वह जोखत रहते जोखा मड़ाते तब वह सफल होते
0: हाँ। और कंझन मन थोकन करी कंझा के छोड़ देते
1: छोड़ दे
0: वही है सब असफलता का
1: कारण बन जाते हैं तो सफलता के गोट करा था तो आज इसने हमारे बीच सफल किसान है श्री राम साहू गाँव अमोदी जिला सारंगढ़ आप मन खेती किसानी और पशुपालन करता हो और आप मन ले गोट बात करत हैं मोनिका जैन तो सुंदन श्री राम साहू के सफलता के कहानी
2: संगवारी हो खेती किसानी बहुत जरूरी है और बात पशुधन के है तो भाई पशुधन तो हमारे बल बढ़िया है काबर की देखो बिहनिया लेके संजा बेरा तक कहूँ ना कहूँ पशुधन अमर काम आत अब आप मन विचारो भाई बिहनिया के चाय अगर बिना दूध के मिली तो कैसे सुहाई अब यही बात भर कि भाई खेती किसानी करथन और संग में पशुपालन घलो करथन तो ये विषय में हमन गोड़ बात करवो हमार किसान संगवारी की अमन खेती और पशुपालन में कैसे प्रबंधन करते कैसे एक साथ खेती और पशुपालन करे तो हमारा आज के किसान संगवारी हैं श्री राम साहू जी हाँ अपन हाँ ग्राम पोस्ट अमोदी ले हैं तहसील सरसीवा और जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ले हैं श्री राम साहू जी अपन के स्वागत है मेरे क्रम में
3: जी नमस्ते जी।
2: सबले पहले तो अपन ये बताते हो कि अपन खेती किसानी के बूता कब ले करत
3: खेती किसानी के बूता तो हमारा ऐसे है कि पूरा खानदानी है समझ लो बचपन से चले आते हैं पूर्वज में से हमारे दादाजी हैं वहाँ से हमन खेती किसानी करत आते हैं हमन की कोई दूसरा तो है नहीं है तो जब से हमन पैदा हुए हन बचपन से ही हमन खेती किसानी से ही जुड़े हन और खेती किसानी करत करत ही आवत हन अभी तक कैसे है
2: जी मैंने आप मल्ला ननपन ले ही खेती किसानी वाले माहौल मिली से
3: बिल्कुल
2: ये बहुत सुघर बात है तो अब आप मल्ला ये बताते हो कि पहले के खेती किसानी जब आपके दादाजी मन करत रही ने और अब के खेती किसानी जब आप करत एमा आप मल्ला का अंतर समझ में आता
3: अंतर तो अब बहुत हो गए जी पहली खेती किसानी होत रही केवल जैविक खेती होत रही सावे एमा हमन केवल गोबर खाद ही डालत पहली का है खेती किसानी हुआ तो एमा रासायनिक खाद के उपयोग बहुत कम होत रही सावे गांव में गोबर खाद के उपयोग ही ज्यादा करन तो हमन ला बढ़िया शुद्ध अनाज मिले भले उत्पादन रासायनिक खेती में ज्यादा है आज के दौर में रासायनिक खेती डालत है रासायनिक खाद ला डालत है तो उपज जरूर ज्यादा मिलत है लेकिन पहले के जो खेती रही सावे वो बहुत अच्छा रही सावे आज हमन भी वही खेती ला अपनाना चाहथन और जैविक खाद के उपयोग ज्यादा करत हन रासायनिक खाद ला कम करत हन
2: ये तो बहुत सही बात कहा था आप मन है कबर की देखो मर कतकुन किसान संगवारी मन है शुरू में रासायनिक खाद तो उपयोग कर लेते फिर माटी के उर्वरता घटे ले फसल उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आते तो सही कहा था आप मन है कि जैविक खाद के उपयोग हमन ला ज्यादा ले ज्यादा करना चाहिए और शुरू से हमारे जितना भी पुरखा मन रही है सियान मन रही है वो मन जैविक खेती ही करे अब आप मन ये बताते कि आप मन खेत में का का फसल लगाते हो
3: हमारे गांव तरफ तो अब ऐसे है कि बरसात में केवल धान के ही खेती लगते

0: और गर्मी के दिन में तिवरा लगते, तिवरा एक तिवरा करके होते, गर्मी में होते, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल है यहाँ कोई सब्जी भाजी भी लगा लेते हैं, और हाँ मन के तो गेहूँ लग जाते और थोड़ा सा मूँगफली वगैरह लगा लेथन
1: जी।
0: तो दोनों टाइम के हो जाते, गर्मी में भी हो जाते गेहूँ मूँगफली, और बरसात में धान की खेती हो जाते, तो धान और मूँगफली की खेती दोनों फसल में चलत रही थी
1: जैसे। अच्छा, आप मन पशुपालन घलोक करता हो ना?
0: पशुपालन तो हमारा शुरू से है।
1: अच्छा,
0: खेती के साथ साथ का है पशुपालन में ये है कि गांव में जैसे हम हन तो दो चार गरुआ बछरू तो हमारे घर में रह रहे थे हमेशा।
1: अच्छा,
0: एकर से हमला बहुत फायदा है मैम। का है कि गांव में जब गाय गरु है तो ओकर से हमला दूध मिल जाते, तो दूध हर हमारे घर उपयोग में भी हो जाते। एकर से चाय पानी है, अपन जो लड़का बच्चा है एमन भी दूध पी लेते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा दूध हो गए एला हम आस पास में बेच करके ओकर से हमला पैसा के भी प्रॉफिट हो जाता।
1: सही बात,
0: ये खेती के साथ साथ ही हमला गाय गरु रखे में कोई परेशानी नहीं है और गाय गरु भी चलत रहते साथ।
1: सही कहा था आप, मना मैंने खेती के संगे संग पशुपालन करना, मैंने देखो का है दोनों एक दूसरे के पूरक, मैंने खेती में हमारे पशुधन मन की जरूरत पड़वे करते, और सही कहा था कि पशुधन मन पर खेत ले पूर्ति होते।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, ये बताते हो जैसे आप मन पशुपालन करा था तो एकर मन के रहे की व्यवस्था कौन ढंग ले करता हूँ?
0: अच्छा, एकर रहे की व्यवस्था तो हमार परमानेंट है, जहाँ हम रहन वही घर में
1: जी।
0: या दूसर मन तो कोई अलग जगह ऊपर बना के रख लेते हैं पशु के लिए, लेकिन हम मन घर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हम एक अलग से अच्छा बड़े कमरा बना ले हाल टाइप के, वहाँ हमारे 5-7 ठो गरुआ बढ़िया से आ जाते, बोले हमने खूंटा गाड़ के बांध लेते हैं, और जो रहे की व्यवस्था है दाना पानी चारा के लिए हम गाँव में कोटना बोलते हैं, जहाँ हमन दाना पानी देते हैं, हाँ हाँ। तो कोटना हर गरुआ के लिए एक दाना पानी देने के लिए एक ठो कोटना रहते है, और एक एक घर में तो हमारे घर में ही घर के अंदर में हमारे गरुआ बछरुआ थे, तो कर देख रहे में हमला ज्यादा सहूलियत होते।
1: तो मौसम अनुसार आप मन उखर मन खातिर व्यवस्था करत हो?
0: बिल्कुल, मौसम के अनुसार जैसे गर्मी है तो गर्मी के दिन में दो ठो पंखा, अब हाल बड़े है तो दो पंखा मन जरूर लगा के रखथन, और पंखा के नीचे में ही मवेशी मन रहते, और गर्मी के दिन में जैसे दरवाजा खिड़की है वह मन बोरा वोरा डाल के रख देते गर्म हवा मच जाए।
1: अब उखर मन की खान पान की व्यवस्था की बात करें तो ये बताते हो कि उखर मन की खान पान कौन प्रकार ले रखता हो आप मन?
0: एक खान पान तो ऐसे है मैम, जैसे हमन तो बचपन से ही किसानी में हन, तो किसानी में हमन ला तो पैरा मिल जाते, पैरा के कुटी मिल जाते, साथ में गांव में जैसे हालर मिल है, हालर मिल से कोढ़ा मिल जाते, तो कोढ़ा और दाना हम तो पहले से बताएं कि हर गरुआ के साथ में एक ठो कोटना रखते हैं जमा दाना पानी देते हैं हमन, तो वहाँ हमन दाना और कोढ़ा तो एक साथ हो जाते, पल्स पैरा कुटी हो जाते और रात में पैरा दे देते हैं। बरसात के मौसम आते तो मतलब हरा चारा की भी व्यवस्था हो जाती है, तो खाए पिए में ऐसा कोई परेशानी नहीं है, हरा चारा की व्यवस्था है, दाना है, पानी है, कोढ़ा है, पैरा है, सारे चीज की व्यवस्था करके रखे रहते हैं।
1: अभी अपन जैसे बरसात की बात करे हो तो बरसात में कौन प्रकार के रहे की व्यवस्था करते हो करमन?
0: वही है, बरसात में भी वही रहते रहे बर, पर थोड़ा सफाई का ध्यान दे पड़ते, का बरसात आते तो हमेशा जिस जगह हम रहते हैं हमन गांव के स्तर में कोठा बोले जाते, तो सुबह सुबह रोज सुबह ओला धुलाई किए जाते, धुलाई करके थोड़ा बहुत जैसे गरुआ बछरू बाहर निकली तो जो कोठा है वो सुखा भी जाते और वो माछी वाछी भी नहीं आए, जेकर से मवेशी मतलब किसी प्रकार के ज्यादा बीमारी लगे की भी संभावना नहीं रहे, है ना, तेकर लिए मतलब मवेशी मतलब थोड़ा धुलाई भी कर देते कभू कभू, और जो कोठा है बोला तो रोज साफ करना अनिवार्य रहते, एकर से हमारे मवेशी मन बहुत सुरक्षित रहते।
1: सही कहा। तो अभी अपन जैसे बीमारी की बात करे हो तो जैसे पशुधन मन बीमार पड़ते या बीमारी ले बचाव खातिर आप मन का उद्यम करते हो?
0: अब पशु मन बीमार तो पड़ते जैसे आदमी पड़ते वैसे तो पशु मन भी पड़ नहीं रहते, पर हमारे गाँव में जो पशु चिकित्सक है गाँव से 10 किलोमीटर दूर सरसियों में है, ते मन कभू कभू आके देखते मवेशी मन ला और हम बताते कब कब का टीका लगना है, का है कैसे है, तो जे प्रकार से हम बताया जाते उस हिसाब से हमन तो टीका जरूर लगवा था, कभू अगर एक आठ ठे गरुआ कुछ बीमार बीमार पड़ गए तो ओला हमन अलग से जैसे और भी मवेशी है वहां से हट के अलग रख देते हैं, नौकर फिर इलाज चालू हो जाते, फिर डॉक्टर के देखरेख में और हम खुद देखरेख करते हैं जैसे डॉक्टर मन बोलते वो हिसाब से दवा वगैरह होते रहते, और जब वो ठीक हो जाते फिर हम अपन दूसरा मवेशी के साथ में ला के फिर अपन जगह में रखते हैं, जेकर से बीमारी फैले की संभावना नहीं रहे दूसरे जानवर ला, ये हिसाब से व्यवस्था करके बना के रखे पड़ते।
1: श्री राम साहू जी, ये बताते हो कि पशुपालन ले आप दुग्ध उत्पादन तो मिल भी करे थे, खेत में खलिहान में घरों को खर उपयोग अपन करत हो
0: जी,
1: संगे संग गोबर खाद बनाता हो
0: जी,
1: एकर अलावा अपन और एकर ले का लाभ लेवत हो?
0: अच्छा।

0: पशुपालन है तो बहुत लाभ है मैम। देखा पशुपालन में तो दूध के तो है ही है, दूध से हम लोग प्रॉफिट हुआ थे, इनकम हुआ थे पैसा के, ओकर साथ साथ गोबर गैस, गोबर गैस अगर हम घर में लगा ले हन तो ओकर से हमार बिजली के भी खपत हुआ, खपत कम हुआ थे। गोबर गैस से हमार लाइट जल जाते तो बिजली से भी खपत कम हुआ थे। दूसरी बात, पशु से हम लोग जो गोबर मिला थे, गोबर से हमार बढ़िया गोबर खाद बनते, गोबर खाद से हम अगर खेती करत हन तो ये हमारे जैविक खेती में आते, एक से हम लोग बढ़िया हमारे जो जमीन के जो उर्वरक है, जो माटी के जो उर्वरक है, ये बहुत अच्छा रही थी। रासायनिक खाद का है, रासायनिक खाद डालथन तो जो हमारे माटी की जो उर्वरक शक्ति है ओला कम कर देते, एक से हम ज्यादा चाहतन कि अधिक से अधिक हम गरो बछरू रखी और से हम जो मिलते खाद गोबर खाद ओला हम डाल के हमारे जो खेती किसानी की जो माटी की स्तर है ओला बनाए रखथन तो एक से हमारे उपज भी ज्यादा मिलते और प्रॉफिट भी ज्यादा होते। तो हमने देखा गैस के भी और दूध के भी और गोबर के भी सारे चीज के प्रॉफिट है पशुपालन से।
1: सही बात कहा। तो अब जाति विराती हमारे किसान संगवारी महिला आप मन का विशेष बात बोलना चाहू भाई कि जिनमन खेती किसानी घलोक करत है और पशुपालन घलोक करत है या फिर जिनमन सिर्फ खेती किसानी करत है और पशुपालन नहीं करत है करना चाहते तेन मन।
0: मैं अपन सबो किसान भाई मन ला मैं बोलना चाहता हूँ खेती किसानी तो करते हैं साथ में अगर हम पशुपालन करते हैं तो हमला जो फायदा है ये हमला कृषि में ही फायदा है, गैस में ही फायदा है, गोबर खाद में ही फायदा है, सारे चीज में फायदा है। तो मैं समस्त किसान भाई मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करे, एक से अपन आय ला और बढ़ोतरी कर जावे।
1: श्री राम साहू जी आप मन आए हमारे संगवारी मल्ला इतना सुघर सुघर अपन अनुभव साझा करे हो ये खातिर आप मन की बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आज के किसान एक क्रम में अभी सुनत रहें श्री राम साहू गांव अमोदी जिला सारंगढ़ ले उनखर खेती किसानी और पशुपालन के अनुभव ला आप मन सन गोट बात करत रहें मोनिका जैन।
3: राजेश भाई अवैया मंगलवार 23 जून के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय होही त्रिस्तरी मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन विषय में आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्रीमती अनुभूति देवांगन सहायक मत्स्य अधिकारी रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 400-3482, दूसरिया फोन नंबर है 400-3483 और तीसरिया फोन नंबर है 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 23 जून 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन मंगलवार के संझा 7:30 बजे करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के इंतजार रही। सूचना समाप्त हुई।

0: हम है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: राजेश भाई अब संगवारी मन ला बता देथन
4: आज
3: के प्रश्न ला, है ना भाई?
4: हाँ।
3: आज के प्रश्न है, गाय के गोबर मा के प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते? प्रश्न ले घाव बता देथन, गाय के गोबर मा के प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते?
4: हमर नवा संगवारी मन बर हमर ईमेल पता बता देथन, राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। संगवारी वैसे लिखना है RAIAAJKEPRASHNA23@gmail.com।
3: राजेश भाई देख पाछू आप हमन प्रश्न पूछे रहन ओला संगवारी मल्ला बता देथन।

0: बिल्कुल ओकर उत्तर ल घला बताबू। प्रश्न रही से बीज उपचार कोन कोन विधि ले करे जा सकथे, और सही उत्तर एकर हे जैविक विधि और रासायनिक विधि।
1: बीज उपचार करे के बेरा घलो आ गए, खेती किसानी के दिन आ गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और सही उत्तर हमारे संगवारी मन लिख के भेजे हैं। नवागढ़ के टेले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामनी वर्मा। बेमेतरा ले हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, विरिजकांत सारथी। नागर कोहरा राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू। बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा। मदनपुर कवर्धन ले श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। और तेंदू भाटा मगर लोड ले हैं उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र निषाद। त सही उत्तर भैया सबो संगवारी मल्ला हमार ढाले गाड़ा गाड़ा बधाई।
0: राजेश भाई देख, हम कोनो भी कहन के आज के सलाह हुआ या सफल किसान हुआ संगवारी मल्ला सुनाथन और मन ध्यान ले सुनथे, और ओकर बाद जब हमार कर प्रश्न उत्तर ल लिख के भेजथे त हमू मल्ला बने
1: लागथे। ये सीखे के बढ़िया माध्यम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और एक दूसर ले सीखथे घला। एक किसान हा सफल हुई अपन सफलता कहानी बताइस, सफलता के संग संग जौन असफलता है उहुल बताइस। ओकर ले जौन किसान है, नवा किसान है, दूसरैया किसान हन मन है, ओकर ले सीख लेथे और सीखथे और जानथे।
1: हाँ, कते चीज ल नहीं करना है, कते हमारे बार घाटा के फायदा के है,
0: हाँ
1: उल समझते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहे राजेश भाई, और यही कोशिश हमर मन कर रही थे। हमू मन जौन है किसान मन के समस्या ला, ओकर मन के जौन परेशानी है ओला गोट बात करत रिथन और प्रयास करथन कि ओकर समस्या के समाधान मन हा हो। अभी जैसे देख अब खरीफ फसल के जौन है तो शुरुआत हो गया है ना। कोनो डहन पानी हा बने गिर दे है तो डहन थोकन खेती के काम मन हा शुरुआत हो गए है,
1: ट्रैक्टर चले चल हो गए
0: हो गए है। फिर कोनो जग ऐसा है कि अभी सोझे भुइया हा भमहावत है ना भाई,
1: दन मारा
0: थे। तो खेती किसानी में तो थोक बहुत आगे पीछे होबे करते, फिर सावचेत रहे ले जो उन्हें तो फायदा होते।
1: और रोशन भाई, पहली घर घर गाय गरु रहा है ना, तो गोबर खातू खेत में पहुंच जाए है नहीं, ट्रैक्टर में अब खातू पाली दिन रहा है, छोटे छोटे रहन देखा नहीं, गाड़ा में भर के ले गए और अच्छा सरे गोबर ला डारा है नहीं, तो लेकर हम तो काबर डार थे सोचन गलो है नहीं। अब बाद में सब पता चली इसके कतका महत्व है वो आवाज प्रश्न गलो पूछे हैं। तो जत का जे संगवारी मन का गोबर खातू है तो अपन खेत में डारबे करी, जो नहीं है तो मन अपन खेत में बिसा के गोबर खातू का उपयोग जरूर करें, जेखर अच्छा उत्पादन होवे और कतको संगवारी बढ़िया जैविक खेती डार गलो आगू बढ़ाते हैं है नहीं।
0: शुरू में अभी जैसे आज के किस शुरू में गोड़ बात करत रहे ना हमारे मशरूम के बारे में, तो मशरूम जैसे पैरा के कुटी है, बदरा है, भूसा है, एकल ले होते, और बाद जब मशरूम उत्पादन ले लेते हैं तो उहू हा हमार जैविक खातु काम आते है ना। तो संगवारी मन ये कहन कि वह हमार खेती पर बड़ फायदा के घला है। और एक ठकाऊ गीत सुन लेते राजेश भाई, जे लगावा थे पंचराम मिर्झा और कुलवंती भाई।

0: अभी सुनेन गीत जे लगावत रहिने पंचराम मिर्झा और कुलवंती भाई मन हम
1: रोशन भाई शुरू में हमन गोट बात करत रहिन कस्टम हायरिंग के है ना, तो खैर उपयोग ले खेती किसानी में बढ़िया सुधार हुआ थे है ना, और किराया मिल जात किसान मन ला
0: हाँ।
1: छोटे किसान रहे तो कमती जगह रखबा है वो मतलब मिल जाते, और जो लाभ बड़े किसान मन उठावत रहिसे
0: हाँ।
1: वो लाभ छोटे किसान भाई मल्ला मिला थे है ना।
0: राजेश भाई देख एला लाभ ले बर हम किसान संगवारी मन ला का करना चाहिए, ये हा जौन है तो मोबाइल ऑनलाइन पंजीकरण पंजीयन होते मोबाइल ऐप किसान पोर्टल में जाके अपन आवेदन ला कर सकते, जेखर ले किराया मा मशीन हा मिल सकते मिलते और मशीन ले अपन जौन जरूरत है जरूरत के हिसाब से, ऐसे नहीं है कि थोरकन काम है ओकर बार हम मशीन मंगाड़ रहे, जितना काम ला हम खुदे कर सकथन अपन बल भरोसा, आओ मशीन लाबो तो भाई वो में दे लगी किराया ला, तो कहीं अपन बल ले कम पैसा लागा थे और मशीन में ज़्यादा लगा थे तो अपन बल ले ही करना उचित है। कहे के बात ये है कि आधुनिक यंत्र के उपयोग करन फिर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ करेल कोनो प्रकार के फायदा नहीं हुआ।
1: ऐसे कहा है कीड़ा मकोड़ा लगते नहीं खेत खार में
0: हाँ,
1: तब वो विशेषज्ञ मन की थे कहूँ नुकसान है ओतिक नहीं है
0: हाँ,
1: तब महंगी दवाई ले जान छींचा
0: बिल्कुल हाँ।
1: अब महंगा दवाई ला नम नुकसान कम हुआ थे अब ला के छींचे हैं तो पैसा ज्यादा दवाई में लग गए।
0: राजेश भाई ये रही किसान वाणी प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: रोशन भाई संगवारी मन सन गोठियात बतावत बेरा हो गए संगी मल्ले विदा लेके
0: हाँ,
1: तो संगवारी हो देवा विदा सबो श्रोता संगवारी मल्ला राजेश यादव
0: और रोशन के
1: राम
0: राम,
1: राम,
0: राम।

ये था किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था अनुपमा। शब्द रचना कैफी आजमी की थी और संगीत हेमंत कुमार का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध

0: प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है उम्मीद और संगीत रवि का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लीजिए सुने महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म जिंदगी और मौत का गीत। शब्द रचना है शकील बदायूनी की और संगीत सी रामचंद्र का है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडवानी गायन। कलाकार हैं विदुषी शांतिबाई चेलक और साथी। प्रसंग भीष्म पर्व का है। शिखंडी का अवतार

0: बस भैया बस, सात दिन सात रात के लड़ाई हो गई। भीष्म पितामह के ओर देखे और परशुराम कहे मारना चाहता था तो मार सकता हूँ लेकिन नहीं, काबर ये शिष्य। अरे निकाले महाकाल बन। और भीष्म पितामह ले देवत कहे हवा ये सुन ले बेटा, ये महाकाल बाण है तोर काले, जब तक ले तोर हाथ में रही तो जीवित रही बे, अब ये बाण छूट गया तो यही बाण में तोर
1: जीवित मरना है
0: बेटा। अम्बा चले। अरे वाह, अम्बा कहे बाबा आपके खेल खत्म हो गए, अरे हमार खेल तो यहीं से शुरू होने वाली है।
1: अब शुरू होने वाला है।
0: बोले भीष्म, अरे ते ब्रह्मचारी रहे तो मोर हृदय में हाथ का बट डाले। अरे मोर शत्रु तय हस, अब तोला मारे बार एक जन्म का, अगर मोला तीन जन्म लेना हुई तो मैं ले के लिए तैयार हूँ।
1: क्या बात,

ए रागी, विष्णु भगवान के तपस्या में लीन हो गए। ताजा कमल फूल के हार लेके विष्णु भगवान प्रकट हो गए। अम्बो ले बेटा, ये तरव ताजा कमल फूल के हार ले, ये राजा को न माला ला थाम ली तो वही जगह तो ला न्याय मिल जाए। ये माला कुम्हलावे नहीं तरव ताजा रही,

0: राम कहाँ पहुँचा थे देखा था सरागी राजा मन के बीच में
1: या या
0: दाऊ माला तह पहन ले
1: क्या बात?
0: राजा माला तह पहन ले भैया जी माला तह पहन ले लेकिन
1: कोई नहीं है
0: माला के पहनने वाले कोई तैयार नहीं
1: कोई नहीं है
0: अम्बा कहे कैसे है हमर समाज कैसे है हमर समाज अरे ऐसने माला है बिहाव के बेरा मोर हाथ में रीस कते झन मूछ लेटे इस कते झन काला ला सीधा करी इस कते झन अपन अंगला देखे अब ये माला पहने भर कोनो तैयार नहीं है
1: कोनो नहीं ये।
0: राजा द्रुपद ये माला तय पहन ले लेकिन द्रुपद नरेश भी माला नहीं पहनीस राजा द्रुपद नरेश ला कहे राजा द्रुपद आपके ये मेन दरवाजा में माला ला में टांग के जात माला ले टांग दीस अब माला ले टांग के अंबा निकल के कहा भोला भगवान।

अम्बा के जय हो। वरदान मांग ले अम्बा ता कहते अविनाशी अ भगवान आप मन हा मोर पीड़ा ला जाना था मोर दर्द ला जाना था मैं भीषम ला मारे बर प्रतिज्ञा करे हो बाबा मोला ऐसे ताकत दे दे मोला ऐसे प्रण ला पूरा कर दे और मोला कुछ नहीं चाहिए बाबा। भोलानाथ कहे बेटा

0: भोलेनाथ। पुनर्जन्म में सुरता हानि रहे, अब मैं पुनर्जन्म का दूसरा जन्म का अगर दो चार जन्म दे दे तो मर मर के जिए के लिए तैयार हूँ। लेकिन मोर मस्तक की स्क्रू है ना, मस्तक की स्क्रू है ओला टाइट बना के रखबे,
1: टाइट बना के रखबे याददाश्त,
0: लाइन क्लियर रखबे भोलेनाथ की, लाइन क्लियर रखबे। जब ये धरती में मैं जन्म ले लूं दूसरा जन्म तो मोर शत्रु भीष्म ला पहचाने के लिए मोर याददाश्त बनाए रखबे। भोलानाथ के आशीर्वाद हो गिरा जी, और भोलानाथ के पूजा ला करके अम्बा है तन वरदान पाए के खातिर और सीधे निकल गए गंगा मैया के पूजा में।
1: हाँ जी।

0: क्या कहती है अम्बा? मैं खुश हूँ बेटा, वरदान मांग ले।
1: हाँ जी।
0: हमार शत्रु कुनौनो है भीषा में, ओला मारे बर मोल शक्ति दे माँ। गंगा मैया कहे ओ हमार बेटा ला मारे बार हमरे से शक्ति ले
1: या या।
0: अरे ना रहे बास ना बाजे
1: बासी,
0: कहीं थे जा टेढ़े बेढ़े नदी बनके तो राधा शरीर हमर गंगा में समाहित हो जाए। जा मैं तो लतार ले हूं। हम्बा कहे गंगा मैया, हे गंगा मैया, सिर भया भीष्म पितामह के महतारी बनके माँ बनके बोला श्राप देवत हो कि आशीर्वाद देवत हो गंगा मैया। हे गंगा मैया देख हमार वर, देख गंगा मैया मोला देख। जे बेटी एक बार मई के दहलीज पार कर लेते तो बेटी नहीं रहे। जे ससुराल में जाके बहू बने के ओला आशीर्वाद नहीं मिली, वो बच्चा के माँ घलो नहीं बन सके। न मैं ककरो बेटी हूँ, न मैं ककरो रानी हूँ, न कोनो संतान के मैं माँ हूँ। हे गंगा मैया मोला आशीर्वाद दे थस या श्राप। लेकिन गंगा मैया ए श्राप आशीर्वाद समझ के ले ले हूं। आधे शरीर टेढ़े बढ़े नदी बन के बह गिर आगी, आधे शरीर क्रोध के आगी से जले लगी और जल के खाक हो गए और पुनर्जन्म होकर कहां होते।

0: राजा द्रुपद के नारी तुलसी के गर्भ में
1: या
0: पुनर्जन्म हो गए
1: हो गए
0: पंडित पद आ गए
1: आगे
0: नामकरण

0: वीर खंडनी
1: हाँ जी
0: जैसे द्रुपद राजा के दरवाजा में निकली और देखते वो तरवा ताजा कमल फूल के हारल भैया सुरता आगे बोला
1: हाँ जी
0: मोर पुनर्जन्म हो गए दूसरा जन्म अब विष्णु के दे माला अपन गले में पहन लिया राजा द्रुपद कहे बेटा ये माला ला निकाल रहे बेटा काबर की राजा द्रुपद ला पता है माला पहनना झगड़ा के मोल लेना है और वो भी हस्तिनानगर में भीष्म पितामह के साथ में तो भैया माला ला निकाल निकाल के ही स्वंबा के थे माला नहीं निकाला बाबा ये माला तड़बर सुंदर है कहीं माला निकाल बेटा और नहीं तो ते घर निकल जा।

तपस्या करे लगी तो भक्ति में अतक बड़े शक्ति हो गए भैया कि ओकर आधा शरीर है न मर्द के हो गए, आधा शरीर स्त्री के रह गए और शिरखंडनी से का ना हो गए, नाम हो गए शिरखंडी। और कहां पहुंच गए वहां दसवां दिन के महाभारत लड़ाई में अर्जुन के बाण छूटे हैं और अर्जुन पर भीष्म के बाण छूटा थे और ये समय अर्जुन हाँ लड़े के ताकत वोकर में नहीं है, समर्थ नहीं है। तब ये मुरली मनोहर भगवान कन्हैया देखा थे काला शिरखंडी ला और शिरखंडी ले सारा करके रथ में बैठारीस और दोनों हाथ ले मार ताली बजा के किस तचिल्ले भीष्म मैं काओ तचिल्ले अरे मैं रहो अम्बा अम्बा ले शिरखंडनी और शिरखंडी ला बन गया मैं शिरखंडी। जैसे वाला देखी से लाज के मारे गर्दन झुक गए और उठा के बाण अर्जुन द्वारा भगवान कन्हैया सासो बाण ला चलवा दिस और यंग यंग में होकर बाण बाण के छेद दिस और शिरखंडी शिरखंडी जीत गए। तक औरत हो अम्बा के समान हो, औरत हो तो दुर्गावती के समान हो, औरत हो तो अम्बा देवी के समान हो।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडवानी। गायन में प्रसंग था शिखंडी का अवतार और भीष्म पितामह का वध। सहयोगी कलाकार रागी पंचराम धृतलहरे, हारमोनियम पर विनोद साहू, तबला पर शिवलाल खरे, नाल पर गोपाल दास और झुमका पर श्यामलाल देशमुख।

0: प्राप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। सब कुछ अधिक विस्तार के साथ शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्कैन के साथ खेल की हर बात। शुरुआत मुख्य समाचार से। चेन्नई में भारत ने अफगानिस्तान को 9 से हराकर 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में कल मैनचेस्टर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 5 पदक जीते। फीफा विश्व कप के 10वें दिन 3 मैच खेले जाएंगे। कल अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ऑकलैंड में FIH नेशंस कप में भारत ने चिली को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताब के लिए कल मेजबान न्यूजीलैंड से मुकाबला। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में अश्मिता चालिया की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त। शुरुआत क्रिकेट के साथ। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को अब से कुछ देर पहले 9 से हरा कर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल 86 में 110 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 79 रन की धुआंधार पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 102 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उधर हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय ओडीआई क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। वह अफगानिस्तान श्रृंखला से पहले लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। उधर मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे विराट कोहली के बारे में फैसला दोबारा उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ICC महिला विश्व कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन अब उसके सामने एक कड़ी और बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट।
2: पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन और दूसरे मैच में कमजोर नीदरलैंड्स को 95 रनों से करारी शिकस्त देने वाली भारतीय महिलाओं के लिए इस विश्व कप की सबसे कठिन चुनौती दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से पार पाना है। ऐसे में इस खतरनाक टीम के सामने जीत के लिए टीम को हर हाल में न सिर्फ अपनी लय को कायम रखना होगा बल्कि मनोबल को भी ऊंचा बनाए रखना होगा। ये मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर भारत की बल्लेबाजी को कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की स्मृति मंधाना की काबिलियत और कप्तान हरमनप्रीत के अनुभव के साथ शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की आक्रामक बल्लेबाजी अहम होगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ट और मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। पहले 2 मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय गेंदबाजों को मैनचेस्टर की स्पिन फ्रेंडली पिच पर धार बनाए रखनी होगी। ऐसे में अनुभवी दीप्ति शर्मा और श्रीचरण एक बार फिर टीम इंडिया की मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। शेफाली वर्मा भी स्पिनर के रोल में फिर से फिट हो सकती हैं। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि टीम किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है। भारत के पास अच्छी तेज और स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। दूसरी पिछली बार T20 विश्व कप फाइनल खेल चुकी विरोधी टीम के पास दबाव से निपटने का काफी अच्छा अनुभव है। दोनों टीमों के पास अच्छे हरफनमौला हैं और ये इस ग्रुप का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। 5 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम अभी तक T20 विश्व कप नहीं जीत सकी है। इस मैच में जीत भारतीय टीम को न सिर्फ ग्रुप में और बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मानसिक मजबूती भी देगी। कोई शक नहीं है कि जीत के लिए दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 5 पदक जीते। सुनते हैं रिपोर्ट।

में भारत हमेशा से अच्छा करता रहा है और आगे भी भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। इसका संकेत ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिल रहा है। जूनियर निशानेबाजों का लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। उधर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रोहित कानियान ने सटीक निशाने साधते हुए सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन विमेन इवेंट में प्राची गायकवाड़ ने 354.7 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने टीम इवेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। रोहित कन्यान, वेदांत नितिन वाघमारे और हितेश श्रीनिवासन की तिकड़ी ने मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन टीम इवेंट में भारत को एक और कांस्य पदक समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी की तिकड़ी ने दिलाया। चैंपियनशिप में भारत अब तक कुल 8 पदक जीतकर सबसे आगे है। इससे पहले सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि हिमांशी ने

0: हितेश श्रीनिवासन की तिकड़ी ने मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन टीम इवेंट में भारत को एक और कांस्य पदक समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी की तिकड़ी ने दिलाया। चैंपियनशिप में भारत अब तक कुल 8 पदक जीतकर सबसे आगे है। इससे पहले सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि हिमांशी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने मिलकर कुल 1700 का स्कोर बनाया और स्टैंडिंग में टॉप पर रही और टीम का खिताब जीता। इन पदकों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय टीम ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स दोनों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ चैंपियनशिप में मजबूत शुरुआत की है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के 10वें दिन आज 3 अहम मैच खेले जाएंगे। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच महत्वपूर्ण मैच होगा। यह मैच कांटे का रहने की उम्मीद है। एक अन्य मैच में जर्मनी की टीम आइवरी कोस्ट का सामना करेगी। तीसरा मैच इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप डी में मेजबान अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली। इसी ग्रुप में दिग्गज ब्राजील की टीम ने हैती पर एकतरफा जीत हासिल की। कैसे रहे ये मुकाबले, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
2: सह मेजबान अमेरिका ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ एक तरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी, बल्कि शान से राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली टूर्नामेंट की दूसरी टीम बन गई। सिएटल स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर कैमरन बर्गेस फोलरिन बोलागुन के शॉट का बचाव करते हुए अपना ही पोस्ट में गेंद डाल बैठे और उनकी टीम 1-0 से पिछड़ गई। अमेरिका ने पहले का अंत होने से ठीक पहले उस समय अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया जब मैच के 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट ने शानदार शॉट लगाया। हालांकि उनका ये शॉट गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका, लेकिन सर्जिनो की नाकाम कोशिश को कैमरन बर्गेस ने बेहतरीन हेडर मारते हुए सफलतापूर्वक गोल में तब्दील कर दिया और अमेरिका को मैच में 2-0 की बढ़त दिला दी। ये बढ़त अंत तक कायम रही और अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 में लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली। उधर फॉक्सबोरो में कांटे के मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बोस्टन स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही मोरक्को ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। मोरक्को की तरफ से मुकाबले का एकमात्र गोल इस्माइल सबारी ने मैच शुरू होने के मात्र 71 सेकंड बाद ही कर दिया।
3: Saipari again! What Moroccan magic he is bringing to this World Cup! Morocco have their first win of this 2026 World Cup.
2: मैच की शुरुआत में ही बढ़त हासिल करने के बाद टीम ने पूरे मुकाबले में खेल की गति को अपने नियंत्रण में रखा। पहले गोल के बाद भी मोरक्को की टीम ने कई मौके बनाए, लेकिन दूसरा गोल नहीं कर सकी। उधर फिलाडेल्फिया में बेहद मजबूत ब्राजील ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराया। इस जीत के नायक मैथ्यूज कुन्हा रहे, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। इस जीत के बाद गोल अंतर के आधार पर ब्राजील ने ग्रुप सी में पहला स्थान हासिल कर लिया। मैथ्यूज कुन्हा ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत को बेहद खास बनाया। उनके साथ विनिसियस जूनियर और राफिन्हा का प्रदर्शन भी दमदार रहा। ब्राजील के लिए मैच का पहला गोल 23वें मिनट में आया, जब हेंस डेल क्रोइक्स का क्लियरेंस शॉट कुन्हा से लगकर गोल पोस्ट में चला गया।
3: To winning ways.
2: पहले हाफ के अंत से 9 मिनट पहले कुन्हा ने ब्राजील की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में विनिसियस जूनियर ने ब्राजील के लिए मैच का तीसरा गोल किया। लगातार दूसरी हार के साथ ही हैती की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। कैलिफोर्निया में पराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्कियों को 1-0 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में इस जीत के साथ पराग्वे ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। वहीं हार के साथ ही तुर्की का टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है। मैच का एकमात्र गोल मटियास

0: अर्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल भी है। गल अर्जा ने करीब 25 मीटर की दूरी से जोरदार शॉट लगाया और तुर्की के गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा।
1: What a start! What an incredible start! Paraguay in front. It's the fastest goal of the tournament. Turkey are heading home at the end of the group stage.
0: पैराग्वे को हाफ टाइम से ठीक पहले बड़ा झटका लगा जब मिडफील्डर मिगुएल एल्मिरोन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। पैराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें फीफा के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली। इसके चलते पैराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद पैराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया। गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्की को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
2: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में FIH नेशंस कप हॉकी में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल कल खेला जाएगा। सुनते हैं अलका की ये रिपोर्ट।
3: अगले साल प्रोलीग में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही भारतीय शेरनियों ने नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए अंतिम चार के मैच में विरोधी चिली की टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने चिली पर शुरू से ही ताबड़तोड़ हमले किए। हमला इतना तीखा और सटीक था कि चिली की टीम कभी चिल कर ही नहीं सकी। भारत की जीत की नायिका नवनीत कौर और दीपिका रही। नवनीत कौर ने मैच के 6th और 13th मिनट में गोल दाग कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दीपिका ने 14th और 18th मिनट में लगातार दो गोल करके भारतीय बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक ही चिली की टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन भारतीय लड़कियों ने रहम नहीं बरती और दूसरे हाफ में भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे।
2: और उधर रोटरडम में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के डच चरण का समापन मेजबान नीदरलैंड्स के साथ मैच खेलकर करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत जूनियर पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने आज चीन के जूनी में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हर्षित दामोदरन, निषाद नरवाने, SK नबीग अली, अक्षत बजाज और मोहम्मद जैद अंसारी की युवा भारतीय टीम ने महाद्वीप की कुछ मजबूत टीमों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। चीन के शौजिंग में दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके अलावा भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मलेशिया के सारावाक में चल रही तीसरी एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। और हम आपको यह भी बताएं कि अश्मिता चालिया की हार के साथ ही मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज अश्मिता को दक्षिण कोरिया की पार्क गायुन ने 17-21, 9-21 से हराया। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में 4th स्थान पर रहे। ओलंपिक में 2 रजत पदक जीतने वाले नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो पदक जीतने के लिए काफी नहीं था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल

0: कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति

0: मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण

0: स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म लाड साहब का ये गीत। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीज़ें खूब सीखीं।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब

करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म काला बाजार से, आवाज थी मोहम्मद रफी की, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत एसडी बर्मन का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: This is All In Radio's special series, 12 years of trust development and public welfare. Listen today to All India Radio correspondent Kamal Kumar Prajapati's special conversation with Sanjay Jajaju, Secretary, Ministry of Development of Northeastern Region, on the rapid development and new possibilities of Northeast India.
2: Hello, listeners. The last 12 years have seen a very important phase of development in Northeast India. We have seen new milestones. In this regard, we bring you a

0: special conversation on this program today. Joining us on the program is Mr. Sanjay Jajut, Secretary, Ministry of Development of Northeastern Region. Welcome, sir.
1: Thank you.
0: First, we'd like to know from you the changing picture of Northeast India that we have seen over the past 12 years. How do you view this changing picture and how has it been made possible? What steps have made this possible?
1: So the main reasons for the development in Uttar Northeast India are sustained financial commitment, target program delivery, and the strong institutional coordination Uttara. And with all this work, no single scheme tells the whole story. It's the cooperation of multiple initiatives that really reflects this visible change as well. The 10% gross budgetary support mechanism implemented by 55 ministries and departments of the Government of India has also seen significant progress OOD. This year, these ministries spent approximately 1 lakh crore in the Northeast. There are also several flagship programs, particularly national highways, where approximately 4,800 kilometers of work was completed under.
2: उन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है. जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम. कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था. माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है. उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने. लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए. एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं. काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है. बहुत काम उन्होंने किए. देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है.
3: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक. आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया.
2: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं. इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है. और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते. अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए. उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया. ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया. इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है.
3: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है.
2: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे. आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है. आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.
3: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
2: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है. वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं. टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी. हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई. यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है.
3: पाटिल जी,

0: अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों

में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं।

0: में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो है मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली

0: बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी अहमदाबाद महानगर पालिका तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे कहा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्रपान से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी, आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो

0: वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है, वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश स्थिति है, उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है, ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 30वें पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है, और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है, ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया? ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई, इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था, और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है, उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी, और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से।

0: कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते, आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले कितने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुआ।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी

0: जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं सकता।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
4: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
3: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
4: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical

0: classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
0: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hain vaari jaun re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiske bol hain chalo re mai ram siya darshan. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी

0: भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।